FM की 101.7 MHz पे हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, संघ संबत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 24, तदनुसार 15 जुलाई ईस्वी सन 2026। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मत्स्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
3: This is one of first FTA of its kind, which establishes a future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
2: More from our correspondent.
1: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The simultaneous enforcement of the CETA and the DCC will open up significant new opportunities for India's export. Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariff across several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exporters in the UK market, generate new opportunity for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. With Rohan Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: Union Minister of Coal and Mine G. Kishan Reddy will launch the 8th tranche of auction of critical and strategic mineral blocks in New Delhi today. Minister of Mines has said that it comprises 20 critical and strategic mineral blocks spread across 9 states, including 13 newly identified blocks and 7 blocks being offered under the second attempt. The mineral portfolio includes molybdenum, graphite, glauconite, rare earth elements, titanium, tungsten, potash, lithium, cesium, and rubidium. These minerals are critical for clean energy, advanced manufacturing, fertilizers, defense, and other strategic sectors. With 7 tranches of auction completed, the ministry has successfully auctioned 56 out of 88 critical and strategic mineral blocks, achieving a success rate of over 63%. India will host the 12th BRICS Labour and Employment Ministers meeting in Hyderabad beginning today. The two-day meeting will bring together labour and employment ministers and senior officials from BRICS member countries under India's BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia will chair the meeting. The ministers will deliberate on 4 priority areas, including advancing social security and formalisation of labour markets, markets and enhancing women's participation and inclusion in the workforce. In football, Spain stormed into the final of FIFA World Cup 2026 after producing a commanding 2-0 victory over France in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas, US last night. Mikhail Oyarzabal opened the scoring in the 22nd minute before Pedro Porro made sure of the win with a brilliant second goal. 16 years since winning its first World Cup trophy, La Roja will face Argentina or England in final at New Jersey's MetLife Stadium on Sunday night. In another semi-final clash, defending champions Argentina will face England tonight at Atlanta Stadium. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. In cricket, India defeated England by 6 wickets in the first of the 3-match ODI series at Edgbaston, Birmingham last night. Chasing a target of 259 runs set by England, India scored 262 for 4 in 45.2 overs. Skipper Shubman Gill retired hurt with a top score of 80 runs. And that is the end of this news bulletin.
4: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के गायक कलाकार हैं उत्तरा केलकरकर और मिताली। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूं, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे उत्तरा केलकर, मिताली और साथी। संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। पहली रचना आइए सुनते हैं इस प्रार्थना से लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, और अब सुनते हैं ये अगली रचना हरिहरन और साथियों के स्वर में।

और अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद सुबह के 6:45 पर सुनेंगे सुगम संगीत में सतीश कुमार शर्मा के गाए चंद गीत। सुबह 7 सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चारवासा। समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 8:00। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनेंगे सुबह के 8:30 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक में आज बांग्ला लोकगीत सुनेंगे 8:40 पर। कार्यक्रम विविधा में आप सुनेंगे चर्चा विश्व युवा कौशल दिवस पर, साथ ही सुनेंगे इस कार्यक्रम में कुछ जानकारी की बातें। इस कार्यक्रम के साथ होंगी अंजू रानी देवगम। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह के 9:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन आप सुनेंगे सुबह के 9:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण हम करेंगे सुबह के 10:00। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी कार्यक्रम विवरण के साथ शाम के 5:02 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका को आज आप सुनेंगे शाम के 5:05 पर। कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। धान की खेती एवं खत पतवार नियंत्रण इस पर सुनेंगे चर्चा, साथ ही इस कार्यक्रम में सुनेंगे चंद लोकगीत और

जानकारियाँ। कार्यक्रम के साथ होंगी कोमल नायक। मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनेंगे शाम के 6 बजे। शाम 6:02 पर सुनेंगे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। बहनों का कार्यक्रम मनोरमा आप सुनेंगे शाम के 6:30 पर। शाम 6:55 पर अगला कार्यक्रम के लिए हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे शाम के 7:15 पर। रात्रि 8 बजे सुनेंगे फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या के साथ समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे रात्रि के 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। गजलों का कार्यक्रम महफिल आप सुनेंगे रात्रि के 10 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग के साथ हम होंगे आपके साथ रात्रि के 10:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे रात्रि के 11 बजे और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है, क्षमा करें, सुबह के 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सतीश कुमार शर्मा के गाए चंद गीत।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी की चायबासा केंद्र से सुगम संगीत में सतीश कुमार शर्मा के गाए चंद गीत। अभी आप सुन रहे थे सूरदास की रचना। अगली रचना भी सूरदास की है।

मीराबाई की रचना अभी आप सुन रहे थे सतीश कुमार शर्मा की आवाज़ में। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम सुगम संगीत अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। एकाग्रता और सफलता। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। विवेकानंद की इस अनमोल वचन के साथ कार्यक्रम जोहार चायबासा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा। नमस्कार। सबसे पहले आइए सुनते हैं जोहार चायबासा में देशभक्ति गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म काबलीवाला से। आवाज़ है मन्ना डे की। गीत रचना प्रेम धवन की है। संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: बड़ा परिवार जो तो कोनमा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नाका गे हम बोले रुड़ तबन में आले परिवार।

0: मतलब पूरे ये है ना।
1: वरना मंगल राय को गांव बरगड़ा अड़की थाना तो जंगल गया है तो अवका कहाँ बना है वो लोग अवका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम पर
2: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हतो तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
3: नितुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना ना यापा में रे तपा में रे वा बेटा निका
4: अन्या नितुम दो बुंबई कोड़ा पटन नितुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन नितुम कितमई कोड़ा मिनिमल उड़ी उड़ी ने बागिया तो कि दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गई अंदर जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बको को काको मेल नहीं है
5: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना ही रो जिता हुरा रे मिना ही रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिले आप ही लेता ना।
6: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
7: इस विराम के बाद श्रोताओं पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायबासा में। और अब इस कार्यक्रम का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है उसने कहा था। गीत रचना है शैलेंद्र की, संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

भाभी, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त को फिल्म उनकी कहानी से हमने ये गीत लिया था। कैफे आजमी के बोल थे, संगीत दिया था कानू रॉय ने। और अब सुनते हैं फिल्म नागिन का गीत हेमंत कुमार के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा
3: विश्व को नई दिशा दिखाओ।
2: इस विराम के बाद श्रोताओं अब सुनते हैं आशा भोसले और साथियों के स्वर में फिल्म ये रात फिर ना आएगी का ये खूबसूरत सा गीत।

अनोखी अदा इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़ थी, मजरू के बोल और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है धरती।

सपनों का सौदागर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश शारदा और साथियों के स्वर में। और अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अगला गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में, जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे हमसफर से।

अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और शारदा की आवाज़ों में। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा अब यहीं पे समाप्त होता है। राधा को दीजिए इजाज़त, पुनः मुलाकात होगी अगले कार्यक्रमों में, तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
4: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रिग्नैनी पांडे।
2: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों

0: सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्र के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी, कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुँचे हैं। तीन भव्य रथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने के कारण सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकाबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकर। पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकार। जवाब है, पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को 6000 रुपए का एकमुश्त मानदेय देने का लिया निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए बिना अधिग्रहण के ली गई जमीन के बदले मुआवजा देने के लिए निर्देश देने से किया इनकार, कहा प्रार्थी मालिकाना हक साबित करे। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में बीआईटी सिंदरी को शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने का लिया निर्णय। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में झारखंड का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए रणनीति और विभिन्न एजेंडों पर की चर्चा। और मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कार्यों में लगे बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को 6000 रुपए का एक मुश्त मानदेय देने का निर्णय लिया है। यह राशि उन्हें मिलने वाले पारिश्रमिक के अतिरिक्त होगी। चुनाव आयोग ने इस विशेष अभियान में काम के भारी बोझ को देखते हुए यह फैसला लिया है। इस फैसले से झारखंड समेत उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ मिलेगा जहां एसआईआर चल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए कथित रूप से बिना अधिग्रहण के उपयोग में ली गई जमीन के बदले मुआवजा देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रार्थी विवादित जमीन पर अपना कानूनी मालिकाना हक साबित नहीं कर देते तब तक मुआवजे का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी आपराधिक अपील खारिज कर दी है। अदालत ने इस घटना को न्यायपालिका पर हमला बताते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में बीआईटी सिंदरी को शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार कल धनबाद में जिला प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री पुरवार ने कहा कि बीआईटी सिंदरी झारखंड की तकनीकी शिक्षा की पहचान रहा है।
1: बीआईटी सिंदरी को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। थर्ड तो बीबीएमटी यूनिवर्सिटी, इसमें भी क्योंकि नया एक्ट आया हुआ है उसकी जो गतिविधियां है उसको कैसे यहाँ पे स्टार्ट करना है ताकि जो हायर एजुकेशन इकोसिस्टम है एक मेच्योर तरीके से उसका एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं और रिसर्च को और टेक्निकल एजुकेशन को एक जैसे आईआईटीज वगैरह है उसी पैटर्न में उसको डेवलप कर रहे हैं।
0: धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच सियासत पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों नेता अपने अपने समर्थकों के साथ जनसभा और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि आज निरसा में उनकी जनसभा होगी।
2: पूर्वक पद यात्रा करके वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो एलिवेटेड रोड विकास के नाम पर रोकने का प्रयास करेगा, जो निरसा क्षेत्र को विकास का बाधक बनेगा, उसका जवाब निरसा की जनता 24 घंटा देने के लिए 15 तारीख को एक विशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया है।
0: वहीं मार्क्सवादी समन्वय समिति विधायक अरूप चटर्जी ने भी आज अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की।
3: उनका उद्देश्य पॉलिटिकल है तो निश्चय पॉलिटिकल की जवाब पॉलिटिकल में ही दिया जाएगा। अगर निरसा बागमारा में तमाम जगहों को छोड़कर निरसा में शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे अगर हमको या हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे तो हम लोग भी वहाँ अपनी शक्ति का परिचय देंगे।
0: इधर धनबाद जिला प्रशासन ने दोनों कार्यक्रमों में सुरक्षा को लेकर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की है। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने 13 सितंबर से केप टाउन में आयोजित होने वाले 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में झारखंड से भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल को लेकर कल बैठक की। इस दौरान झारखंड का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सम्मेलन की रणनीति और एजेंडा पर चर्चा की गई। सदस्यों ने राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े विषयों को सम्मेलन में प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैंटीन सर्विसेज की 80वीं बैठक में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कामकाज और रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। संजय सेठ ने कहा कि सीएसडी में किए जा रहे सुधार लाभार्थी केंद्रित हैं और आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल तथा सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा को रिम्स का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि रिम्स की व्यवस्था में कई व्यापक सुधार हुए हैं और आगे भी जारी रहेंगे।
4: से शूट में कैसे टर्न हुआ इसको हमने नजदीक से देखा है और यहाँ जो पहले पेशेंट का था जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन ये सब रहते थे, लेकिन आज सुपर स्पेशलिस्ट भी हो गए। जैसे हमारे पीडियाट्रिक सर्जन है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, और ये सब जुड़ता गया है। इसमें आज हॉस्पिटल की संख्या बढ़ गई है, ये सारा चेंजेज आया है।
0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी को मगध जोन में दोबारा सक्रिय करने और लेवी के जरिए आर्थिक संसाधन जुटाने के मामले में रांची के विशेष एनआईए अदालत में छठे आरोपी चंदन कुमार के खिलाफ तीसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था। गुमला जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत रंजीत कुजूर और सेवानिवृत्त शिक्षक वत्स रविकांत को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौसम। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के विभिन्न जिलों में 18 जुलाई तक भारी बारिश, तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना है। रांची मौसम केंद्र ने आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित जीडी गोयनका स्कूल नामकुम में आयोजित 2 दिवसीय रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सप्तऋषि ने वर्ष 2026 का चैंपियन ऑफ चैंपियंस खिताब जीता, जबकि रूपश्री अभिमन्यु पांडे, पम्मे कुमारी और मौसम कुमार को विभिन्न विशेष उपाधियों से सम्मानित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने हॉर्मुज संकट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषियों की उम्र कैद को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, खूंटी देवघर में 1,21,00,000 रूपये की अवैध निकासी की जांच करेगा सीआईडी। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, एमओयू करने वाली 10 कंपनियां 25,000 लोगों को देंगी रोजगार। और दैनिक जागरण ने रांची में पुलिसकर्मी को एसयूवी वाहन से टक्कर मारने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को 6000 रुपए का एकमुश्त मानदेय देने का लिया निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए बिना अधिग्रहण के ली गई जमीन के बदले मुआवजा देने के लिए निर्देश देने से किया इनकार, कहा प्रार्थी मालिकाना हक साबित करे। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में बीआईटी सिंदरी को शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने का लिया निर्णय। स्पीकर रमींद्रनाथ महतो ने केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में झारखंड का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए रणनीति और विभिन्न एजेंडों पर की चर्चा। और मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर और 100.5 मेगा हर्ट्स पर। मैं हूँ विनीता आपके साथ। आइए सुनते हैं लोकगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे मुंडारी लोकगीत। कलाकार हैं सोमा मुंडा और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से, सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज हम आपको सुनवा रहे हैं संजीत मंडल के स्वर में चंद लोकगीत।

संजीत मंडल के गाए इस बाउल गीत के साथ ही श्रोताओं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की माँ कहीं पे समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम के साथ हैं अंजू रानी देवगम।

0: नमस्कार, सुप्रभात। आज की विविधा में मैं हूँ आपके साथ अंजू रानी। कभी गर्मी तो कभी बारिश, मौसम पल पल अपना रूप बदल रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार, सभ्य कार्य और उद्यमिता के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यवहारिक कौशल से लैस करना है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। 2025 का वैश्विक विषय स्किल फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, यानी कि एक साझा भविष्य के लिए कौशल है। यह थीम तकनीकी बदलाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम AI कहते हैं, डिजिटल साक्षरता और हरित परिवर्तन की दुनिया में युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह दिन तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के महत्व को उजागर करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवाओं के पास ये क्षमताएं हो जो आज की औद्योगिक मांग के अनुरूप है। भारत में युवाओं के भविष्य के लिए तैयार करने के लिए ड्रोन तकनीक, AI, साइबर सुरक्षा और हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। तो ये थी जानकारी विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आज हम मुलाकात करेंगे स्वास्थ्य पर विशेष महिलाओं के लिए। हम सुनेंगे डॉक्टर रीना गोडसोरा से, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: अपनाओ बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो इन बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब ओडा वापस को रुड़ा धरा रे आम बोले रुड़ तब में आले परिवार से मतलब पूरे ये
4: मोर नाम मंगलोरा एक गांव बड़गड़ा आड़की थाना। तो जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए
6: तुम लोग बुरा सिंह काम सोए अनिता तमसोए भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुरे में ना ये यापा मेरे तपा मेरे ये वाह बेटा निका
7: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तो किये दुना से यार सी कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे बुरुलम गई अंदर जाए तेरे काका बुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आपी लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आपी लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रय आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: आज हमारे साथ है एक खास मेहमान, MBBS डॉक्टर तो है ही लेकिन साथ समाज सेवी भी हैं। आइए जाने उन्हीं से उनका परिचय। नमस्कार।
9: नमस्कार मैडम,
0: आपका परिचय बता दीजिए।
9: मैडम मैं डॉक्टर रीना गौड़सोरा, अब मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई पटना से नालंदा मेडिकल कॉलेज से की है
0: जी।
9: उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन ऑप्स एंड गाइनी मैंने रिम्स रांची से किया 2007 से 2009 में।
0: अच्छा।
9: उसके बाद मैंने प्रैक्टिस के दौरान मैंने महसूस किया कि नहीं मुझे अल्ट्रासाउंड सीखना चाहिए, तो मैंने मुंबई में जा करके उसका हमारा फॉक्सी का सर्टिफाइड एक कोर्स होता है उसको मैंने सीखा और आज मैं अल्ट्रासाउंड की भी प्रैक्टिस करती हूँ।
0: अच्छा।
9: साथ में जब हम पेशेंट का इलाज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को जैसा लगता है कि हमारे अंदर मुझे ये भी जानना चाहिए, तो फिर मैंने लैप्रोस्कोपी सीखा मुंबई महाराष्ट्र अकोला में।
0: अच्छा।
9: वहाँ डॉक्टर राजेश मोदी है, वहाँ से मैंने अपनी लेज़र सर्जरी की पढ़ाई वहाँ से की और फिर एक नपुंसकता जिसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी, वो भी हमारे पेशेंट काफ़ी खास होते थे तो बहुत पेशेंट है हमारे समाज में, तो मुझे लगा कि उसके लिए भी एक, चूंकि गुरु के उसके बगैर होता नहीं है कोई चीज़ है ना, तो एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है सो दैट हम अपने आने वाले पेशेंट का प्रॉपरली उसको गाइड कर सके। इसलिए मैंने गुजरात में डॉक्टर पूर्णिमा नादकर्णी, आज दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं है।
0: अच्छा।
9: लेकिन उन्हीं के यहाँ से मैंने, मैं बहुत उनका वेट करती थी कि मुझे सब बोलते थे कि नहीं वहाँ सीखो, उनका मतलब हैंड्स ऑन बहुत अच्छा है, तो मैंने डॉक्टर पूर्णिमा नादकर्णी के वहाँ से मैंने इनफर्टिलिटी की पढ़ाई की और आज 16-17 साल हो गए मुझे, मैं रांची में प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में भी मैं अभी 1 साल से हूँ और रांची के उधर ही एक बेड़ो है गुमला जाने वाले रास्ते में, वहाँ पे भी मैं आज 11-12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ।
0: चलिए हमारा सौभाग्य है मैम, आपसे बहुत कुछ जानेंगे हम लोग, जो भी समस्याएं हैं वो आपसे हम जाने, शायद समाधान भी होगा आपसे।
9: जी बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले महिलाएं बात कर रही हैं तो महिलाओं की समस्या पर हम बात करते हैं, बेटियां हमारी कहना चाहिए, हम भी महिलाएं हैं, उनका असल में पीरियड का शुरू होने का समय, सही उम्र क्या होना चाहिए?
9: हाँ मैडम, ऐसा है कि देख लीजिए अभी समय के साथ जो जलवायु परिवर्तन हम कहते हैं ना, उसी का ये असर हो रहा है। जैसे अभी हमारे एज में, अब हम लोग जिस एज ग्रुप के हैं, पहले ऐसा होता था कि हम लोग को 15 साल में पीरियड्स होते थे, ठीक है, एक ऑन एन एवरेज लोग जानते हैं कि हमारा पीरियड बंद होने का समय 50 साल है, तो 50 है तो उससे प्लस माइनस 5 ईयर हम उसको ले करके चलते हैं कि शायद वो उस एज में आपको पीरियड बंद होने का टाइम होता है। तो जैसे पीरियड बंद होने का जो टाइम होता है वो 50 साल हम मानते हैं और उसको पेरी मेनोपॉज, पेरी मतलब अराउंड दैट एज, मतलब 50 साल के पहले 45 और उसके बाद 55 साल तक हमको हो सकता है, तो वो एक एज था शुरुआत, मतलब आज से करीब मतलब 20-30 साल पहले, जो कि 15 साल में लोगों को शुरू होता था और 50-55 तक भी चलता था। और लेकिन आज के डेट में हम लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग भी बहुत असमंजस होते हैं कि अब लोग 11 साल में 12 साल में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं हम लोग उसको।
0: अच्छा।
9: और मतलब समय से पहले वो हो जा रहा है, इसके पीछे शायद में भी जो हमारा आज का रिच फूड है, डाइट है, जलवायु परिवर्तन है, ये सब चीज़ों की वजह से अब पीरियड जल्दी भी हो रहे हैं और पीरियड बंद भी जल्दी होंगे, तो इस तरह की चीज़,
0: यानी कि ये घबराने वाली बात नहीं है कि अगर पहले भी शुरू हो गया
9: जी तो जी, इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। हम लोग अक्सर देखते हैं कभी 10 साल में 9 साल में भी बच्चियां जो हैं, मम्मी जो हैं उनको ले करके आती है।
0: अच्छा।
9: तो हम उनको बहुत घबराते हैं, बोलो कि ऐसे कैसे होगा, फिर हम बच्चों को बहुत काउंसलिंग करती हूँ मैं और मम्मियों को बोलती हूँ कि नहीं कुछ कुछ ये टैबलेट्स हैं जो आप अपने स्कूल जब बच्चियाँ जाती हैं तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा तो बच्ची को कमजोरी ना हो, इसके लिए ब्लीडिंग कम करने के लिए कुछ टैबलेट्स मैं बताती हूँ, टैबलेट ई क्लॉट, इथम साइलेट या ट्रेनेक्सा के नाम से आता है। और एक दिक्कत होता है कि पेट में दर्द होता है तो, और वो हम मेफ्टल स्पास की एक गोली होती है लीजिए जो मैं बोलती हूँ मम्मी को कि आप अपनी बच्चियों को ये करके आप ये दोनों पुड़िया आप दे दीजिए कि ये दर्द होने पर खाएंगी, ये ब्लीडिंग ज़्यादा होने पर खाएंगी। फिर हमें उनको समझाना पड़ता है क्योंकि इतने कम उम्र में जब बच्चियों को लेकर के मम्मी आती हैं तो अक्सर हर किसी को घबराहट हो सकता है। तो हम उनको ये समझाते हैं कि अभी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। महावारी होने शुरू होने का मतलब है कि आपके बॉडी में जो बच्चादानी है ना तो उसने काम करना शुरू कर दिया है। अदरवाइज आप ये बहुत सारी मम्मियाँ ये टेंशन लेकर के आती हैं कि मैडम देखिए ना इसको अभी हुआ फिर अभी 2 महीने से पीरियड नहीं हुआ, हाँ और फिर अभी हो रहा है तो इसको 10 दिन हो रहा है ना, इस तरह की चीजें लेकर के आती हैं।
0: ये अनियमितता,
9: हाँ अनियमितता होती है। तो वहाँ पे काउंसलिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। जब हम लोग उसको समझा देते हैं कि एक नॉर्मल पीरियड कैसे होता है, किसको हमको नॉर्मल हम समझ उसको समझाना पड़ता है कि ये चीजें हैं तो ये नॉर्मल है, तो हम उनको बताते हैं कि देख लीजिए जैसे मैंने बताया कि पीरियड होने का मतलब है कि आपका बॉडी जो बच्चादानी है वो फंक्शनल है, ठीक है। लेकिन अब आप उसे ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आप और हमारे जैसा कि उसको हर माह जो है पीरियड टाइम टू टाइम आना चाहिए, है ना, और इतने दिन ब्लीडिंग होना चाहिए, ब्लीडिंग का अमाउंट ऐसा होना चाहिए। अनियमितता के बारे में जैसे आपने बोला तो हम एक HPO एक्सिस कहते हैं, हाइपोथैलमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलमस रहता है, वहाँ से हॉर्मोन्स निकलते हैं जिससे कि हमारा पीरियड कैसे हो नहीं हो उसके लिए स्टिमुलेशन के लिए हॉर्मोन्स निकलते हैं, और वो हमारा जो बच्चादानी के बगल में 2 अंडादानी रहता है ओवरीज कहते हैं जिसको, उसको वो स्टिमुलेट करता है, वहीं से वो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हम मान के चलते हैं कि ये जो HPO एक्सिस रहता है यही मेन कारण होता है पीरियड होने का। लेकिन ये HPO एक्सिस एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, एक्सट्रीम मतलब शुरुआती दौर में और एक एंड होने के टाइम पे, दोनों वक्त जो है आपको पीरियड में गड़बड़ी होगी। कारण ये है कि शुरुआती एज में हमको ये मान के चलना है कि जो HPO एक्सिस है जिससे पीरियड होता है वो इमैच्योर है, मतलब वो मैच्योर नहीं है, उसको नहीं पता है बॉडी को कि हमको हर माह 28 दिन में हमको पीरियड होना है, हमको 3 से 7 दिन ही ब्लीडिंग होनी चाहिए, मेरे को दर्द नहीं होना चाहिए, वो इमैच्योर है। तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं, हम काउंसलिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया पीरियड ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग इथमसाइलिन ब्लीडिंग कम करने की गोली देते हैं, दर्द होता है तो दर्द होने की गोलियां देते हैं। लेकिन जब आपको 45-55 साल में होता है तो वहाँ कारण बदल जाते हैं, है ना। अच्छा। जैसे मैंने बोला HPO एक्सिस की इमैच्योरिटी, यहाँ पे इमैच्योर नहीं है, अब हमारा HPO एक्सिस 45-50 साल में मैच्योर हो चुका होता है, तो अब वहाँ पे कारण अलग हो सकते हैं आपको। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो हमें जिससे डरना नहीं, मतलब अवेयर होने की, हम लोग जागरूक होने की जरूरत है, जिसको शायद हम मिस कर सकते हैं, छूट सकते हैं हमारे ध्यान से, तो वो है कैंसर।
0: अच्छा।
9: तो इसीलिए सबसे पहले हम कैंसर को रूल आउट करते हैं। यदि कैंसर नहीं है, आपने जितना टेस्ट होता है बैटरी ऑफ टेस्ट जो भी होता है वो आपने करा लिया है यदि, और वो सारे टेस्ट जब नेगेटिव हो जाते हैं तब आपको संतुष्ट होकर के बैठना चाहिए और फिर ब्लीडिंग के लाइन पे आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए।
0: आपके कहने का मतलब है मैम कि अगर इस तरह की उस उम्र में 50-55 की उम्र में 45 से अगर इस तरह की अनियमितता अगर होती है तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना है, जांच कराना है।
9: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं मैम जो मन में सवाल खड़े करती है, जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चियों की बात कर रहे हैं, 14-15 साल के ऐसे बच्चों को हमने, बच्चियों को देखा है, उनका पीरियड बंद हो गया, बंद हो गया, वो बच्ची आज नहीं है दुर्भाग्यवश। तो एक बच्ची का 6 महीने बंद होने के बाद अंधी हो, उसके बाद वो नहीं रही, किस तरह से इतना दूर तक ये चला जाता है, कैसे हो जाता है?
9: जी मैडम, आपने जो ये बात कहा, देखिए कॉमन चीजें हमेशा कॉमन होती हैं और रेयर चीजें हमेशा रेयर होती हैं, ठीक है
0: जी।
9: तो इसको हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
9: जो 14-15 साल में आपने कहा कि पीरियड हुआ और वो फिर कुछ समय के लिए बंद हो गया, चाहे 5-6 महीने का हो, 1-2 महीना के हो, और उसके बाद यदि वो अंधी हो गई होंगी, तो मैडम इसका ना महीना मासिक के साथ ये अंधेपन का कोई कोरिलेशन
0: नहीं है।
9: जी नहीं, कोई कोरिलेशन नहीं है। हमारे एरिया में या हम किसी भी एरिया में, ग्रामीण इलाकों में हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है, अनुवांशिक बीमारियां होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग गर्भवती जब रहती माँ उस टाइम हम कुछ टेस्ट करते हैं, उसका साइड इफेक्ट्स कुछ ऐसा होता है कि वो आपको कुछ बीमारियां होती हैं 12-13 साल में 14 साल में मैनिफेस्ट करती है, सिम्टम्स उस टाइम आता है आपको, या फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो, फिर हाँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ों इन्फेक्शंस हो जो कि रियली में वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो काफ़ी घातक होते हैं, अच्छा। उस वजह से वो हो गई। तो मुझे लगता है कि इस केस में जिस आपने पर्टिकुलर केस के बारे में बताया, इसमें मुझे लगता है कि उनके रेटिना जो आँख का आँख में जो पर्दा जिसको हम कहते हैं उसके बीमारियों की भी जांच करनी चाहिए। आज के डेट में हम लोग देखते हैं कंजेनाइटल डायबिटीज़ भी होता है जो मधुमेह की बीमारी हम 45-50 साल में देखते हैं। तो कुछ ऐसी सिंड्रोम्स रहते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी रहती हैं जो कि आँख में ये ऐसा सिम्टम होता है रेटिना को अफेक्ट करता है, बाद बाकी दूसरे ऑर्गन्स में भी वो फर्क कर सकता है।
10: संबंधित नहीं,
9: पीरियड से संबंधित नहीं है। यदि इस पर्टिकुलर पेशेंट को हम देखें तो इसकी कंप्लीट हिस्ट्री चाहिए होगी मैडम की, उसका कंप्लीट एक अल्ट्रासाउंड चाहिए होगा ताकि कहीं और बाकी ऑर्गन्स में तो इनका डैमेज नहीं है, बट इसका मुझे नहीं लगता कि इससे कोई रिलेशन, क्योंकि आज तक हम लोगों ने कभी ऐसा ना देखा है ना सुना है, मतलब मैंने ही नहीं ऐसा कभी हम लोगों ने कोई मैंने नहीं भी देखा होगा तो ऐसा कभी नहीं एसोसिएशन देखा है।
10: ना होना घातक हो सकता है
9: मैडम, जब यदि पीरियड्स ना होना, जैसे आपने सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा कि एक करेक्ट एज क्या है, ठीक है, तो देखिए बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो हमारे पास आती हैं कि 15 साल 16 साल हो जाता है, वो देखती हैं कि मेरे बगल की पड़ोसी की बच्ची या अपनी खुद की बच्ची, दो बच्चियां हैं यदि, तो वो देखती हैं कि एक बच्ची को तो पीरियड होना शुरू हो गया मैडम, और ये मेरी छोटी बेटी को पीरियड शुरू हो गया है, मेरी बड़ी बेटी को अभी तक नहीं हुआ है पीरियड, और वो 16-17 साल तक वेट करती हैं या बहुत वरीड होती हैं तो 15-16 में भी आती हैं। हमें वहाँ ये समझने की ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया आज के डेट में आज के सिनेरियो में अब हम 11-12 साल में 13 साल में भी बच्चियों को देखते हैं कि पीरियड शुरू हो जाता है, तो वो एक कॉमन एज को मानते हुए सबसे पहले हमको ये ज़रूर रूल आउट करना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर में बच्चादानी है या नहीं, ठीक है।
10: अच्छा।
9: तो एक सिंड्रोम होता है जिसमें कि किडनी MRKH सिंड्रोम है, मैं अभी उसका फुल नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, MRKH, जिसमें बच्चादानी के साथ साथ बाहर उसका जो शरीर का जनन अंग है वो एब्सेंट रहता है या इनकम्प्लीट बना हुआ रहता है, उसके साथ लेकिन अक्सर किडनी का एसोसिएशन रहता है ना, तो ये दो चीज़ें जुड़ी हुई रहती है, इसमें दोनों में गड़बड़ियाँ जरूर नजर आएंगी आपको, तो इसीलिए एक सफिशियंट एज तक 15-16-17 तक वेट करने के बाद हम एक जरूर एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि आपकी बच्ची का बच्चादानी है कि नहीं। ऐसा भी रहता है कि एब्सेंट यूट्रस रहता है, वही MRKH सिंड्रोम जो बोलते हैं है, जिसमें कि बच्चादानी रहता नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चादानी है लेकिन बाहर जो उसका एक वेजाइना होता है, वेजाइना पे एक झिल्ली पड़ी होती है, वो बंद रहता है,
10: ठीक है,
9: और वो पीरियड उसको बाहर नहीं आता इसलिए उसको दिखता नहीं है। लेकिन वैसे पेशेंट अक्सर ये प्रेजेंट करते हैं, सिम्टम्स लेकर के आते हैं कि इसको हर महीने मैंने पेट में दर्द होता है लेकिन इसको ब्लीडिंग नहीं होता है ना, क्योंकि अंदर तो ब्लीडिंग हो रही है लेकिन वो अंदर ब्लड कलेक्ट होता है,
10: निकल नहीं रहा है।
9: तो वो जो बंद होने का जो प्रोसेस है वो बच्चादानी के जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है सर्विक्स, वहाँ पे बंद हो सकता है, वजाइना में बंद हो सकता है। वजाइना में भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत बार वजाइना को यदि हम लोग उसका एक लेंथ देखें 6-7 सेंटीमीटर तो

0: उसमें भी हम देखते हैं कि बाहरी पोर्शन में बंद है या फिर ऊपर में बंद है। बहुत बार बंदी मिलता है हम लोगों को, तो हम लोग बहुत बार ऐसा देखा है हम लोगों ने, तो वो आपको अल्ट्रासाउंड में वो पिक कर लेता है उस चीज़ को। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको काट कर इंसिजन कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, और जो पुराना ब्लड टैरी मटेरियल टाइप का हो जाता है उसको निकाल देते हैं, फिर वो नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल में आपको बंदी है या ऑब्स्ट्रक्शन है, उस तरह की सर्जरी को हम प्लान कर।
1: तो 15-16 तक देख लेना है माता पिता को कि अगर बच्ची का रुक गया है या नहीं, इस उम्र तक नहीं आ रहा है तो ध्यान देने की आवश्यकता
0: जी। इसमें एक और मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी, सपोज कि पीरियड हो रहा है और बीच में बंद हुआ, तो आपको प्रेगनेंसी भी रूल आउट करना है ना। आज के डेट में प्रेगनेंसी बहुत है ना, कि प्रेगनेंसी को रूल आउट करना ही है आपको। लेकिन आपने बोला कि एकदम ना ही होता हो, तो एब्सेंट यूटरस होता है, बहुत लोगों का बच्चादानी ही नहीं रहता है, या फिर छोटा रहता है, बच्चादानी का भी साइज छोटा रहता है, वो अक्सर वैसी बच्चियां आगे चल के मतलब गर्भवती नहीं हो पाती हैं, और वो ऑब्स्ट्रक्शन बंद रहता है रास्ता, ऐसा भी होता है।
1: कई बार हमने देखा है कि धातु कब कैसे हो जाता है।
0: आप किसी पर्टिकुलर एज के लिए बोल रही हैं या एक कॉमन महिलाओं?
1: कॉमन महिलाओं के जी, कुंवारी लड़कियों में भी तो हो सकता है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो एज तो है ही, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस कैसा है, आप शादीशुदा हैं नहीं है। आज के डेट में हम देखते हैं कि अनमैरिड लड़कियां भी रहती हैं, बहुत सारे पुरुषों के साथ उनका संबंध रहता है, तो हमें चूंकि आप यदि आप ये हिस्ट्री को नहीं लेंगे, उनके पर्सनल हिस्ट्री के बारे में आप नहीं पूछेंगे, और तो आपकी ट्रीटमेंट आधी अधूरी रह जाएगी, है ना। तो इन सब चीज़ों को पूछना पड़ता है, कुछ ऐसा हैबिट्स है वो, हाँ तो वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो चूंकि इन्फेक्शंस के बारे में आपको है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। फंगस मतलब हम लोग एक आम भाषा में फफूंदी जैसे जिसको कहते हैं, है ना। तो आप हम सब भी जानते हैं कि फफूंदी कहाँ लगता है, जहाँ मॉइस्चर होता है, जहाँ भींगा हुआ पोषण रहता है ना। हमारे घर में समझिए चावल का बोरा रखा हुआ, पानी गिर गया हो तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वहाँ फफूंदी हो जाता है ना,
1: सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है आसपास। बिल्कुल
0: बिल्कुल हाँ, तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, क्या होता है कि हमारा बॉडी, हमारा जो महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट्स होता है वो जनरली हिडन रहता है, छिपा हुआ पोषण रहता है, ठीक है, छिपा हुआ रहता है। तो वो मॉइस्चर रहता है वहाँ पे, एक मॉइस्चर रहता है, वो ड्राई एरिया नहीं रहता है, तो वो एरिया प्रोन होता है, मतलब वो ज़्यादा करके फंगस को अट्रैक्ट करता है, ठीक वो है। तो इसीलिए अपने प्राइवेट पार्ट को हमेशा ड्राई रखना है, एक प्रॉपर साफ़ सफाई आपको रखनी है, है ना। मैं अक्सर अपनी पेशेंट को, महिलाओं को यही समझाती हूँ कि जैसे हम एक फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो अब बहुत आज के टाइम पे तो लोग फेस वॉश अलग से यूज़ करते हैं कि फेस के लिए ये है वो है, फेस वॉश यूज़ करते हैं, उसी तरह से प्राइवेट पार्ट धोने के लिए एक वॉश आता है ना। तो प्राइवेट पार्ट के लिए इंटीमेट वॉश आती है, उसी का यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। यदि वो सुबह और शाम दो बार इस चीज़ को अपने डेली लाइफ में उतार लिए, हाँ, या फिर महिलाएँ अपने हस्बैंड के साथ जैसे जो संबंध बनाते हैं उसके बाद भी उसको इस्तेमाल करें, हम इन्फेक्शन से काफ़ी निजात पा सकते हैं। एक्चुअली वो जो वॉश होता है वो बेसिकली डिज़ाइन ही किया हुआ है कि वेजाइना का जो पीएच होता है उसको मेंटेन करे वो, है ना। हाँ, वो पीएच को मेंटेन करे। और मैं तो अक्सर क्या होता है कि पीएच मेंटेन कैसे हो, जैसे हमें मान लीजिए वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, हम खुजली कर रहे हैं, या महावारी के दौरान हम प्रॉपर साफ कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर हम फ्रीक्वेंट वॉश नहीं कर रहे हैं, आपका साफ सफाई का क्या स्टेटस है, आप कितनी अलर्ट हैं या जागरूक हैं कि आपको साफ सफाई रखना होता है, तो वो सब चीज़ की वजह से हमारा जो वजाइना का जो पीएच है, जो प्राइवेट पार्ट का एक पीएच होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इसको वॉश करने के लिए, वही प्रॉपर वॉश है जैसे मैंने बताया, महावारी के दौरान यदि आप प्रॉपर अपना हाइजीनिक मेंटेन करती हैं, साथ में संबंध बनाने के बाद आप प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन करती हैं, ठीक है, और वो एरिया इतना मॉइस्ट होता है कि कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कामकाजी महिलाएँ जो होती हैं, जल्दी जाना है ऑफिस या स्कूल, जल्दी जाना है तो टाइम है, मेंटेन करना है घर का काम, काम तुरंत तुरंत जाना है, तो नहाने के बाद वो तुरंत कपड़ा पहन लेती है, तो बहुत बार हमारा प्राइवेट पार्ट ऐसा होता है कि वो भींगा ही रह जाता है, उसी में हम कपड़े पहन लेते हैं। तो ये सब सोर्सेज हैं फंगल इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं आप कॉमन प्लेसेस में जा रही हैं, आपको टॉयलेट यूज़ कर रही हैं, वहाँ का आपको नहीं पता पानी कैसा है, ये कैसा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अक्सर अपने पेशेंट में ये प्रेफर करती हूँ कि हमारा बॉडी जो है ना, हर जगह में उसकी एक नॉर्मल बैक्टीरियाज होती है, मतलब बैक्टीरिया हेल्पफुल बैक्टीरिया जो आपके बॉडी के अंदर में खुद ही फाइट करती है वो, हाँ। सपोज आपको, आपने कुछ खाया उल्टा पुल्टा, तो आपके पेट में भी वो बैक्टीरिया रहता है, आपके सलाइवा में भी वो बैक्टीरिया रहता है, आपके आँख में भी जो आंसू होते हैं उसमें भी आपको वो बैक्टीरिया रहता है।

0: में आती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन दूसरे होते हैं, तो हम लोग अक्सर मरीज आते हैं तो हम लोग उनसे ये पूछते हैं बेहिचक कि आप बेहिचक अपनी चीज़ों को बताइए, क्योंकि अब नहीं बताएंगे तो वो ट्रीटमेंट आधी अधूरी रह जाएगी।
1: ये जरूरी नहीं है कि ये
0: कुंवारी होने के बाद
1: होने
0: भी
1: के बाद हाँ, भी हो इसी में हो या फिर शादी शुदा हो तभी हाँ, हो, ऐसा कुछ नहीं,
0: ऐसा कुछ नहीं है,
1: कुछ नहीं है।
0: हाँ जी,
1: इसके दौरान बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, किस परिस्थिति में ऐसा होता है?
0: ये एक तरह से कहने को तो हम लोग एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं मैडम। प्री मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस आने से पहले, है ना। सिंड्रोम इसलिए है क्योंकि वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है, जैसे आपने बताया कि फीवर आया, बट ऐसा नहीं है फीवर ही नहीं आता है। बहुत बार होता है कि लोगों को बहुत गैस्ट्रिक अपसेट लगता है, लगू लगेगा कि मुझे बार बार टॉयलेट जाना है, या फिर खाना नहीं पच रहा है, हाँ, या फिर भरा भरा सा पेट है, या फिर उल्टी लगता है, हाँ, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फीवर उस टाइम उसको रहता है, चूँकि बॉडी के अंदर में उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वेसल बॉडी टेम्परेचर भी हम मान के चलते हैं कि जो नॉर्मल, मान लीजिए कि आज मेरे को पीरियड हो रहा है, इससे दो दिन पहले मेरा टेम्परेचर भले पॉइंट के बाद जो हम कहते हैं ना जैसे 98.4 डिग्री या 6 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, तो मे भी हमको 99 डिग्री टेम्परेचर हो, तो मुझे हो सकता है कल की अपेक्षा आज थोड़ा फीवरिश लगे, तो बेटर है कि आप थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर को चेक कर लें और उसको रूल आउट करें, है ना। तो ये जरूरी
1: वो
0: है।
1: बहुत बड़ा इशू नहीं है
0: जी, बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है और चूंकि हर पेशेंट में नहीं होता है, तो जिनको होता है वो वरीड हो जाते हैं, बट वही काउंसलिंग हम करते हैं कि देखिए ऐसा सिचुएशन होता है, कोई कोई को बहुत सिम्टम्स होते हैं तो हम लोग उनको कुछ मेडिसिन देते हैं, क्योंकि वो पेशेंट फिर स्ट्रेस में चली जाती है, टेंशन में चली जाती है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, तो काउंसलिंग करते हैं, फिर कुछ मेडिसिन हम उनको देते हैं।
1: अगर नहीं सक रही तो वो दवा खा सकते हैं या डॉक्टर
0: जी, वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो बहुत ही नॉर्मल मेडिसिन होती है, जो कि मतलब कोई बहुत बीमारी वाली कोई दवाई नहीं होती है, वो हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं।
1: अच्छा मैम, हम लोग के पास तो कई सारे ऐसी समस्याएं हैं, और भी हम बातें करेंगे। आज हमने बातें की पीरियड्स के बारे में, महिलाओं की इतनी सारी समस्याएं हैं। अगले पार्ट में आपकी आपसे फिर मुलाकात होगी और भी समस्याओं को लेकर हम बातें करेंगे।
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए कुछ नहीं, महामारी के दौरान आपको अपने जो बेसिक हाइजीनिक प्रैक्टिस है, कैसे साफ सफाई रखनी है, इसका ख्याल रखिए, खान पान अपना अच्छा रखिए। हमारे यहाँ पे अक्सर होता है महिलाएं जो है खान पान में, चूंकि घर के लोगों को पहले खिलाने के बाद पीछे में ध्यान देती है, तो अपने न्यूट्रिशन में प्रॉपर ध्यान रखें, आयरन कैल्शियम जो भी होती है, और खाने में हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और जो फैट होता है वो हर चीज़ की मात्रा एक हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से एक अलग अलग तय की गई है, उसके बारे में कभी बैठे तो अलग से बात करना पड़ेगा। तो हमारे थाली में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट कितना रहना चाहिए और कैसे मल्टीविटामिन न्यूट्रिशंस रहनी चाहिए, क्योंकि एक संतुलित फूड आहार ये बहुत ज़रूरी है जिससे हम एक नॉर्मल महसूस कर सके। मतलब यदि हमारे अंदर में पहले से यदि खून की कमी है और हमें ब्लीडिंग भी हो रहा है तो हमें कमजोर महसूस होगा, अगले किसी को देखेगी कि वो पीरियड में एंजॉय कर रही है, वो नॉर्मल है, और तब मेरे को लगेगा कि अरे मुझे क्या हो गया, मैं इतनी क्यों कमजोर फील कर रही हूँ। तो हर किसी का शरीर अलग अलग रहता है, खान पान में अपना ध्यान रखना है, हाइजीनिक प्रैक्टिस करना है, अपनी जो भी दिनचर्या है वो उसको बहुत आराम से उस तरह से सब यदि न्यूट्रिशन और सब चीज़ को मेंटेन करिए तो वो नॉर्मली अपना रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
1: बिल्कुल जी, समय दिया मैम आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: इसी के साथ आज का हमारा विविधा का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू रानी को दीजिए विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म दलाल का ये गीत, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दलाल का गीत, कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में चांदनी। इस फिल्म का गीत हम सुनवा रहे हैं आपको बाबला और लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शिव हरि ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
5: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम रस रंजन में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। इस कार्यक्रम का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है विरासत।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ, प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
3: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
3: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
3: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
3: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
3: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
3: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
3: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे, ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से, इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
2: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
3: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
2: जी।
3: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा, क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
2: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे, पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
3: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
2: जी।

0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
1: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की, लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी,
5: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है। वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया नाना जी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
4: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
7: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
4: हाँ।
7: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
4: बिल्कुल।
7: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
3: अच्छा।
7: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
3: अच्छी अर्थव्यवस्था।
7: हाँ।
4: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
3: वो कैसे?
7: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
4: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
3: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
5: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
1: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, रो नहीं। मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ
0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
5: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
6: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
5: क्या सोच रहे हो तुम?
6: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
5: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
6: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
5: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
6: प्रणाम महात्मन।
7: जीते रहो पुत्र।
6: महात्मन मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
7: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
6: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
7: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया। देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया। लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
6: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है। सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। अब हम आपको शामिल कर रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में।
6: और कैसी हैं आप?
7: बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
6: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलके और भी अच्छी हो गई हूँ।
7: तो हम अपने श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन करेंगे जानकारियों के साथ।
6: लेकिन उससे पहले हम लोग कहते हैं जोहार
7: जोहार, नमस्कार और साथ ही एक खूबसूरत
6: संगीत सुनते हैं।

0: नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्यामल कुमार, पीडियाट्रिशियन, जीडी बगेरिया हॉस्पिटल गिरिडीह से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ जरूरी सलाह और टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, मॉनसून के मौसम में या जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं?
1: यह इस मौसम में बहुत सामान्य बात है। स्कूल खुलने और मॉनसून शुरू होने के दौरान बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। मौसम में बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। साथ ही छुट्टियों के बाद बच्चे फिर से कक्षा में एक साथ आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, साझा चीजों को छूते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। ऐसे में वायरल संक्रमण एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक आसानी से फैल सकता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, बारिश में भीगने पर तुरंत कपड़े बदलवाएं और गीले जूते, मोजे या यूनिफॉर्म पहन के स्कूल ना भेजें। यदि बच्चे में सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण हो तो उसे आराम करने दें।
0: एलेम्बिक फार्मा द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जैसा कि विनीता जी आप जानती हैं, हम कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं, तो चलिए आज का सुविचार हम अपने श्रोताओं से साझा करते हैं। जो लोग प्रसन्न मन से आगे बढ़ते हैं उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी कार्य को प्रसन्न होकर करना चाहिए, ना कि दुखी होकर या फिर किसी तरह का स्ट्रेस लेकर।
2: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि प्रसन्नता मन की वह रोशनी है जो विपरीत परिस्थितियों में हमारा संबल बन जाती है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो अगर हम किसी काम को खुश होकर करेंगे ना तो वो काम अच्छा ही होता है।
1: बिल्कुल अच्छा
2: है। और आप दुखी होकर करेंगे तो अच्छा होने वाला काम भी बिगड़ जाएगा।
1: पहले से ही हम दुखी हो जाएंगे तो कैसे हमारा काम।
2: बिल्कुल, तो इसलिए अगर लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो खुशियां बांटिए और खुश होकर कीजिए
1: किसी भी कार्य को।
2: बिल्कुल, फिर देखिए ये सफर ऐसे ही कटता जाएगा।
1: हाँ बिल्कुल।

0: विनीता जी, बिल्कुल सही बात है। सफर तो कट ही जाता है, लेकिन प्रसन्न होकर सफर काटिए हम सफर के साथ, क्या?
1: बिल्कुल, तो सफर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा।
0: अच्छा हो जाएगा।
1: तो बातें अब थोड़ी सी आज के दिन की करते हैं, यानी कि आज के इतिहास की।
0: हाँ, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं आज के दिन? तो 1799 में आज ही के दिन 15 जुलाई को फ्रांसीसी कप्तान पियरे फ्रेंकाइसे पुचार्ड द्वारा मिश्र के राशिद शहर में रोसेटा स्टोन की खोज की गई।
1: 1916 में दुनिया की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी बोइंग की स्थापना हुई थी और 1954 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई थी।
0: 2006 में सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर की शुरुआत हुई, जो आज एक्स के नाम से प्रचलित है। 1999 में चीन द्वारा न्यूट्रॉन बम की क्षमता हासिल करने की स्वीकृति हुई।
1: और 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV-C17 के जरिए GSAT-12A का श्रीहरिकोटा में सफल प्रक्षेपण किया था। और श्वेता जी, अगर हम आज के दिन की बातें कर रहे हैं, तो आज के दिन जिनका जन्मदिन है,
0: जिन महान हस्तियों का जन्म हुआ था। हाँ।
1: बिल्कुल, तो जमशेद जी जीजाबाई, जो कि प्रसिद्ध भारतीय व्यवसाय के अत्यंत धनी और दानवीर थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1883 में हुआ था।
0: 1925 में बादल सरकार प्रसिद्ध अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और इन सब के अतिरिक्त रंगमंच के सिद्धकार थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था।
1: बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आज हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1946 में। तो वैसे तो उनकी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है ना, तो लेकिन चलिए सुनवाते हैं उनकी हिट फिल्म खुदगर्ज का ये खूबसूरत सा गीत, यही कहीं जियरा हमार।

0: श्वेता जी, बातें हो रही आज के दिन की, तो आज एक खास दिवस भी है।
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
0: हाँ, आज है विश्व युवा कौशल दिवस, यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो कि हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में युवाओं को रोजगार, सम्मानजनक कार्य और उद्यमिता के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से लैस करने के महत्व को पहचान के लिए घोषित किया गया था।
0: बिल्कुल, और आज की थीम है, मतलब इस वर्ष की थीम है, साझा भविष्य के लिए कौशल। और इस दिन तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया जाता है। कहने का मतलब कि युवाओं के कौशल विकास को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है ना।
1: तो चलिए एक गीत सुनते हैं।

0: विनीता जी, समय की कमी की वजह से हमें ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करना पड़ेगा,
1: पर तो, हाँ वादा करते हैं कि हम अगले प्रोग्राम में फिर ढेरों जानकारियों के साथ मिलेंगे।
0: बिल्कुल, तो हंसते रहिए, मुस्कुराइए,
1: जैसा कि श्वेता जी ने कहा है प्रोग्राम के शुरू में ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए,
0: और कार्यक्रम का संपन्न भी हम हंस के ही करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो श्वेता को और
1: विदा लेते हैं और करते हैं जोहार,
0: नमस्कार।
2: Blackmail your present to ruin a beautiful future.

0: अभी आप सुन रहे थे जोहार रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। वक्त है विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए का, जिसमें आज हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार ढंडानिया से, जो हैं एक प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर। उससे पहले ये संदेश।
1: नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्यामल कुमार, पीडियाट्रिशियन, जीडी बगेरिया हॉस्पिटल गिरिडीह से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ जरूरी सलाह और टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, मॉनसून के मौसम में या जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं?
2: यह इस मौसम में बहुत सामान्य बात है। स्कूल खुलने और मॉनसून शुरू होने के दौरान बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। मौसम में बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। साथ ही छुट्टियों के बाद बच्चे फिर से कक्षा में एक साथ आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, साझा चीजों को छूते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। ऐसे में वायरल संक्रमण एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक आसानी से फैल सकता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, बारिश में भीगने पर तुरंत कपड़े बदलवाएं और गीले जूते, मोजे या यूनिफॉर्म पहन के स्कूल न भेजें। यदि बच्चे में सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण

0: तो उसे आराम करने दे।
1: एलेम्बिक फार्मा द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने चिकित्सा सेवा के माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन को स्वस्थ बनाने का प्रयास किया है और साथ ही सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमारे आज के अतिथि हैं प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ एवं रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर विनय कुमार ढंडानिया सर। तो आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं सर कार्यक्रम में। नमस्कार।
0: नमस्ते मैडम, धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है आज यहां पर आके। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया।
2: सर, ये हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि आज आप कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपके जीवन से संबंधित कुछ बातें जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपके बचपन और परिवार से जुड़ी बातें जानना चाहेंगे।
0: मेरा जन्म रांची में हुआ है। मेरा जन्म नागरमल मोदी सेवा सदन में हुआ है 20 नवंबर 1969 में। और उसके बाद से मैं रांची में ही पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, खेल कूद में भी भाग लिया हूँ। मैंने क्रिकेट में भी योगदान दिया है। फिर नेक्स्ट ईयर जो मैं तैयारी करके एग्ज़ाम दिया तो मुझे ऑल इंडिया रैंक भी बहुत अच्छा आया, 401 ऑल इंडिया रैंक आया। और फर्स्ट चांस में ही मुझे बॉम्बे में एडमिशन मिला। तब मैं मेडिकल के पढ़ाई के लिए 1991 में बॉम्बे गया। और फिर बॉम्बे में कभी फेल नहीं हुआ, बॉम्बे में बराबर अच्छा परफॉर्म किया। अपने दोस्तों के साथ भी मैं अच्छे से रहा, वो आज भी मैं कनेक्टेड हूँ। उसके बाद MBBS करने के बाद मेरी शादी हुई
2: जी।
0: और शादी के बाद मैं 6 महीने का ब्रेक भी लिया। और 6 महीने के बाद मेरे को डिप्लोमा इन डायबिटीज डायरेक्टली एडमिशन मिल गया।
2: अच्छा।
0: उस समय क्या था, गांव में सेवा देना अनिवार्य हो रहा था
2: जी,
0: उसी साल से महाराष्ट्र में। और ये लास्ट चांस था कि कोई मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले ले, एक साल बचाना हो तो आप एडमिशन ले लें। तब हम लोग 3 दोस्त हम लोग एक साथ में जाके डिप्लोमा डायबिटीज का कोर्स ज्वाइन किए, जो कि एक बहुत सब स्पेशलिटी है लेकिन एंडोक्राइन डिपार्टमेंट में ये कोर्स है और वो MCI से रिकग्नाइज्ड पोस्ट है। इसलिए हम लोग 2 साल के ये कोर्स के लिए एडमिशन लिए। उसके बाद से फिर मैं 2000 से रांची में प्रैक्टिस कर, हमारे दादाजी दादी जी, तो दादाजी का बहुत मन था कि मैं रांची आऊँ, उनके साथ में प्रैक्टिस, उन्हीं के यहाँ प्रैक्टिस करूँ। तब से मैं रांची में हूँ।
2: तो एक डॉक्टर बनने की प्रेरणा आपको, मुझे तो लग रहा है आपकी बातों से कि आपके पिता, आपके दादाजी और आपके गुरु,
0: यस,
2: सभी आपके प्रेरणा स्रोत रहे।
0: बिल्कुल। वो साइंस में एडमिशन भी जो मिला था ना मैडम, वो क्रिकेट के कोटा से ही मिला था मुझे।
2: अच्छा।
0: और डॉक्टर्स को देख के मुझे गूज बम्प्स तो होते थे मैडम, मतलब मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करता था अंदर से
2: जी।
0: और आसपास में मैं बहुत डॉक्टर्स को डेली कहीं ना कहीं देखता था। और बहुत सारे डॉक्टर्स लोग आके बैठते थे, आते जाते थे। और मैं पढ़ाई भी मैडम शॉप में बैठ के ही किया हूँ, दुकानदारी भी करता था, पढ़ाई भी करता था और स्कूल भी जाता था। और मुझे कोई रुकावट नहीं थी कहीं से भी, घर से बहुत सपोर्ट था मैडम। और कभी भी कोई कुछ मुझे ये नहीं बोलता था कि यही नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो
2: जी।
0: तो हम लोग का बचपन बहुत अच्छा रहा मैडम। और हम लोग ज्वाइंट फैमिली में बड़े हुए हैं। पापा लोग 6 भाई सब एक जगह रहते थे मैडम, 5 भाई एक जगह रहते थे, 1 भाई कलकत्ता में। सोचिए मैडम, 5 भाई का फैमिली, एक सिंगल किचन में खाना बनता था, छत में बनता था मैडम। क्या लाइफ होगा आप सोच के देखिए मैडम। उस समय 1983-84 में टेलीविजन आया था, एक छोटा सा टेलीविजन लगा रहता था हॉल में और सब बैठ के ऐसे लेट के आराम से हो हंगामा के साथ हम लोग मैच देखते थे, क्रिकेट देखते थे, मूवी देखते थे। पहले वो VCR आता था आपको भाड़े में, आपको याद होगा, एक एक नाइट के लिए ब्लॉक होता था, वो पूरे रात भर बैठ के हम लोग मूवी देखते थे साथ में। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में बड़े हुए हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कि बहुत दिनचर्या में जो जरूरतें हैं ना, बहुत कुछ सीखने को मिला मैडम छोटे से ही। कैसे सामान खरीद के लाना, कैसे फल खरीद के लाना, कैसे स्टेशन का टिकट बनाना, कैसे फ्लाइट का टिकट बनाना, ये सब हम लोग बहुत छोटे से सीखे हैं, जो आजकल के बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है।
2: सही बात है।
0: उनको सब ऑनलाइन रेडीमेड फोन पे मिल जाता है। हम लोग ट्रेन के टिकट के लिए स्टेशन में जाके लाइन लगाते थे और वो लाइन आता था तो टिकट बना के लेके आते थे, वो सब इन लोग देखे ही नहीं है।
2: सही बात है।
0: मेडिकल कॉलेज के एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिलअप करते थे, बैंक जाते थे, ड्राफ्ट बनाते थे, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस में जाके लाइन में लगते थे और सारा डॉक्यूमेंट्स लगा के रजिस्ट्री पोस्ट से उसको भेजते थे। ये सब इन लोग की अब जरूरतें नहीं है। हम लोग ने वो सब काम अकेले किया है मैडम। कभी एफिडेविट कराना होता था तो कोर्ट भी अकेले जाके एफिडेविट कराते थे। तो ये सब जो एक्सपीरियंसेस हम लोगों के लाइफ में है वो एक बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड किया हम लोगों में। मेरे को एडमिशन के लिए मैं यहाँ से अकेला गया हूँ, वहाँ पे चाचा जी ने मुझे स्टेशन पे पिकअप कर लिया था। तो आप सोच सकते हैं मुझे गीतांजलि एक्सप्रेस जमशेदपुर में अकेले बैठा दिया गया था, मैं अकेला चला गया। आजकल कितने बच्चे ऐसे अकेले जा सकते हैं। फर्स्ट डे कभी मैं बॉम्बे नहीं गया था, फर्स्ट डे अपनी लाइफ में मैं बॉम्बे आराम से ट्रेन में बैठ के चला गया। तो ये सब जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ना दिनचर्या के एक्सपीरियंसेस से, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है आज के दिन में। और बाहर जाने के बाद कभी कोई स्ट्रेस हुआ ही नहीं मैडम बॉम्बे में। जैसे कि मुझे सब कुछ आता था, मेरे फ्रेंड लोग बोलते थे ये बिहारी को इतना खेलना कैसे आता है। वो लोग बहुत एनवियस होते थे कि इतना सब काम। एक दिन क्या हुआ, मेरा फ्रेंड का एक मोटरसाइकिल बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा था
2: जी।
0: तो मैं बोला तू पीछे बैठ, धक्का मार, मैं स्टार्ट करता हूँ। और वो धक्का मारा, मैं स्टार्ट कर लिया। तो ये सब भी आता है, हाँ ये सब भी आता है मेरे को
2: जी।
0: तो ये सब जो ट्रेनिंग था या लर्निंग था आपस में, ये बहुत हेल्पफुल रहा है और आज भी वो हेल्पफुल रहता है मैडम।
2: बिल्कुल सही बात है। और आपने जो ये बात कही कि आज बच्चों को ये सुविधाएं ऑनलाइन मिली हुई हैं, और एक तरह से कहा जाए कि तकनीकी क्षेत्र में जितनी तेजी से विकास हुआ है उतना ही हमारा व्यावहारिक ज्ञान कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है।
0: मैडम बिल्कुल है।
2: और दूसरी बात, एक आपकी बहुत मुझे अच्छी लगी कि आप खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे, और जिनसे भी आपको प्रेरणा मिली उनसे प्रेरणा लेकर आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं और एक सफल मधुमेह रोग विशेषज्ञ के रूप में आप जाने जा रहे हैं। सर, आज के संदर्भ में कहा जाए कि अगर बच्चे अपने मोबाइल रूपी गैजेट से अगर बाहर निकल जाएं तो बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिलेगी, और रचनात्मक करने का प्रयास अगर वो करेंगे तो मानसिक और शारीरिक शक्ति उनमें बढ़ेगी।
0: मैडम हमारे अभी दो छोटे बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है
2: जी।
0: बड़ी बेटी अभी बॉम्बे में लॉ प्रैक्टिस कर रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। दो छोटे बच्चे जो हैं क्लास 7 क्लास 8 में हैं, डीपीएस में। हम लोगों ने कभी भी उनको है ना अभी तक ये नहीं पुश किया है कि तुम लोगों को फर्स्ट आना, सेकेंड, थर्ड आना है। कल भी वो स्क्वाश खेल के आए हैं, उसके पहले स्विमिंग करके आते हैं, उसके पहले बैडमिंटन खेलते हैं
2: जी।
0: आज भी वो लोग सारे स्पोर्ट्स में है मैडम। तो हमारी वाइफ भी है ना मैडम, उन लोग को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कहीं ना कहीं डाल के कुछ बना ही दे रही है उन लोग को। आज अभी से वो लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स में स्केटिंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल में भी उसने पार्टिसिपेट किया है, बास्केटबॉल स्कूल में अच्छा खेलते हैं। तो ये क्या है ना, अभी तो स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी से उनका आगे का जो डेवलपमेंट है ना बढ़िया होने वाला है मैडम। पढ़ाई तो पूरी ज़िंदगी करनी ही करनी है।
2: सही बात है।
0: लेकिन ये जो एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है ना, इसमें शारीरिक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
2: बिल्कुल सही बात।
0: नहीं तो आपके बोन्स वीक हो जाएंगे, आपके मसल्स डेवलप नहीं करेंगे, खाली फैट रह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग क्लास 7, 8, 9 पे बच्चों को खेलने दें, खेलने के लिए प्रेरित करें। एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, म्यूजिक में, डांस में, पेंटिंग में, तो आप इसी समय उसको डेवलप कर सकते हैं।
2: बिल्कुल।
0: क्लास 9, 10 में आपको समय नहीं मिलने वाला इसको डेवलप करने के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हर तरीके की एक्टिविटी में आप पहले से डालें।
2: सर, अब आपके पेशे से जुड़ी कुछ बातें आपसे करना चाहूंगी। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि मधुमेह के रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, तो ये एक चिंताजनक विषय है, और एक चिकित्सक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसको आप बचा सकते हैं, होने के बाद उसका सिर्फ केयर कर सकते हैं, क्योर अभी तक नहीं कर सकते हैं आज जो साइंस है, लेकिन हम लोग उसको बचा जरूर सकते हैं।
2: बिल्कुल।
0: और बचा के अगर हम लोग उसके होने के संभावना को 20-25 साल उम्र से डिले भी कर दें तो भी बहुत बड़ा फायदा है। जैसे आज 30 साल की उम्र में हम मधुमेह देखते हैं
2: जी।
0: तो अगर किसी को बचाते बचाते मैं 60 साल तक ले जाऊं और तब मधुमेह होता है, तो

0: वो आपका परेशानी बहुत कम हो जाता है
1: जी
0: और आपका आगे का लाइफ बहुत आसान हो जाता है, मधुमेह से बहुत तकलीफ नहीं होती है। तो मधुमेह से बचाव के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड हैं और एविडेंस से सपोर्टिव हैं, खाली उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है
1: जी।
0: मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कोई 20 साल या 22 साल का व्यक्ति हमारे क्लिनिक में आता है तो बोलेगा, डॉक्टर साहब मेरा तो देखिए वजन भी ठीक है, मेरा BMI जो कि बॉडी मास इंडेक्स भी ठीक है, तो मुझे कैसे डायबिटीज़ हो गया। ये देखा जा रहा है मैडम कि हमारे इंडियंस में जेनेटिकली या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से फैट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। वी आर कॉल्ड एज थिन फैट इंडियंस। तो थिन फैट इंडियंस जो हैं हम लोग, इसकी वजह से हमारे को मधुमेह बहुत कम उम्र में होता जा रहा है। अभी हमारे पास एक पेशेंट आया 27 साल का
1: जी।
0: वो UPSC का तैयारी कर रहा है, एकदम अच्छा स्मार्ट लड़का है। उसको डायबिटीज़ हो गया, वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया। बोला सर मुझे कैसे डायबिटीज़ हो गया इतने कम उम्र में, मेरे को जो भी टेस्ट है सब करके दिखलाइए। बोला खाली तुम एक टेस्ट करो, उसका फैट परसेंटेज 45% है मैडम, लड़कों में 25% से कम होना चाहिए
1: जी।
0: मैं बोला दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड योर डायबिटीज। इससे क्या होता है, जब फैट परसेंटेज बढ़ता है तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं
1: जी।
0: और इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तब मैंने उसको बोला कि आप बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रांग करने की तरफ ध्यान दें और फैट परसेंटेज को कम करने की तरफ ध्यान दें, तो आपको डायबिटीज की संभावना कम हो जाएगी।
1: अच्छा,
0: तो ये कैसे होगा, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है ना मैडम, लड़कियों में 11 से 16 17 तक होता है
1: जी,
0: और लड़कों में होता है 12 से 17 18 तक होता है।
1: अच्छा,
0: इस समय इनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत मजबूत होना चाहिए, तब क्या है ना मसल्स बढ़ेगा, बोन्स स्ट्रॉन्गर बनेंगे और फैट कम होंगे। अभी क्या होता है ना मैडम, क्लास 8 9 10 से पढ़ाई की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खाते हैं पढ़ते हैं सोते हैं, खाते हैं पढ़ते हैं सोते हैं
1: जी।
0: और दूसरा क्या, जो सोते भी हैं ना वो 12 1 बजे तक सोते हैं, कभी कभी 2 बजे भी सोते हैं और वो उठेंगे 9 10 बजे। तो ये जो सिक्वेले ऑफ स्लीप है ना मैडम, ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जितना आप लेट से सोते हैं उतना ही आपका स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता है, उतना ही आपकी ओबेसिटी बढ़ती है। तो हम लोग जो बचाव के लिए बोलना चाहते हैं लोगों को कि अपना बायोलॉजिकल क्लॉक, जो पहले 8:30 9 बजे सोते थे, सुबह 5 बजे उठते थे, उसको फिर से व्यवहारिक रूप में लाना चाहिए। फिर खाने का समय को भी सही करना चाहिए, सुबह 8 8:30 बजे तक नाश्ता करना चाहिए, दोपहर में 1 2 बजे तक खाना चाहिए और रात में 7:30 8 तक खाना चाहिए
1: जी।
0: इसके पीछे भी बहुत साइंटिफिक रीजन है मैडम। रीजन क्या है, अभी आप देखेंगे लोग नाश्ता करते हैं 11 12 बजे। अब आप जब भूखे रहते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ छठ का व्रत किया है, तो आप दिन भर भूखे हैं
1: जी।
0: तो भूखे रहते हैं तो आपका शुगर घट नहीं जाता है। एक हमारे बॉडी में ग्लूकागॉन का मैकेनिज्म चलता है जो ग्लूकोज बना के आपके ग्लूकोज को सामान्य रखता है
1: जी।
0: तो आप नहीं भी कुछ खा रहे हैं, फास्टिंग भी रख रहे हैं, तो आपका ग्लूकोज नॉर्मल मेंटेन्ड है। लेकिन क्या है, इसमें ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया बढ़ जाती है
1: जी।
0: फिर जब आप खाते हैं तो वो ग्लूकोज घटाने के लिए इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, तो वो कंट्रोल करता है
1: जी।
0: लेकिन यहाँ पे इंसुलिन को रेजिस्टेंस होता है क्योंकि ग्लूकोज बनाने वाले हार्मोन ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से जब आप भूखे रहेंगे लंबे समय तक ना, तो आपका ग्लूकोज बनाने वाला हार्मोन्स का मात्रा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप नाश्ता जल्दी कीजिए, सुबह जल्दी उठिए और दोपहर में टाइम से खाइए और रात में टाइम से खाइए और दिन भर नहीं खाते रहिए।
1: सही बात है।
0: ये भी एक हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है
1: जी।
0: लोगों को भूख हो नहीं हो कहीं भी हो, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना है
1: जी।
0: सर सुबह 8 बजे नाश्ता किया तो फिर उसे भूख लग गया तो चाय पी लिया, चाय के साथ कुछ खा लिया, मटरी खा लिया, फिर कुछ नहीं हुआ तो एक फल खा लिया, फिर कुछ नहीं हुआ तो ड्राई फ्रूट खा लिया, भुंजा खा लिया, लिट्टी खा लिया, धुसका खा लिया, यू नो। ये भी गलत है मैडम
1: जी,
0: क्योंकि जब तक आप अपने सिस्टम को रेस्ट नहीं देंगे ना, तो वो दूसरे साइकिल के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत समझने वाली चीज है कि आपको खान पान अपना सही रखना है। वंस इन ए वाइल कर लिया तो ठीक है, डेली में नहीं आना चाहिए।
1: जी।

0: और तीसरा मैडम जो बहुत हमारे देश में कम है ना, वो है शारीरिक मेहनत। बहुत तेजी से कमी हुई है इसकी। बच्चों में बचाव के लिए बहुत रास्ते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और मैं बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, मैं स्कूल्स में बोलता हूँ कि आप लोग हर एक बच्चे का एक हिस्ट्री लीजिए कि वो लोग कुछ ना कुछ खेल कूद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक घंटा डेढ़ घंटा कुछ शारीरिक मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके यहाँ क्या है ना, हफ्ते में एक या दो दिन गेम्स क्लासेस होती हैं बस उतना ही होता है, बाकी घर में उनको तो टाइम मिलता नहीं है। तो इसलिए क्या है, स्कूल से भी इम्प्लीमेंटेशन चालू करना चाहिए कि स्पोर्ट्स या शारीरिक मेहनत व्यायाम पे हर स्टूडेंट्स को शुरू से ही पार्टिसिपेट कराएं, उससे भी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने वाला है।
1: सही बात।
0: तो ये तीन चार चीज पे अगर ध्यान दिया जाए ना तो बहुत फायदा है।
1: ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मुझे लगता है सर कि लाइफ स्टाइल अगर थोड़ा सा अगर हम उसमें बदलाव लाए तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और दूसरी बात आपने जो बताई, हमारे श्रोता इसका लाभ जरूर लेंगे ताकि बीमारी से बचे रहें, वो है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम आज की तारीख में बहुत ही कम होता जा रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और बच्चों को भी इस ओर हम उनकी रुचि अगर जगाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से अभी से हम उनको त्राण दिला सकते हैं। सर अब हम आपसे बातें करना चाहेंगे रोटरी क्लब के संबंध में। आप एक असिस्टेंट गवर्नर के रूप में अभी वहाँ पे कार्यरत हैं, तो मैं चाहूँगी जानना कि कैसे आप इस ओर आए, कैसे इससे जुड़े।
0: रोटरी क्लब है ना मैडम, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
1: जी,
0: और हमारे डिस्ट्रिक्ट 3250 है जो झारखंड और बिहार अभी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे है। रांची में अभी 7-8 क्लब्स हैं मैडम
1: जी।
0: मैं जब ज्वाइन किया था तब 4 क्लब्स थे। रोटरी क्लब का एक सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है ना मैडम, जिसकी वजह से आप कुछ सोशल एक्टिविटी खाली प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते हैं, जैसे आप बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ
1: जी,
0: मेरे को अपने पेशेंट्स को मैं फ्री इंसुलिन देता हूँ मैडम, जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते हैं, और मैं करीब करीब 25 सालों से ये कर रहा हूँ
1: जी।
0: जो भी मेरे को लगता है सक्षम नहीं है उनको मैं अपने क्लिनिक से फ्री इंसुलिन पे रख रखा हूँ। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, 15 दिन पहले एक बहुत बड़ा मशीन लगाया गया रिंग पास में
1: जी,
0: CCL के साथ CSR फंडिंग हुई जॉइंटली, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट मैडम।
1: अच्छा,
0: 2 करोड़ का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया रिंग पास में, जो अभी पूरे देश में ही तीसरा है मैडम। एक एम्स में लगा हुआ है, एक निमांस बैंगलोर में, तीसरा रिंग पास में लगा हुआ है।
1: अच्छा,
0: जिससे आप जो मेंटल हेल्थ वाले डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनको उसका बहुत लाभ मिलने वाला है, और उसमें बहुत सारे मेडिसिन से बचने की भी संभावना है, उनको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये रोटरी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है।
1: अच्छा।
0: कि बड़ा ग्रांट लेके बड़ा काम करें। सदर हॉस्पिटल में एक मैमोग्राफी का मशीन लगवाया मैडम, ये साल भर पहले की बात है
1: जी।
0: आज आप जान रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर कितना रैम्पेंट है हमारे यहाँ, और एक क्लास के लोग हैं जो स्क्रीनिंग को समझते नहीं। अब सदर हॉस्पिटल में मशीन लगा हुआ है, कोई भी जाके स्क्रीन करा सकता है बहुत कम से कम खर्च में
1: जी।
0: तो क्या ये एक रोटरी करता है मैडम। फिर यहाँ पे योगदा सत्संग सोसाइटी है, वहाँ पे आप देखे होंगे आंख का बहुत बड़ा सेंटर चलता है डॉक्टर मंगत के द्वारा, तो वहाँ पे भी रोटरी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं कि आपको कहाँ मदद कर सकते हैं। तो हम लोग ने एक भी उनको हाल में एक वैन दिया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों का आई चेकअप करे, और किसी वृद्धावस्था वाले व्यक्ति को देखने में दिक्कत है और सिंपल मोतियाबिंद है तो उनको ला के हम लोग सर्जरी भी करवा के दें
1: जी।
0: तो इस तरीके से रोटरी बहुत अलग तरीके से समाज में काम करता है। फिर इनका एक सहेली सेंटर चलता है, वहाँ पे लड़कियों की ट्रेनिंग होती है मैडम।
1: अच्छा।
0: और उनको सक्षम बनाया जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने पैरों में खड़े हो जाएं।
1: बिल्कुल।
0: स्टिचिंग से लेके सिलाई मशीन से लेके सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, थैला बनाना सिखाना, बहुत सारी एक्टिविटीज होते रहते हैं जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सर्टिफिकेट कोर्स दिए जाते हैं। इस तरीके से वो लोग क्या आगे बढ़ने में मदद मिलता है, ये रोटरी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है। तो इस तरीके से रोटरी का है ना मैडम बहुत सामाजिक योगदान बहुत बड़ा है।
1: बहुत सही बात है। और सर आपने जो ये बात बताई ना कि सामाजिक सेवा के कार्य तो जो ये रोटरी क्लब कर रहा है वो तो है ही, साथ ही साथ मुझे जो लगता है कि समाज सेवा अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए तो जन जन को लाभ जरूर मिलेगा। आप अपनी ओर से क्या संदेश देंगे ऐसे युवाओं को कि सामाजिक क्षेत्र में भी वो जुड़कर अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल है मैडम और मैं बहुत इस पे काम करता भी हूँ। जैसे कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को हमारे क्लिनिक में लेके आता है ना, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम अपने दादा दादी का केयर कर रहे हो ना, तुमको इसका इनाम बहुत मिलेगा। मैं इनको बोल के भेजता हूँ मैडम एंड मुझे लगता है वो उनको बहुत प्रोत्साहित करता है।
1: बिल्कुल।
0: युवा वर्ग को मैं यही बार बार बोलना चाहूंगा, इंटीग्रिटी के साथ लाइफ लीड करो, शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: चार चीजें बहुत मुख्य हैं, कोई भी चीज को जज करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छे नहीं है आपको जज करने की जरूरत नहीं है।
1: सही बात।
0: जस्ट उनको फॉलो करते रहिए, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। एनालाइज जहां करने बैठेंगे हम उसके लिए एक्सपर्ट नहीं है कि हम कोई सिचुएशन को एनालाइज करें। थर्डली क्या है ना, कंपेयर नहीं करो अपने आप को, क्योंकि आप किसी से सबसे बहुत ऊपर हो तो आप क्यों किसी से कंपेयर कर रहे हो? आप किसी से कंपेयर करेंगे तो आप उनके नीचे जाने वाले हो। तो आप टॉप क्लास हो, सबसे पहले ये मान के चलो कि मैं टॉप में हूँ, मुझे किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं और किसी से एक्सपेक्ट नहीं करो। ये चार मंत्र है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय आपको ये है ना ट्रबल करेगा, आप तुरंत जज करने लग जाएंगे, नहीं ये वाला अच्छा नहीं, ये वाला अच्छा नहीं है। आपकी जो जरूरत है ना वही अच्छा है। डिसाइड वॉट यू नीड विथ ए गुड ऑथेंटिसिटी। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं आपका इनर वॉइस बोलना चाहिए कि नहीं ये तुम ठीक ले रहे हो, तुम चोरी नहीं कर रहे हो, तुम गलत नहीं कर रहे हो, तुमको तुम्हारा अंदर धड़कन नहीं बढ़ेगा। तुम काम करोगे ना तो तुम्हारा अंदर धड़कन नहीं बढ़ेगा, पावर रहेगा। चोरी करते ना हमारा अंदर धड़कन बढ़ जाता है।
1: एकदम सही,
0: समझ गए। तो इंटीग्रिटी ऑथेंटिसिटी के साथ में ये चार चीज पे ध्यान देना है और जो मन में आया ना पावरफुली करो, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। सबके पास में ना अपना एक टैलेंट छिपा हुआ होता है, वो आप ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स भी नहीं कर सकते हैं। ये आपको बोलना पड़ेगा कि ये हमारा टैलेंट है, आई विल डू दिस।
1: बिल्कुल सर, इन सारी बातों से निकलकर अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि जब फुर्सत के कुछ लम्हे आपको मिलते हैं तो क्या आप गीत संगीत सुनना पसंद करते हैं?
0: यस मैडम।
1: तो मैं चाहूंगी कि यहाँ कार्यक्रम में हम आपके साथ साथ आपकी पसंद का एक गीत सुने।
0: मैं अभी बहुत अच्छे अच्छे गीत सुन रहा हूँ
1: जी,
0: और अभी मैं मुकेश के बहुत पुराने सीरीज सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक गाना है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर। मुझे लगता है इसके हर एक वर्ड को अगर आप समझेंगे ना तो आपको लगेगा कि हमारा इंटीग्रिटी कितना स्ट्रांग होना चाहिए और हमको किस तरीके से काम करना चाहिए सो दैट हम इसके चक्कर में ना पड़ें।
1: बिल्कुल।
0: तो हमको चोरी करने की भी जरूरत नहीं है, किसी को मारकाट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। सही है ये। हम लोग सब वहीं जाने वाले हैं
1: जी।
0: तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ दे के जाएं और कुछ अच्छा करके जाएं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जीवन की सत्यता को जाहिर करता हुआ ये गीत है।
0: हाँ।
1: और इस गीत को आइए श्रोताओं सर के साथ साथ हम भी इस गीत को सुनते हैं।
2: ये

0: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय कुमार डंडानिया, जो एक मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर भी हैं। तो सर से आज हमारी जितनी भी बातें हुई, मैं समझती हूँ कि श्रोताओं, ये काफ़ी प्रेरणादायी बातें थी और आप सब इससे लाभ ज़रूर लेंगे। सर, अंत में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को एक चिकित्सक होने के नाते स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: कम खाना, गम खाना, समय पे सो जाना, ये तीन बहुत बड़ा मंत्र है
0: जी।
1: और मैं आपको बताता हूँ, अपना रूटीन अपने से बनाएं, दूसरे के रूटीन को फॉलो ना करें, क्योंकि आपका काम मेरे काम से अलग है, आपका सोने उठने का टाइम मेरे से अलग है, आपके खाने का टाइम मेरे से अलग है, और यह ना भूलिए हमारे दोनों के शरीर का बनावट भी अलग है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ वेरिएशन बाय चार्ल्स डार्विन। लेकिन अपना एक डिसिप्लिन जरूर बनाइए, और मैं आपको बताता हूँ, मैंने डिसिप्लिन लाइफ का बनाना सीखा है अपने दादा दादी से, और मैंने जो भी ये डिसिप्लिन का देखा है उनके लाइफ में, मैंने आज तक कभी किसी को अपनी फैमिली में भी नहीं देखा है, एंड आई ट्राई टू फॉलो व्हाट आई हैव सीन इन देम।
0: बहुत बड़ी बात है। तो एक अनुशासित जीवन अगर हम अपनाते हैं तो जरूर जीवन में बहुत सारे बदलाव हम देखेंगे, और साथ ही साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम स्वस्थ रह सकेंगे। सर, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, स्टूडियो आए और समय निकालकर इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये टाइम स्पेंड करके मैडम, थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए। आपने जानकारी ली मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार ढंढानिया के जीवन के विषय में और मधुरोग के विषय में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनय कुमार ढंढानिया, जो मधुरोग विशेषज्ञ और रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर हैं। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस

प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत से, जिसे गाया है अमित त्रिवेदी ने। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने। फिल्म का नाम है केदारनाथ। इस गीत की फरमाइश करने वाले हैं आप सब। आप हैं केंद्रा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश दत्ता। आइए सुनते हैं इन सभी के पसंद का ये गीत।

अगली फरमाइश है फिल्म तीन देवियां से लता मंगेशकर व किशोर कुमार के स्वर में, बोल है मजरूर सुल्तानपुरी के, संगीत है एसटी बर्मन का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीरक मीका, बलविंदर मीरक, जयतेग बीरक मीका बीरक, और रेगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा करुणा वर्मा।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। अगला गीत है फिल्म शारदा से, लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने, आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी रॉय दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हैं, प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद का ये प्यारा सा गीत।

अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म सिलसिला से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है शिव हरि ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सभी ने, आप हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा।

मिनमिनी के गाए हुए इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम आपकी पसंद। आपने ये प्यारा सा सफर तय किया श्वेता के साथ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: सपनों को पंख मिलते हैं जब हौसले उड़ान भरते हैं, मेहनत की हर एक किरण से सफलता के दीपक जलते हैं। जो खुद पर विश्वास रखती हैं वही नई मिसाल बन जाती है, हर कदम पर आगे बढ़कर अपनी नई पहचान बनाती हैं। नमस्कार सखियो, आप सुन रही हैं अपना प्रिय कार्यक्रम गृहलक्ष्मी और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी, अपने परिवार के साथ खुश होंगी।
1: बिल्कुल, और सभी सखियों को रानी का भी प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हुनर को अवसर मिले तो सपने भी हकीकत बन जाते हैं, और इसी सोच के साथ आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए ऑनलाइन व्यवसाय के विषय में। क्योंकि बहनों, आज का समय डिजिटल युग का है, जहां एक मोबाइल फोन और इंटरनेट की मदद से महिलाएं घर बैठे अपने सपनों को कई नई उड़ान दे सकती हैं।
0: सचमुच आज इंटरनेट ने महिलाओं के लिए सफलता के नए रास्ते खोल दिए हैं। अब महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना व्यवसाय भी सफलतापूर्वक चला रही हैं। सखियों, पहले व्यवसाय शुरू करने के लिए दुकान, अधिक पूंजी, कई संसाधनों की जरूरत होती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ये काम बहुत आसान बना दिया है।
1: हाँ सखियों, अगर किसी महिला को सिलाई, बुनाई, पेंटिंग, बेकिंग, अचार पापड़ बनाना, मेहंदी, ब्यूटी सर्विस या पढ़ाने का हुनर है, तो वो अपने इसी हुनर को ऑनलाइन व्यवसाय में बदल सकती है, क्योंकि वो इसके माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच सकती है। क्यों खुशबू?
0: बिल्कुल रानी, और इसी तरह यदि किसी को पढ़ाने का अनुभव है, जैसा कि रानी ने बताया, तो वो ऑनलाइन ट्यूशन या कोचिंग भी एक अच्छा विकल्प के रूप में अपना सकती है। आज कई महिलाएं हैं ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे डिजिटल माध्यमों पर अपनी रेसिपी, ब्यूटी टिप्स, फैशन, शिक्षा और हस्तकला से जुड़ी जानकारी है ना, वो साझा करके लोकप्रिय भी हो रही है, और साथ ही इससे एक आय का अच्छा साधन भी बना रही है।
1: बिल्कुल, लेकिन बहनों, ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि हम अपनी रुचि और क्षमता को पहचाने, साथ ही इसकी शुरुआत हम छोटे स्तर से भी कर सकते हैं। सखियों, ऑनलाइन व्यवसाय का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसकी शुरुआत कम पूंजी से भी की जा सकती है, साथ ही घर और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ व्यवसाय करना भी संभव हो पाता है।
0: बिल्कुल, और सखियों, हमें इस व्यवसाय में इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी मेहनत, लगन, अच्छी गुणवत्ता और ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखना है। साथ ही सोशल मीडिया की जानकारी और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार भी हमारी सफलता की कुंजी बनता है, और इसमें हमें निरंतर है ना नई चीजें सीखते रहना चाहिए और अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय इसी से हमारा अच्छा चलता है। लेकिन सखियों, जैसा कि रानी ने भी बात की कि इसमें काफी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है और इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होता है।
1: बिल्कुल, ग्राहकों का विश्वास जीतना, अच्छी गुणवत्ता बनाए रखना और साइबर धोखाधड़ी से बचना भी महत्वपूर्ण है। खुशबू, सही योजना, धैर्य और निरंतर प्रयास से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है बहनों।
0: और ऑनलाइन व्यवसाय महिलाओं के लिए केवल कमाई का साधन नहीं है सखियों, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और आत्मविश्वास का भी एक मार्ग है। आज की महिला यदि अपने कौशल को डिजिटल मंच से जोड़ दे, तो वह न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती है, बल्कि समाज में भी नई पहचान बना सकती है। तो सखियों, जरूरत है अपने हुनर को एक सही दिशा देने की, और आज का छोटा सा कदम कल सफलता की एक नई कहानी लिख सकता है। क्यों रानी?
1: बिल्कुल, और खुशबू, बातें तो इतनी सारी हो गई है ना, तो अब क्या,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। मैं हूँ रानी और साथ हमारे हैं
5: खुशबू। और सखियों, बातें तो बहुत सारी हो रही है और अब हम आपको सुनाएंगे एक भेंट वार्ता। और आज का विषय है आर्थिक स्वावलंबन। और आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर संहिता सुचित्रा और उनसे बातें कर रही हैं रानी शुक्ला, क्योंकि आज अपनी जरूरतों के लिए हम दूसरों पर निर्भर ना रहकर अपनी आय और संसाधनों के बल पर जीवन यापन करना आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी विषय पर आज ये बातचीत सुनिए।
4: बहनों, हर महिला के मन में अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए अनगिनत सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए हौसलों के साथ आत्मविश्वास और आर्थिक रूप से मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। और जब ये दोनों साथ हो तो महिलाएं अपने सपनों को नई उड़ान दे सकती हैं और आत्मनिर्भरता की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा सकती हैं। बहनों, आज हम बात करेंगे आर्थिक स्वावलंबन की। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर संहिता सुचारिता। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की डीन और अर्थशास्त्र एवं विकास अध्ययन विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। नमस्कार संहिता जी, आपका

0: बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
1: नमस्कार
0: संहिता जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आर्थिक स्वावलंबन का वास्तविक अर्थ क्या है।
1: इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट का मतलब यही है, आर्थिक रूप से इतना सिक्योर्ड हो जाना कि हम लोग अपना जो बेसिक नेसेसिटी है उसको हम फुलफिल कर पाए। बेसिक नेसेसिटी में हम लोगों का फूड, शेल्टर, ये सब आता है, और उसके लिए हमें किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, उसको हम बोलते हैं कि आर्थिक रूप से हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और आर्थिक रूप से हम जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारे पास अलग अलग विकल्प होते हैं जिसको हम चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई करें, तो हम उस विकल्प को चूज कर सकते हैं, हम आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। इसी तरह से जब हम अलग अलग विकल्प को चुन पाते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है और हम अपना सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं बेसिक नेसेसिटी को, उसी को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट को।
0: बिल्कुल, अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होना।
1: हाँ
0: जी, और ये आत्मविश्वास से भी जुड़ा है।
1: जी
0: बिल्कुल, आज के समय में महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है, इससे उनके जीवन, परिवार और समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं।
1: स्वाभाविक रूप से कोई भी इंसान को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, और खास करके महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। वो ये मायने नहीं रखता कि उनके हस्बैंड कौन से जॉब में है, कितना इनकम करते हैं, या उनके पिता क्या करते हैं, या उनके बेटा कुछ क्या करते हैं, लेकिन उनको आर्थिक रूप से हमेशा ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उससे उनकी डिग्निटी, लिबर्टी, ये सब आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक लाइफ को अनसर्टेनिटी से बचाता है, क्योंकि ये हमारे लाइफ को बहुत सिक्योर करता है, एक वुमेन के लाइफ को बहुत सिक्योर करता है। घर में कोई भी परिस्थिति हो सकती है जिसे हमें नहीं पता कि क्या अनसर्टेनिटी फ्यूचर में आएगा, तो ये बहुत सिक्योर कर लेता है, जो एक स्वाभाविक सी बात है। अगर एक वुमेन अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो वो डोमेस्टिक इनकम को कंट्रीब्यूट करके वो पॉवर्टी को, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक कर सकती है। क्योंकि वुमेन जो होती है हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सब के लिए करती है, या स्वास्थ्य के लिए करती है। वो स्वाभाविक सी बात है कि वो बच्चों का वेलफेयर के लिए या फैमिली के वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, तो उससे वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ब्रेक होता है। क्योंकि हमारा जब एजुकेशन लेवल या ह्यूमन कैपिटल में हम जब इन्वेस्ट करते हैं, तब आगे जाके फ्यूचर में और अच्छा इनकम करने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो पर्सनल फ्रीडम लाता है, लिबर्टी लाता है, एम्पावरमेंट लाता है वुमेन को, और समाज को भी बहुत सुदृढ़ करता है। क्योंकि एक अच्छा माँ ही अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकती है। अगर वुमेन इंडिपेंडेंट है, वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, और उसके परिवार में उसके बच्चे उसको सम्मान दे रहे हैं, उससे बहुत सारे चीजें सीख रहे हैं, तब एक स्वस्थ समाज भी बन सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, लेकिन आत्मनिर्भर बनने की राह में कई चुनौतियां भी आती हैं। आज भी कई महिलाएं हुनर और इच्छा होने के बावजूद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाती। आपकी नजर में इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
1: हाँ, वुमेन मेजोरिटी केस में आत्मनिर्भर नहीं हो पाती है, उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वर्क बर्डन रहता है, क्योंकि वुमेन जो होते हैं उनको घर के काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, बच्चों का केयर लेना पड़ता है, जिसके वजह से वो कहीं अगर बाहर जाके काम करेगी तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ये सब काम नहीं कर पाएगी घर में। तो इसीलिए कभी कभी सोसाइटल प्रेशर भी रहता है, घर में भी प्रेशर होता है, तो जिसके जैसे वो काम करने नहीं जा पाती है। और सबसे मुख्य बात है कि एक सोसाइटी में एक स्टिग्मा टाइप है, कि रूटेड कल्चर है कि जो मेल होता है वो हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। तो सोसाइटी में या फैमिली में ये बोलते हैं कि नहीं, ये लड़की जैसा जॉब नहीं है, तो हम वहां उसको नहीं देंगे, बाहर जाके कैसे रहेगी, ये सब बहुत सारा प्रश्न उठ जाता है। और कभी कभी वर्क प्लेस में भी पे गैप रहता है, मतलब मेल को ज्यादा पैसे मिलता है, वुमेन को कम मिलता है, और उसके पास कोई मतलब ओनरशिप भी नहीं रहता, जैसे जमीन हुआ, घर हुआ, ये यूजुअली इंडियन कल्चर करियर में मेल को ही जाता है, तो उसके पास कुछ कोलेट्रल नहीं रहता है जिसको वो रख के लोन ले पाए। ये सब बाधाएं तो है उसके काम करने में या तो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होने में। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि वुमेन का जो बिहेवियरल इश्यूज है उनके पास कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि वो ऐसे सोसाइटी में बढ़ी है, ऐसे फैमिली में बढ़ी है कि उसके पास कभी उसको बचपन से बताया नहीं गया सेविंग, इन्वेस्टमेंट, जॉब, वर्क, ये सब बारे में, जिसके वजह से उसको कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उसको फ्रॉड ये सब जो आजकल जो हो रहा है इसके वजह से भी वो कॉन्फिडेंस उसका कम होता है और बिहेवियर या तो एटीट्यूड नहीं रहता है कि हाँ मुझे जाके कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है, तो इसके वजह से भी कभी कभी वुमेन बहुत कुछ कर नहीं पाती है।
0: बिल्कुल, तो इस स्थिति से निकलने के लिए जरूरत है कि महिलाएं अपने हुनर को पहचाने और छोटे कदमों से शुरुआत करें।
1: हाँ, हुनर को पहचाने जो है वो हम इसे स्टिग्मा टाइप नहीं सोचना चाहिए कि वुमेन का काम ये है तो यही काम वो कर पाएगी, ये ना सोच के मतलब किसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कौन सा स्किल लेने से वो कर पाएगी। अभी ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दे रही है गवर्नमेंट, रूरल वुमेन को दे रही है, मतलब ये ना सोचे कि ये मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ पार्लरिंग कर पाऊंगी, टेलरिंग कर पाऊंगी या तो केयर टेकिंग का जॉब कर पाऊंगी। जिस फील्ड में वो अच्छी है उस पे वो समय दे, स्किल के ऊपर काम करे तो वो बेटर कर पाएगी।
0: बिल्कुल, और अगर किसी महिला के पास बहुत कम पूंजी हो लेकिन कुछ करने का जज्बा हो तो वो किन छोटे छोटे कार्यों या स्वरोजगार से अपनी शुरुआत कर सकती है?
1: जैसे कि किसी महिला के पास कम पूंजी है वो बहुत सारे चीजें छोटे छोटे काम कर पाएगी। आजकल सरकार का भी बहुत सारा योजना है जिससे मतलब वुमेन को ट्रेनिंग दिया जाता है और वो अपना खोल सकती है एंटरप्राइज, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया में कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है और उसमें प्रायोरिटी वुमेन को रहता है, 10 लाख से 1 करोड़ तक वुमेन को मिल सकता है लोन, बिल्कुल कोलेट्रल फ्री है। तो उस पे वो सरकार का सहयोग लेके ये प्रोग्राम के थ्रू अपना एक एंटरप्राइज खोल सकती है, स्मॉल एंड मीडियम प्राइस। और स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी हम लोगों का है जो कोलेट्रल फ्री लोन देता है, उसमें हम लोगों का शिशु, किशोर, तरुण, इस तरह के अलग अलग स्तर में लोन मिलता है। एसएचजी ग्रुप है, आजकल तो एसएचजी ग्रुप बहुत प्रोमिनेंट हो गया है, कोई भी विलेज में आप देखेंगे तो एसएचजी ग्रुप है जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा है, जिसमें माइक्रो क्रेडिट मिलता है वुमेन को और वो लोग कम्युनिटी और ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, तो वो सब कर सकती है। या तो फिर ये अगर ये सब सरकारी व्यवस्था से भी नहीं करना चाहती है तो आजकल बहुत मतलब कुछ नहीं तो खाना कैसे बनाते हैं वो भी अपलोड करके लोग इनकम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं आजकल बहुत ज्यादा, मतलब आना आजकल टिफिन कल्चर भी बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे सिमिलरली तो वुमेन चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, पार्लरिंग, टेलरिंग जैसे वो काम भी कर सकती, बहुत सारे काम वो कर सकती है जिससे सरकारी सुविधा भी मिलती है। बस उनमें जज्बा रहना चाहिए, कुछ नहीं तो अगर वुमेन थोड़ा एजुकेटेड है, जीरो इन्वेस्टमेंट में वो प्राइवेट ट्यूशन भी दे सकती है, ये सब काम भी कर सकती है।
0: बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात है कि सही योजना, मेहनत और लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए। हमारी बहनों को इन योजनाओं की जानकारी भी होनी चाहिए जिनका वो लाभ उठा पाए। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए किस तरह नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं?
1: आप एकदम सही बोल रहे हैं, जो प्रश्न आपने पूछा है बहुत मतलब एक्यूरेट है, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन व्यवस्था है, जो लोग वुमेन जो है वो सपोज कुछ करना चाहते हैं और वो स्किल नहीं है, तो वो आजकल बहुत सारे ऐप है जिससे वो बहुत सारा सिलाई, बुनाई और खाना बनाना ये सब सीख सकती है। आज लज वो एक कंटेंट क्रिएटर की तरह वो कुछ बना के सपोज कुछ खाना बना रहे हैं या पापड़ ये सब बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको भी अपलोड करने से उससे भी इनकम कर सकते हैं। और उसको छोड़ के भी वो लोग आजकल सब कुछ ऑनलाइन, अगर आप अपलोड कर लेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर भी आ जाता है कि ये सामानों का, वो भी कर सकते हैं। और वुमेन आजकल चाहे तो अगर उनके घर में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं।

0: इवन सर्विस सेक्टर में बहुत सारा फीमेल जो है वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, जिससे वो अपने घर को, बच्चों को और वृद्ध लोगों को समय देने के बावजूद भी काम कर सकते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: ऑनलाइन जो व्यवस्था है वो बहुत एक सहयोग है वुमेन के लिए, क्योंकि
1: जी
0: वो 24 आवर बाहर काम नहीं कर सकती हैं, उनको घर के लिए कुछ समय देना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल, यानी मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन सकता है।
0: हाँ
1: संहिता जी, पैसे कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही बचत और समझदारी से प्रबंधन करना। महिलाओं को बचत, बजट और पैसों के सही प्रबंधन के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: हाँ ये एकदम सही प्रश्न है। आप कितना इनकम करें वो मायने नहीं रखता है, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं जाने तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की जब बात करते हैं, वो एक टाइप का अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, बिहेवियर होता है जो साउंड फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एक महिला जो होती है वो सिर्फ इनकम करने के बाद सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भी नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि जो वुमेन होती है उनको सेविंग एटीट्यूड तो रहता है लेकिन वो इनफॉर्मल सेविंग करते हैं। अभी ट्रंक में पैसे रख दिए, अलमारी में रख दिए, कोई कोई डिब्बा में भी रख देते हैं, दाल चावल के डिब्बे में, इस तरह से वो सेविंग एटीट्यूड है उनमें,
1: जी
0: लेकिन वो उसको फॉर्मलाइज नहीं करते। अगर वो उसको फॉर्मलाइज करें, उसके रिलेटेड नॉलेज अक्वायर करें, तो वो कम समय दे के भी इनकम कर सकते हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब बहुत मायने रखता है। और इंडिया में अभी वुमेन जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी में पीछे इन कंपैरिजन टू मेल, तो उसमें आगे जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, बजट बनाना, जरूरत और इच्छा में अंतर समझना और पैसों से जुड़े फैसलों की जानकारी रखना आर्थिक मजबूती के लिए बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है, सिर्फ वुमेन की बात नहीं है। जब कोई एक बच्चा भी है हमारे घर में, अगर लड़की है तो उसको पहले से सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अवगत करवाना ही चाहिए, ताकि वो बड़े होके ये सब के बारे में जाने, कि हमें बचपन से ही गर्ल्स को इस सब के बारे में जानकारी देना चाहिए, ताकि उसका एक कॉन्फिडेंस आए और वो सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब का वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझे।
1: बिल्कुल, और अंत में जो महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत करना चाहती हैं लेकिन किसी कारणवश अभी तक अपना पहला कदम नहीं उठा पाई हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: ये कभी भी मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितना इनकम है, ये मायने रखता है कि जो आपके पास मनी है उसको आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो महिलाओं के पास ज्यादा पैसे नहीं है वो भी चाहे तो बहुत सारे चीजें कर पाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है और स्किल की जरूरत है। जो आजकल सरकार बहुत सारे स्कीम के थ्रू स्किल प्रोवाइड कर रहा है, प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये सब बहुत सारे स्किल इंडिया मिशन, ये सब चल रहा है, तो कुछ ना कुछ स्किल एक्वायर करके उनको कॉन्फिडेंस रख के छोटा या बड़ा काम ना सोच के कहीं ना कहीं से शुरुआत करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और वो इम्पोर्टेंट समझे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, इस चीज को वो समझे कि ये उनको फ्रीडम दे सकता है और एम्पावरमेंट भी दे सकता है। जिस दिन वो चीज समझ जाएंगी, काम को छोटा या बड़ा बिना समझे वो आगे बढ़ेंगी।
1: बिल्कुल, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और आत्मनिर्भर महिला न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि परिवार और समाज को भी मजबूत
0: हाँ
1: बनाती है।
0: एकदम सही बोलते हैं।
1: संहिता जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम में दिया, इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सखियो, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता और विषय था आर्थिक स्वावलंबन, और आज की हमारी मेहमान थी डॉक्टर संहिता सुचारिता, उनसे बातें कर रही थी रानी। तो रानी, बातें तो बहुत सारी हो गई, तो क्यों ना अब अपनी सखियों को एक प्यारा सा गीत सुना दिया जाए।
0: हाँ हाँ

0: प्यार होता है अपने भोजन से, क्योंकि भारतीय व्यंजन है अपनी विविधता और स्वाद के लिए भी जाना जाता है, और इस विविधता में पनीर जो है वो विशेष स्थान रखता है। और पनीर से बनने वाले व्यंजन जहाँ स्वादिष्ट भी होते हैं, पौष्टिक भी होते हैं। और आज हम सखियों को बता रहे हैं पनीर के व्यंजन के बारे में, है ना?
1: हाँ, क्योंकि पनीर से बनने वाले ऐसे बहुत सारे व्यंजन हैं जो सभी को पसंद आते हैं।
0: बिल्कुल
1: शाही पनीर, पालक पनीर, मटर पनीर, कड़ाही पनीर, पनीर भुर्जी, पनीर के पराठे। इसके अलावा पनीर का उपयोग सैंडविच, रोल, सलाद, पिज्जा, पास्ता, बहुत सारे स्नैक्स में भी किया जाता है। खुशबू, है ना?
0: तुमने इतने अच्छे अच्छे नाम लिए ना रानी, कि मुंह में पानी आ रहा है। वैसे आज हम अपनी सखियों को बताने वाले हैं शाही पनीर की रेसिपी। तो इसके बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पनीर 250 ग्राम, और प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर 2 प्यूरी बनाकर, और काजू 10 से 12 15 मिनट भिगो कर आप इसे पीस ले, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, ताजी क्रीम 3 बड़े चम्मच, तेल या घी 2 बड़े चम्मच, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया सजाने के लिए, और नमक स्वादा अनुसार। और इसे बनाते कैसे है रानी?
1: सबसे पहले कढ़ाई में तेल या घी गर्म करें, प्याज को सुनहरा होने तक भूनें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट तक उसे भी भून लें। अब इसमें टमाटर प्यूरी और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएंगे जब तक तेल अलग ना होने लगे। फिर इसमें काजू का पेस्ट डालकर चलाएंगे, जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी तैयार करेंगे जो कि काफी स्वादिष्ट होने वाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी अच्छी तरह से बनने के बाद जब ग्रेवी तैयार हो जाए तो उसमें गर्मा मतलब छोटे छोटे पनीर के टुकड़े डाल दें, और 4-5 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे, और अंत में उसमें क्रीम डालेंगे और फिर उसे 1 मिनट तक पकाएंगे। फिर हरी धनिया से सजाकर नान, रोटी, पराठा या जीरा राइस के साथ अब गर्मा गर्म सर्व करें। और यदि रानी आप इसमें रेस्टोरेंट जैसा स्वाद चाहती हैं ना, तो एक बोनस टिप मैं आपको बताती हूँ, इसमें कसूरी मेथी डालें, जिससे स्वाद है ना वो दुगना हो जाता है।
1: और खुशबू भी।
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: तो रानी आज हमारी बातों का सिलसिला अब यहीं खत्म होता है, क्योंकि घड़ी की सुई अब हमें इजाजत दे रही है। और जाते जाते आपको बता दे सखियों कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। अब अपनी दो सखी खुशबू
1: और रानी को देव विदा। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं पहला गीत फिल्म मेरी जंग से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने, शब्द रचना है आनंद बख्शी की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म कलयुग से राहत फतेह अली खान के स्वर में बोल है सईद क्वादरी के, संगीत है रोहेल हयात और फैजल रफी का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अब आप सुनेंगे फिल्म गोलमाल से ये गीत। किशोर कुमार की आवाज में गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत है आरडी बर्मन का।

अभी आपने सुना फिल्म अभिलाषा से ये गीत, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, शब्द रचना थी मसरूर सुल्तानपुरी की, संगीत था आर डी बर्मन का। अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म साथ साथ से ये गीत, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में, बोल है जावेद अख्तर के, संगीत है कुलदीप सिंह का।

इस प्यारे से गीत के साथ ही संपन्न होता है आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम। नमस्कार, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे औद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि यह निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौता एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का

0: पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: This agreement would open up new opportunities.
2: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: Both the countries, India and the United Kingdom.
0: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force from today. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the agreement will benefit women, farmers, youth, MSMEs, innovators, professionals and fisherfolk, creating various opportunities. In an article in an English daily, Mr. Goyal said that this ambitious agreement will empower every section of society, reflecting the capabilities and aspirations of the people of India. Mr. Goyal said that it will not only benefit just Indian exporters, but also white-collar service sector professionals across skill sets. He noted that under the agreement, nearly all of India's exports to the UK will enjoy duty-free access. The Commerce and Industry Minister mentioned that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils, and others by placing them in the sensitive list and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. The minister noted that these exclusions reflect the government's strategy of prioritizing food security, domestic price stability, and vulnerable farming communities. Prime Minister Narendra Modi has said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, and the Agreement on Social Security, which came into force today, is a significant moment in the partnership of India-United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal.

0: marking a milestone in bilateral economic relations, the first export consignment under the new Indo-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement was flagged off in Chennai today. The British Deputy High Commissioner to Chennai, Dr. Suttappa Chaudhary, joined the officials from the Directorate General of Foreign Trade to flag off the consignment. Industry bodies have described the India-UK Free Trade Agreement as a historic milestone in India's free trade agreement journey. Secretary General of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Anand Swaroop, has said the agreement will go a long way in enhancing India's participation in global value chains. Mr. Swaroop congratulated Prime Minister Narendra Modi on the operationalization of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement.
1: This agreement would open up new opportunities for the Indian industry in both goods and services. The cooperation in innovation, technology, and talent mobility will enhance Indian industry's competitiveness. The agreement is a major landmark in India's FTA journey and will go a long way in promoting India's participation in global value chains and encouraging innovation-led growth in both the countries, India and the United Kingdom.
0: President Draupadi Murmu has said that the central government has established Ayurveda and Yoga on the global stage with renewed energy. Addressing the inaugural function of Saushrutam 2026 in New Delhi today, the president expressed satisfaction that efforts are being made to establish the ancient tradition of Ayurvedic surgery on scientific standards. Vice President and Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan today administered the oath to the newly elected members of the Upper House. The members included Mansoor Ali Khan from Karnataka and Rajneesh Kumar Agrawal from Madhya Pradesh. United States President Donald Trump has claimed the Strait of Hormuz remains open to international shipping but is closed to Iranian traffic. He said U.S. officials had recently conveyed a message to Tehran, urging it to reach a deal or face further consequences. In an interview, Trump has warned Iran of intensified military strikes next week unless Tehran returns to the negotiating table. The IMD has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeast India, Bihar, West Bengal and Uttarakhand till tomorrow. And in FIFA Cup football, Spain stormed into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas last night. In other semi-final, defending champions, Argentina will face England at Atlanta Stadium tonight at 12:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
2: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने नौवीं कक्षा में तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार एनसीईआरटी और सीबीएसई से मांगा जवाब। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जुलाई को करेंगे लोकार्पण। पुलिस मुख्यालय ने लापता और बरामदगी से संबंधित मामलों की निगरानी और अनुसंधान के लिए सभी जिलों को स्थायी मॉनिटरिंग सेल गठित कर रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। राज्यभर में रथ यात्रा महोत्सव कल से होगा शुरू। आज एकांतवास से बाहर लाकर भगवान जगन्नाथ के विग्रहों का किया जाएगा नेत्रदान। और झारखंड में मॉनसून की बारिश सामान्य स्तर से नीचे। पूरे राज्य में अब तक 41% कम हुई बारिश। धान समेत खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार एनसीईआरटी सीबीएसई से उन दो नई याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें कक्षा नौवीं के छात्रों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी नीति को चुनौती दी गई है। एक सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तिथि तय की गई है। इधर सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई भाषा नीति जारी की है। सत्र 2027-28 से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, लेकिन स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में पास होना अनिवार्य होगा। इसमें फेल होने पर दसवीं बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची मंडल के पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जुलाई को दोनों स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि दोनों स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन स्टेशनों में विशेष सुविधाएं होंगी।
3: रांची मंडल के अंतर्गत आने वाले पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा होते ही इसके उद्घाटन की तैयारी शुरू कर दी गई है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए इन दोनों स्टेशनों को नया और काफी आकर्षक रूप दिया गया है। यहाँ बेहतर प्रवेश द्वार, विकसित प्लेटफॉर्म, आधुनिक शेल्टर, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, बेहतर रोशनी, यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी समेत कई सुविधाएं होंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विभागीय कार्यवाही में अंतिम दंड का आदेश पारित होने के बाद सिर्फ आपराधिक मामला लंबित होने पर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की अंतिम पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार और महालेखाकार को 6 सप्ताह के भीतर अंतिम पेंशन भुगतान का निर्देश दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कल शाम रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां की विधिवत पूजा अर्चना की और झारखंड और देशवासियों के लिए खुशहाली मांगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मां छिन्नमस्तिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी शक्ति दें कि उनके नेतृत्व में भारत 2047 तक दुनिया का सबसे सशक्त और विकसित राष्ट्र बने।
4: भगवान से मांगते हैं कि माँ आशीर्वाद तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो और शक्तिशाली हों, बलशाली हों और दीर्घायु हों, और 2047 जो उनका सपना है दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र वो राष्ट्र बने। तो देश तो देखो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बने।
2: पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर खूंटी बाईपास सहित झारखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि खूंटी बाईपास के निर्माण से क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, यातायात का दबाव कम होगा और आदिवासी क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान परियोजना के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने लापता और बरामदगी से जुड़े मामलों की निगरानी और अनुसंधान के लिए सभी जिलों में स्थायी मॉनिटरिंग सेल का गठन कर अनुपालन रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सभी एसएसपी और जिलों के एसपी को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रत्येक जिले में डीएसपी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम बोर्ड की 3 महीने से बैठक नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अपर नगर आयुक्त को पत्र लिखकर जल्द बोर्ड बैठक बुलाने और 16 अप्रैल को हुई पहली बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है। श्री राय ने कहा कि हर महीने कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठकें नहीं होने से नगर निगम के प्रशासनिक और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा महोत्सव कल से शुरू हो रहा है। इससे पूर्व आज भगवान के विग्रह को एकांतवास से बाहर लाया जाएगा और शाम 4 बजे से नेत्रदान उत्सव शुरू होगा जो देर रात चलेगा। अगले दिन भव्य रथ पर सवार कर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों को मौसीबाड़ी ले जाया जाएगा। रथ यात्रा तथा मेले के सफल आयोजन को लेकर कल डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने रथ यात्रा मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। इस्कॉन जमशेदपुर की ओर से कल भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा गोपाल मैदान, जिसको गोल चक्कर, स्ट्रेट माइल रोड, केमिस्ट चौक और साक्षी बाजार चौक सहित विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। इस्कॉन के सदस्य ने बताया कि पिछले 1 महीने से आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
5: यात्रा बिष्टुपुर राम मंदिर से प्रारंभ होकर आपका बिष्टुपुर मुख्य गोल चक्कर होते हुए रीगल गोल चक्कर, रीगल गोल चक्कर से आगे आपका जुस्को गोल चक्कर, जुस्को गोल चक्कर से सीधा कीनम स्टेडियम होते हुए साक्षी गोल चक्कर होते हुए साक्षी पार्किंग जाके समाप्त होता है। देखिए इस पूरे गतिविधियों में अगर बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरे जमशेदपुर का वातावरण हरे रामा हरे कृष्णा के वातावरण से गूंजेगा।
2: हजारीबाग जिले की बरही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रसोईया धमना के पास कल विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया। मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राधा प्रेम किशोर ने दी।
6: जब रसोईया धमना के पास हमारी टीम पहुंची तो वहां हम लोगों ने देखा कि एक ट्रक है और एक छोटी गाड़ी है क्रेटा, जिसमें कुछ लोग पुलिस की टीम को देख के भागना शुरू किए। पकड़ा गया और पकड़ने के उपरांत जब उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि शराब का जो खेप ये बिहार की ओर ले जा रहा है। 3 लोगों की गिरफ्तारी। देखिए लगभग अभी तक जो हम लोगों के पास अनुमान जो है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास।
2: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपए प्रति किलो है। झारखंड के सभी 24 जिलों में मौसम विभाग के अनुसार औसतन 41% कम बारिश हुई है। कम बारिश वाले जिलों में सबसे अधिक प्रभावित गढ़वा, चतरा, कोडरमा, पाकुड़, देवघर और हजारीबाग हैं। हमारे चतरा संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 14 दिनों में केवल 47 मिलीमीटर बारिश हुई है।
7: चतरा जिले में वर्षा की कमी का असर सबसे अधिक धान की खेती पर दिख रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक आर्यन मिश्रा ने बताया कि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की खेती के साथ साथ अन्य खरीफ फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार के अनुसार जिले में अब तक 90% धान का बिचड़ा तैयार हुआ है, लेकिन बारिश की कमी के कारण उसकी रोपाई नहीं हो पा रही है, इससे धान के बिचड़े सूखने लगे हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
2: और अब मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, एनसीईआरटी और सीबीएसई से मांगा जवाब। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17 जुलाई को करेंगे लोकार्पण। पुलिस मुख्यालय ने लापता और बरामदगी से संबंधित मामलों की निगरानी और अनुसंधान के लिए सभी जिलों को स्थायी मॉनिटरिंग सेल गठित कर रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। राज्यभर में रथ यात्रा महोत्सव कल से होगा शुरू। आज एकांतवास से बाहर लाकर भगवान जगन्नाथ के विग्रहों का किया जाएगा नेत्रदान। और झारखंड में मॉनसून की बारिश सामान्य स्तर से नीचे, पूरे राज्य में अब तक 41% कम हुई बारिश, धान समेत खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। आज के उपशास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे राग देव गंधार, विरजा देवी के स्वर में।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम सुगम संगीत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और ये भी।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में

0: समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
5: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
4: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है, लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा

0: कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी।

0: सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। वक्त हो चला है फौजी भाइयों को संबोधित कार्यक्रम जय भारती का। सभी सुनने वालों को श्वेता का नमस्कार। पहला गीत है फिल्म पूरब पश्चिम से, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने। शब्द रचना है इंदिवर की, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: अगला गीत है फिल्म फना से माँ लक्ष्मी अय्यर के स्वर में, शब्द रचना है प्रसून जोशी की, संगीत है जतिन ललित का।

आकाशवाणी की रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से ये गीत, जिसे आवाज दिया है नीति मोहन, विशाल डडलानी, के और शंकर महादेवन ने। बोल है इरशाद कामिल के, संगीत है विशाल शेखर का।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम जय भारती, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बीआईटी मिश्रा के स्थापना दिवस पर संस्थान के 7 दशकों के शैक्षणिक व तकनीकी योगदान की सराहना की। उन्होंने एनईपी 2020 के तहत युवाओं को एआई और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों से जोड़कर जॉब क्रिएटर्स बनाने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में भूमिका निभाने का आह्वान किया। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपना एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा किया। जागरूक मतदाता सशक्त लोकतंत्र का संदेश देते हुए उन्होंने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया में भाग लेने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। जमशेदपुर के चर्चित बिष्टुपुर डीडी बार गोलीकांड और हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों राघवेंद्र कुमार और गणेश मछुआ को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपियों ने मुख्य हमलावरों को छुपाने और फरार कराने में मदद की थी, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। इस मामले में अब तक कुल 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
1: 27 जून 2026 को जो डीडी बार वाली थी ना, उसमें काफी सारे अभियुक्त थे जिनको गिरफ्तारी लगातार की जा रही थी, और इस क्रम में अब तक कुल 14 प्राथमिकी और अपराधी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका। एक और व्यक्ति को पकड़ना बाकी था, उसको भी फाइनली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, और इसके साथ साथ एक और व्यक्ति है जो उसको सहयोग देने में और जो वाहन उपलब्ध करवाने में अन्य प्रकार से इसकी संलिप्तता पाई गई थी, इसको भी आगे फॉरवर्ड किया जाएगा पुलिस द्वारा।
0: रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने बीती रात सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी और ओडी प्रभारी के अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं अरगोड़ा थाने का गेट बंद मिलने पर एसएसपी ने आम जनता की सुविधा के लिए इसे 24 घंटे खुला रखने का सख्त निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी के कर्रा रोड स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधाओं के कारण आमजन का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। आज केंद्र में बच्चों का टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की रूटीन जांच कर आयरन की गोलियां दी गई। डॉक्टरों के अनुसार मलेरिया, टीबी और सामान्य बीमारियों के इलाज एवं सुलभ दवाओं की उपलब्धता से रोजाना बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं।
2: यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और टीबी की भी जांच किया जाता है। ये बस ओपीडी सेंटर है और यहाँ हर मेडिसिन उपलब्ध है। यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है सरकार की तरफ से, पेशेंट को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। पेशेंट ठीक भी होता है, पेशेंट खुश भी रहता है। ज्यादातर पेशेंट यहाँ शुगर जीती का भी होता है, बच्चों का भीड़ लगता है, यहाँ टीकाकरण होता है।
0: गिरिडीह जिले में आज 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो जीटी रोड पर हुई, जहां मालवाहक वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की जान चली गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं तीसरी थाना क्षेत्र में एक 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण सीधी टक्कर में 2 स्थानीय युवकों की मौत हो गई। राज्य में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राजधानी रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज नेत्रदान उत्सव के साथ भगवान जगन्नाथ

भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों विग्रहों का अनुष्ठान शुरू हो गया है। शाम 5 बजे 108 दीपों की महाआरती के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। वहीं कल शाम भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा, जो 25 जुलाई को वापस लौटेगी। इधर हजारीबाग में कल इस्कॉन द्वारा 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक से बने रथ पर यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, जिसमें विशेष पहांडी दर्शन और कोलकाता की टीम द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति मुख्य आकर्षण होंगे। मौसम केंद्र रांची ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर राज्य के चतरा, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 1 से 3 घंटे में इन जिलों के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
3: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
3: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
3: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था। फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
3: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
3: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
3: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
3: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
2: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
3: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
2: जी।
3: अब ये जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
2: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं,
3: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
2: जी।
3: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश
2: जी,
3: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
2: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
2: जी,
3: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
3: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
2: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
3: धरती का हरियाला उत्सव।
4: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
5: नाना जी, नाना जी।
6: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
5: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
7: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
8: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
5: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
6: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
7: ये लो, नानी जी भी आ गई।
9: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
6: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
9: हाँ वो तो है।
5: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
9: अच्छा तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
6: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
5: कहाँ से आया है
6: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
5: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
6: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
6: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
5: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
6: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
5: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
6: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है। वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
5: अच्छा नाना जी।
6: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
7: अच्छा।
6: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
7: अब समझ में आया नाना जी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
6: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
9: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
6: हाँ।
9: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
7: ओह।
9: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
6: बिल्कुल।
9: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
7: अच्छा।
9: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
7: अच्छी अर्थव्यवस्था।
9: हाँ।
6: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
7: वो कैसे?
9: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
7: ओ।
9: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
6: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
7: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
8: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
2: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ।

0: ये लो चाराने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ खुशी खुशी घर जाओ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्र नाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्र नाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
0: महाशय हाँ? कोई बात नहीं
3: है?
0: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है। हाँ? मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
2: हाँ? नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
0: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
4: क्या?
0: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
0: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
0: माँ

0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
1: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
2: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
1: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
2: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
1: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
2: प्रणाम महात्मन।
3: जीते रहो पुत्र।
2: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हो। फिर वे नरेंद्र से बोले,
3: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
2: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
2: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों भर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है। सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा।

0: स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को,
2: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
2: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
0: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी रांची है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। नमस्कार श्रोता, आज मैं आपके साथ हूँ श्वेता। सुनते हैं पहला गीत फिल्म घर से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना है गुलजार की, धुन बनाई है RD बर्मन ने।

आइए सुने फिल्म फर्ज से ये नगमा, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। चलिए सुनते हैं फिल्म आरजू से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना है हसरत जयपुरी की, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम रांची मेलोडीज में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। अगली पेशकश है फिल्म सौतन से। किशोर कुमार के स्वर में गीत को लिखा है सावन कुमार ने, संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

0: तलत महमूद के गाए हुए इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। श्वेता को दीजिए इजाजत, नमस्कार। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। आज देश में स्किल इंडिया मिशन के 11वीं वर्षगांठ और वैश्विक स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक और बाजार की मांग के अनुरूप तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। रांची के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कांके विधानसभा क्षेत्र में SIR अभियान के तहत एक जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अपने मतदाता विवरणों का समय पर सत्यापन और आवश्यक संशोधन कराने की अपील की। पलामू समाहरणालय में आज आयोजित एक समारोह में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने IDBI बैंक के CSR फंड से 10 दिव्यांगजनों के बीच 3 पहिया पेट्रोल चालित ट्राई स्कूटी का वितरण किया। इस अवसर पर उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और सदर SDO संजय कुमार पांडे भी उपस्थित रहे। रांची में 17 जुलाई को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए NPS संचय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि संबंध क्षेत्रों और ग्रामीण उद्यमियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मलिक के निधन से धनबाद में शोक है। कल रात उनका पार्थिव शरीर रांची से धनबाद आवास लाए जाने के बाद से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। आज शमशेर नगर कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। लोहरदगा पुलिस ने कुड़ू थाना क्षेत्र के चांपी पिकेट के पास वाहन जांच अभियान के दौरान 25 ग्राम स्टोन मार्क ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। SDPO श्रद्धा करकेट्टा ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से मिले सुराग के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम बढ़ते कदम। भेंट वार्ता है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम। भेंट वार्ता कर विभा पांडे, भेंट करता है कमलेश कुमार मिश्र, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
2: बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्रा। आज के कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ हाजिर है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जब भी हम अपने एक बेहतर भविष्य की बात करते हैं तो जो सबसे पहला शब्द हमारे दिमाग में आता है और जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो होता है शिक्षा। अगर ये आपके पास है तो आप जिंदगी में कहीं भी नहीं रुकेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। मुश्किलें आएंगी लेकिन उन मुश्किलों से आप पार आगे बढ़ेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। आज हम अपने कार्यक्रम में हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की बात करने वाले हैं। समय के साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है और अपडेटेड रहना है। एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन वही वर्जन है। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब झारखंड सरकार की बात करते हैं, जब हायर एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वो किस तरीके से इसे बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में क्या क्या संभावनाएं हैं और वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थी आज बिना झिझके, बिना किसी आर्थिक परेशानी के, बिना किसी टेंशन के अपने हायर एजुकेशन को परस्यू कर पा रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन को परस्यू कर पा रहे हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विभा पांडे हैं, डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की। मैम, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी नमस्कार, धन्यवाद।
2: शुरुआत ऐसे करते हैं मैम, क्योंकि हमेशा हम अपने जीवन में संभावनाओं की तलाश करते हैं, तो जब हम हायर एंड टेक्निकल बात करते हैं, क्या संभावनाएं हैं आज?
3: संभावनाएं असीम हैं। झारखंड राज्य के बच्चे जो हैं उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। सरकार ये महसूस करती है कि अगर इन बच्चों को वो पूरी सुविधा दी जाए, अपॉर्चुनिटी जो है वो पूरी उपलब्ध कराई जाए, तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे उच्च शिक्षा के दिशा में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है
2: जी।
3: जब झारखंड का डेटा कलेक्ट किया गया, और झारखंड के इंस्टीट्यूशन से ही वो डेटा कलेक्ट करते हैं, जब ये डेटा कलेक्ट किया गया और उसकी स्टडी की गई, तो देखा गया कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है झारखंड का, वो अन्य राज्यों के अपेक्षा थोड़ा कम है। जहाँ पे अन्य राज्यों का 25 से 26 प्रतिशत तक है, झारखंड राज्य में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केवल 17 से 18 प्रतिशत के बीच में है। इसका मतलब है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे कितने उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो 18 वर्ष के नीचे तो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन 18 वर्ष के ऊपर जो है कहीं ना कहीं कोई गैप है, और बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा में एनरोल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने अपना एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि इसके लिए हम हैं सो गांव का गांव है, हर एक घर में उच्च शिक्षा की दिए को जलाएंगे और वहां पहुंचेंगे। इसके लिए अगर नया कॉलेज, नया संस्थान बनाने की जरूरत पड़े तो संस्थान भी बनाई जाएगी, और अगर बच्चे आर्थिक कमजोरी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें ये आर्थिक राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
2: पहले तो मैम, आज बहुत सारे जो श्रोता हैं आज कार्यक्रम बढ़ते कदम को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो उनको हम सरल भाषा में ये बताएं कि जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो मीन्स आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट की और उसके बाद की जो पढ़ाई है वो हायर एजुकेशन में आता है। मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पहले जानना चाहूंगा, जब हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हर चीजें आ गई, चाहे आप आर्ट्स ले रहे हैं, चाहे साइंस ले रहे हैं, चाहे कॉमर्स ले रहे हैं, चाहे कोई टेक्निकल चीज पे जा रहे हैं, लाइक बीटेक हो, एमटेक हो, कुछ भी।
3: हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि उच्च शिक्षा जो है वो इंटरमीडिएट के उपरांत जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, इंटर यानी कि आजकल लोकली हम लोग प्लस टू बोलते हैं, तो प्लस टू के उपरांत जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, ये सभी उच्च शिक्षा के ही अंग हैं।
2: मैम, अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब शिक्षा का अलग जलेगा और वो मजबूत होगा तो हमारा समाज मजबूत होगा। किस तरीके से जब हम सरकार की बात करते हैं, सरकार इस बात को कैसे सुनिश्चित कर रही है कि झारखंड का एक भी बच्चा अपने आर्थिक कमजोरी की वजह से या किसी निजी परेशानी की वजह से हायर एजुकेशन से वंचित ना रहे?
3: इसमें आप देखेंगे कि जब झारखंड की स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुई थी, उस समय राज्य में सिर्फ 3 विश्वविद्यालय थे, रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। और हम जब आज 25 साल के बाद जब हम देखते हैं तो राज्य में 12 सरकारी विश्वविद्यालय हो गए हैं, 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गए हैं, निजी विश्वविद्यालय हो गए हैं। तो ये सरकार की कटिबद्धता को मतलब दर्शाती है कि सरकार जो है उच्च शिक्षा को हमारे हर एक यूथ तक पहुंचाना चाह रही है, ताकि कोई भी युवा उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके अलावा बहुत सारे महाविद्यालयों की भी स्थापना की गई है और आगे भी की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक महाविद्यालय खुले। हम लोग देखते हैं कि क्यों हायर एजुकेशन में बच्चे नहीं एनरोल हो पा रहे हैं, तो एक्सेस यानी कि पहुंच की कमी है। तो इस पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है जी।
2: ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और जो आज भी अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो दो चीजें मुझे बहुत महत्वपूर्ण नजर आती हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना सपोर्टिव इकोनॉमिकली नहीं होता है कि उनको वो उतने पैसे दे सके कि वो अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। तो अब मैं यहाँ पे अपने श्रोताओं के लिए ये जानना, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं हमें मालूम है, और एक बहुत बड़ा चेंज भी झारखंड में आ रहा है, तो मैं एक एक करके उन योजनाओं के बारे में भी आज आपसे जानना चाहूंगा जिनके माध्यम से आप हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को आप लोग सरल बना रहे हैं। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं मैम?
3: बिल्कुल आपने सही कहा कि उच्च शिक्षा से जो युवा वंचित रह रहे थे, इसका एक प्रमुख कारण जो है वह आर्थिक तंगी था। और इस चीज को पहचानते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न स्कीम्स को लॉन्च किया है। सबसे पहले जो स्कीम के बारे में मैं बताना चाहूंगी वह है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत जो उच्च शिक्षा हेतु बच्चों को, विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें इसे 4% के सिंपल इंटरेस्ट पे इसकी भरपाई जो है, विद्यार्थी जब अपना जब उच्च शिक्षा ग्रहण करके और जब वो जॉब करेंगे, जॉब में जाएंगे, तब वो इस लोन की भरपाई कर सकते हैं 4% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रेट पे। और 4% के अलावा जो जितना भी इंटरेस्ट देना है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। बच्चों को सिर्फ जो है वो 4% के सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाना है। इसमें विद्यार्थियों का जो एज है वो 40 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इस स्कीम का बेनिफिट जो है सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है। अगर आपने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से लोन आपने अपनी पढ़ाई के लिए एक बार आप ले लिए हैं और फिर आप किसी दूसरे संस्थान में पढ़ना चाह रहे हैं, फिर आप दोबारा उस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बार ये है। और इसके लिए सरकार ने काफी मतलब अपनी राशि, जो बजट की राशि होती है, उसको भी रखा हुआ है। तो इसमें बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे बैंक्स वगैरह भी सरकार ने काफी सारे बैंकों के साथ समझौता किया हुआ है। ग्रामीण बैंक भी उसमें से एक है, झारखंड ग्रामीण बैंक, जो कि ये लोन देगा। और ये स्कीम काफी अच्छी चल रही है, काफी बच्चों ने अप्लाई भी किया है। और भी बच्चों को मैं बताना चाहूंगी कि इसका स्कीम का वो फायदा लें।
2: इस स्कीम की बात आई मैम, तो प्रैक्टिकली इसी एक इंटरव्यू के दौरान हमारी कुछ बच्चों से बात हो रही थी जिन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि बैंक इसमें किसी तरह का कोलेट्रल नहीं लेता है, कोई दबाव नहीं होता है, तो वो बहुत फ्रीली होकर लोन भी लेते हैं, पढ़ते भी हैं और टेंशन फ्री सारा काम हो रहा है। सो ये फीडबैक आप लोगों को कैसा मिलता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने भी यहाँ पे विभाग में भी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में एक पूरी टीम बैठी हुई है, जो हेल्प डेस्क के तहत एक पूरी टीम बैठी हुई है जो ये सुविधा मुहैया करवा रही है, सपोर्ट कर रही है। कहीं भी बैंकों को भी ये बोला गया है कि कहीं भी किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं भी अगर कोई अड़चन आ रही है तो हमारे साथ वो है, सो इस पे विचार करें और किसी भी अड़चन को दूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे राज्य के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें।
2: ये हम कह सकते हैं कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, 15 लाख रुपए तक की राशि बहुत बड़ी राशि है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स आ रहे हैं जो बच्चे पढ़ सकते हैं और सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। कैसा चेंजेस इसके बाद आपको नजर आया जब गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जमीनी स्तर पे आई, लोग इसका लाभ लिए, किस तरह का एक चेंज आप देख पा रही हैं?
3: अभी तो ये शुरुआत है, पर मैंने देखा कि जैसे ही स्कीम लॉन्च हुई, काफी बच्चे डिपार्टमेंट आ रहे थे, पूछ रहे थे कि कहाँ पे इसके बारे में पता चलेगा ये। तो इससे हमें लगा कि बच्चों में इच्छा शक्ति है, वो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। और जो सरकार ने ये सोचा था कि हो सकता है कि आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे नहीं उच्च शिक्षा में एनरोल हो पा रहे हैं, तो ये शायद सही है, क्योंकि बच्चों को जब ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इनको आर्थिक लाभ दिया जा रहा है, तो बच्चे जो है वो ग्रहण करने के लिए काफी इच्छुक हैं। और ये आसान नहीं है कि बच्चे अपने घर से निकल के सीधे राज्य सरकार के दफ्तर में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि
2: जागरूकता भी नजर आ रही है, बच्चे जागरूक भी हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चे कहीं से कम नहीं है, ये हम बिल्कुल ये चीज जानते हैं, मानते हैं।
2: तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी सुन रहे होंगे, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपको जागरूक होना है, तो आप भी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले सकते हैं। आज तो नेट का जमाना है, डिटेल्स लीजिए, पता कीजिए, लाभ उठाइए। मैम इसके अलावा एक आपका सीएम फेलोशिप स्कीम भी है, ये क्या है, ये किस तरीके से सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट्स को?
3: सीएम फेलोशिप स्कीम के तहत भी हम लोग उच्च शिक्षा के अलग अलग पड़ाव पर जो बच्चों को सहयोग चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए, वो सुविधा हम मुहैया करवा रहे हैं। और रिसर्च अनुसंधान जो है वो उच्च शिक्षा का एक प्रमुख मेन पार्ट होता है, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं होगा तो उच्च शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाएगी। बट जब हम उस लेवल तक पहुंचते हैं, यूजी करते हैं, पीजी करते हैं, फिर पीएचडी जब करने जाते हैं, तो वो एक लंबी पढ़ाई हो जाती है और उसमें बिना किसी आर्थिक सहायता के वो पढ़ाई कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तक हमारे साथ हमारे माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चा अब कमाना शुरू कर दे, क्योंकि परिवार को भी देखना है। अब इस वजह से क्या हो रहा था कि बहुत बच्चे रिसर्च में आगे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनको जॉब की तरफ उनका रुख हो रहा था, क्योंकि जॉब करना भी जरूरी है और टाइम भी लग रहा है,
2: फैमिली
3: भी चलाना है, तो इस वजह से वो रिसर्च की तरफ नहीं जा रहे थे। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि इस रिसर्च को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम रिसर्च के दौरान, पीएचडी करने के दौरान अगर हम बच्चों को एक अच्छा सस्टेनेंस अलाउंस टाइप, एक अच्छा हम पैसा देते हैं, तो बच्चों को शायद जो है सो उनके ऊपर जो दबाव है दूसरे जॉब्स वगैरह में अर्न करने का, वो कम होगा और बच्चे इसमें अपनी पूरी ईमानदारी के साथ रिसर्च को परसू कर पाएंगे। तो इसीलिए इस फेलोशिप अंतर्गत हम वैसे बच्चे जो राज्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए रजिस्टर हो रहे हैं, उनके पास केवल नेट है। जैसे सभी बच्चे जान रहे हैं जो पीएचडी वाले हैं, वो जान रहे हैं कि जब हम राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति के लिए, तो उसमें कुछ बच्चों को जेआरएफ मिलता है जिसमें अराउंड 35,000 रुपया उनको फेलोशिप अमाउंट मिलता है, लेकिन कुछ बच्चे को सिर्फ नेट मिलता है, मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनको कोई हैसो फेलोशिप नहीं दिया, नहीं मिल रहा है। तो इससे उनको पीएचडी में एनरोल होने में परेशानियां आती हैं। तो इसी वजह से, इसी परेशानी को महसूस करते हुए हम लोगों ने इसमें ये स्कीम बनाया है कि वैसे बच्चे जो नेट क्वालिफाई किए हैं लेकिन उनको जेआरएफ नहीं मिल रहा है, उनको राज्य सरकार पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए जेआरएफ देगी और वो जेआरएफ का अमाउंट है 25,000 रुपया।
2: 25,000 ये साल में एक बार मिलता है, यानी एक स्टूडेंट को वन टाइम मिलता है?
3: नहीं, ये एवरी मंथ है, 25,000 एवरी मंथ, हर एक साल में 12 महीने के लिए, और ये अगले 4 साल तक के लिए दिया जाएगा।
2: मतलब एक बहुत बड़ी राशि होगी।
3: बहुत बड़ी राशि है। अब वैसे बच्चे जो नेट भी नहीं क्वालिफाई किए हैं, लेकिन झारखंड के द्वारा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चररशिप कंडक्ट किया जाता है, जेट एग्जाम, अगर उन्होंने वो क्वालिफाई किया हुआ है और वो पीएचडी करना चाहते हैं, राज्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो उनको भी ये फेलोशिप अमाउंट मिलेगा। बस उनकी राशि जो है वो 22,000 रुपए होगी, नेट से 25 के जगह इनकी राशि 22,000।
2: एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है,
3: बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें काफी एप्लीकेशंस इसमें मिले हैं, काफी एप्लीकेशंस।
2: सभी स्टूडेंट्स के लिए या कोई क्राइटेरिया है इसमें?
3: इसमें क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई बच्चा नेट जेआरएफ कहीं और से ले रहा है तो उनको नहीं दिया जाएगा। ये वैसे ही बच्चों के लिए है कि जो राज्य विश्वविद्यालय जो हमारे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में पीएचडी में एनरोल हुए हैं,
2: कोई भी बच्चा
3: उनके पास नेट अथवा जेट होना चाहिए।
2: बहुत बड़ी इनिशिएटिव है ये, और स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं और पीएचडी की बात करते हैं और फिर बिल्कुल आपने सही कहा कि एक दबाव बन जाता है कि इतने से लंबी पढ़ाई हो जाती है, तो कि जॉब करे, कि घर संभाले, कि पढ़ाई करे, तो इसमें इस तरह का एक सपोर्ट ये किसी गार्जियन जैसा होना है। मैं इन दोनों के बारे में कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और जो सीएम फेलोशिप स्कीम आप दे रही हैं, इसका कोई टाइम होता है? कैसे ये फॉर्म ले सकते हैं, कहां से भर सकते हैं, किन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप दें।
3: इसके लिए पोर्टल बना हुआ है और गूगल में भी आप इंटरनेट वगैरह पे भी सर्च करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के स्कीम्स वगैरह, तो आप डालने से ही ये स्कीम्स आ जाते हैं और वो सीधे आपको जो है वो उस पोर्टल पे ले जाएगा, वहां से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से सभी स्कीम्स जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई हो रहे हैं, कुछ भी कोई भी एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन कागज के माध्यम से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है सभी बच्चों को।
2: एक पारदर्शिता भी इसमें बनी रहती है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और आज नेट सभी के हाथों में है, मोबाइल फोन है, सर्च कीजिए और डिपार्टमेंट में जाइए और आपको ये सारी जानकारियां वहां पे मिल जाएंगी। इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण योजनाएं और चल रही है विभाग की तरफ से जिनसे स्टूडेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं?
3: इसके अलावा इसी सीएम फेलोशिप के अंतर्गत ही हमारी और एक योजना है जिसमें हम ऐसे बच्चे, ऐसे विद्वान बच्चे जो बाहर देश के बाहर के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप हम लेकर आए हैं, जहां बच्चों का पूरे साल का ट्यूशन फीस सरकार देगी उस विदेशी विश्वविद्यालय में, जो बाहर के देश के बाहर के विश्वविद्यालयों में जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

0: है तो पूरा ट्यूशन फी सरकार द्वारा दिया जाएगा और वहाँ रहने पढ़ने में जो खर्चा आएगा उसको बियर करने के लिए प्रति वर्ष 6 लाख रुपए तक भी सालाना दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट, और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं सिर्फ देश में नहीं, सिर्फ राज्य में नहीं, बाहर भी जाएं और वो पढ़ाई करें।
1: यानी फॉरेन स्टडी का जो सपना है, और रियली एक सपना ही होता है, एक आम आदमी, एक आम इंसान वो कैसे सोच सकता है, किसान का बेटा कैसे सोच सकता है कि हम जाके फॉरेन में पढ़ेंगे। लेकिन ये योजनाएं आज उस दूरी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी 7 वर्षों का अभी यहाँ पे अनुभव रहा है और आप इस डिपार्टमेंट में हैं, चीजों को करीब से देख रही हैं। जब हम चेंजेस की बात करते हैं, किस तरीके से चेंजेस नजर आ रहा है आपको?
0: अभी इन स्कीम्स के लॉन्च होने का ये बहुत ही शुरुआती दौर है, लेकिन हमने देखा कि जो भी स्कीम्स हम लॉन्च कर रहे हैं हमारे पास बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बच्चों की इच्छा शक्ति दर्शा रही है। इवन जो फॉरेन कंपोनेंट जो हमने लॉन्च किया है कि जहां पे बच्चे विदेश में भी जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उसमें भी हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं, बच्चे आ रहे हैं पूछने के लिए उसके विषय में। तो ये यह दर्शाता है कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ने के मेहनती हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, उन्हें सिर्फ जो है वो सूटेबल मीडियम चाहिए कि किस प्रकार वो अपने उस पढ़ाई को ग्रहण कर लें। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि हमारे विद्यार्थी जो हैं, और मैं ये भी बोलूंगी कि वो जागरूक हैं, तभी तो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं स्कीम को और वो और उसका लाभ लेना वो शुरू कर रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले सके, इसीलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों से यह हम इन्फॉर्मेशन है वो हम बच्चों तक पहुंचा सके।
1: मानकी मुंडा एक स्कीम भी आप लोगों का है, और किस उद्देश्य के साथ इस स्कीम की शुरुआत हुई और इसमें क्या आप लोग बच्चों को इसका लाभ दे रहे हैं?
0: मानकी मुंडा जो है पूरे तरीके से तकनीकी शिक्षा के लिए आर्थिक सपोर्ट के रूप में लाया गया है। आप देखेंगे कि जो लड़कियां हैं, हमारी छात्राएं हैं, वो टेक्निकल एजुकेशन से थोड़ा सा, मतलब जो है, ऐसा नहीं कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, हो सकता है कि परिवार वाले लोग भी ये सोचते होंगे कि तकनीकी शिक्षा में थोड़ा सा वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है तो हम अपनी लड़कियों को उसमें नहीं भेजेंगे, ये कारण हो सकता है। तो चूंकि लड़कियों की, बच्चियों की रिप्रेजेंटेशन तकनीकी शिक्षा में कम था, और उसमें हम लोग ये महसूस करते हुए, राज्य सरकार ये महसूस करते हुए कि हमारी जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उनमें भी पोटेंशियल बहुत है, उन्हें भी तकनीकी शिक्षा में उनको बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम लाया गया है, दैट इज मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम।
1: कितनी राशि इसमें दी जाती है?
0: इसमें जो है वो प्रति वर्ष 15,000 रुपए है। डिप्लोमा, जो पॉलिटेक्निक में जो डिप्लोमा कर रहे हैं जो बच्चियां, उनके लिए 15,000 रुपए है प्रतिवर्ष, और जो बीई बीटेक कर रहे हैं उनके लिए 30,000 प्रतिवर्ष।
1: दिवा मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और जो आपके विभाग का प्रयास है, सरकार की जो कोशिश है कि किस तरीके से उच्च शिक्षा को इतना आसान बना दिया जाए कि हर किसी का सपना पूरा हो, और झारखंड के बच्चे आज विदेश में जा भी रहे, और भी अन्य योजनाएं विभागों से चल रही हैं जहां पे विदेश में जाके झारखंड के बच्चे झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। सो इन सारी चीजों के साथ में आप लोग ये भी ओवरऑल देख रहे हैं कि हाँ, आपके जो बच्चे हैं वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहे, और जिस हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी वो हमेशा तैयार रहे, उनका मनोबल जो हमेशा बढ़ा रहे। ओवरऑल ग्रूमिंग पे भी आप लोग ध्यान देती हैं, विभाग ध्यान देता है
0: इस पर भी? हमारे विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के नियमावली बनाई जा रही है और विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चे जो है वो मानसिक रूप से मेंटली स्ट्रांग बने। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे महाविद्यालय हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, वहां पे सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, क्योंकि सेफ्टी रहे, सेफ कैंपस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कैंपस सेफ रहेगा तभी हमारे छात्र छात्राएं भी वहां पे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां पे मतलब दिल भी मोटिवेटेड मोटिवेट होंगे वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि जहां वो पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें अपने दिन के लगभग 4 से 5 घंटे व्यतीत करने हैं, वहाँ वो कैंपस अगर सेफ नहीं होगा तो उससे वो थोड़ा सा उन्हें मतलब डिमोटिवेटेड होंगे। तो इसीलिए सरकार काफी सारी ऐसे नियमावली बना रही है, ताकि हम लोग ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी बना रहे हैं, स्टूडेंट ग्रीवांस सेल बना रहे हैं, स्टूडेंट ग्रीवांस को कैसे एड्रेस किया जाए, स्टूडेंट्स को या इधर उधर दर दर भटकना ना पड़े। हम लोगों ने हर एक जो हमारे महाविद्यालय हैं वहां पे हम लोगों ने लगभग 316 महाविद्यालय हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत, और सभी जगह हम लोगों ने स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर्स बनाया है। स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर्स में छात्र छात्राओं को एडमिशन के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, आधार वगैरह बनाने के लिए, तो वो सारा सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। भाई हम जान रहे हैं कि आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, कोई भी चीज आपका ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैंपस के अंदर ही सारी ये ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, बेसिक नेसेसिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जा रहा है, जब सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, बच्चों को जो चाहिए वो मिलेगा, तो वो मेंटली स्ट्रांग होंगे ही।
1: ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ठीक है चीजें शुरू तो हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक टेंशन लगा रहता है कि ये नहीं है, तो मेंटली वो इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते, फोकस नहीं कर पाते। तो एक ओवरऑल आप चीजों पर आप लोगों का ध्यान है। मैम इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसपे आप लोग काम कर रहे हैं या फ्यूचर में आप विद्यार्थियों के लिए लाने वाले हैं?
0: जो हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनमें बच्चे सारे तेज हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं कि क्लास में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, तो वैसे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके हुनर को और सुधारने के लिए, उनको और सपोर्ट करने के लिए ताकि वो और आगे बढ़ें, वैसे बच्चों के लिए भी हम लोग हैं सो असिस्टेंटशिप्स ला रहे हैं। जैसे हम लोग यूजी में हम लोग 1200 रुपए की, और पीजी में जो बच्चे अच्छा करेंगे उनके लिए 1500 रुपए पर मंथ का असिस्टेंटशिप ला रहे हैं। तो इसे और ये बच्चे क्या होगा कि ये बच्चे टीचर्स को हेल्प करेंगे, ताकि जो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, जो फास्ट लर्नर्स मेरिटोरियस बच्चे हैं वो स्लो लर्नर्स बच्चों को सपोर्ट करेंगे। तो क्या होता है कि बच्चों में भी आपस में जो है वो
1: एक कंपटीशन की भावना भी आती है
0: और बच्चे भी सहज महसूस करेंगे एक दूसरे के साथ। बहुत बार होता है कि वो टीचर से वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो अपने जो है अपने सहभागी से वो ज्यादा आसान तरीके से वो क्वेश्चन पूछ पाएंगे, दूसरे बच्चे जो हैं वो भी बता पाएंगे, क्योंकि उनको भी रहेगा कि हाँ ये इन अ वे उनकी ये ड्यूटी हो गई है, क्योंकि ये उनको एक असिस्टेंटशिप मिलेगा तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उनके ऊपर एक दायित्व आ जाएगा, जिसके वजह से उनको भी ये ध्यान रहेगा कि मुझे अब दूसरे बच्चों को भी अपने मित्रों को भी देखना है। ये भी एक तरीका है जिससे बच्चों में जो मेंटल बोलते हैं ना मेंटली वो स्ट्रांग बनेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट वेज। फिर इसके अलावा हम लोग जो बच्चे रिसर्च वगैरह में पेपर प्रेजेंट करने के लिए देश विदेश में बाहर जाना चाहते हैं उन लोग के लिए भी हम लोग आर्थिक सहायता ला रहे हैं। फिर जो बच्चे कुछ बच्चे दिव्यांग होते हैं, अनाथ होते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग वाल्मीकि स्कॉलरशिप स्कीम ला रहे हैं, ताकि वैसे बच्चे भी जो माता पिता नहीं है और वो उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं उनको भी ये दिक्कत अड़चन ना आए
1: उन्हें। हर एक क्षेत्र की बात करें, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं बचेगा जो हायर में कुछ भी करना चाह रहा है और उन ना कर पाए। एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है कि मैं लेना जरूर चाहूंगा, क्योंकि योजनाएं बहुत अच्छी हैं आपकी और एक चेंजेस नजर भी आ रहा है, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि ये योजनाओं की जानकारी उन लोगों तक पहुंचे, उनको जानकारी हो, इसके लिए क्या प्रयास है आप लोगों का?
0: जी इसके लिए हम लोग प्लान किए हैं, और अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टेट लेवल पे एक राज्य स्तर पे हम लोग कार्यशाला का आयोजन करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग हर एक विश्वविद्यालय में हमारी टीम जाएगी, वहां पे सभी स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा, पहले राज्य स्तर पर, फिर विश्वविद्यालय स्तर पर, और फिर महाविद्यालय स्तर पर ये सारी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं, हायर स्कूल्स है, जो प्लस टू स्कूल्स हैं, वहां पे भी इनका इंफॉर्मेशन जो है हम पहुंचाएं, क्योंकि वहीं के बच्चे फिर कल को उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उन सभी को ये चीज इन स्कीम्स के बारे में अच्छे से पता होना आवश्यक है।
1: यानी हर एक कदम आप लोगों का भी प्रयास है कि लोग जाने। आज प्रत्येक कदम कार्यक्रम में हमारे साथ आप सुने विभा पांडे मैम को और इन्होंने वो तमाम जानकारियां दी जिनके माध्यम से आप अपने हायर एजुकेशन के सपने को पूरा कर सकते हैं। योजनाएं बहुत सारी हैं बट जरूरी ये है कि आप जागरूक कितने हैं, आपकी चाहत कितनी है आगे पढ़ने की। आपकी चाहत होगी, सरकार आपके साथ होगी, विभाग आपके साथ होगा। ऑनलाइन का जमाना है, आप हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट को जब आप सर्च करेंगे आपको वो सारी

0: है, आपके सपने को उड़ान देगी सरकार अपने योजनाओं के माध्यम से। कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 एवं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए मैं आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण कुछ इस प्रकार है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:35 से आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा विश्व युवा कौशल दिवस, बदलते समय में युवाओं के लिए कौन से कौशल सबसे जरूरी। साथ ही आप जान सकेंगे कि आज इतिहास में क्या दिन है। 5:30 पर होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक। चर्चा का विषय होगा विश्व युवा कौशल दिवस, कार्य क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा, राष्ट्र के विकास में ऊर्जा संरक्षण एवं बरसात के मौसम में स्वास्थ्य का रखें ध्यान। 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। चर्चा का विषय होगा जैविक खाद का प्रयोग करें। साथ ही होंगे हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर विशाखा सिंह।

6:32 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा क्रोध और अहंकार से दूर रहें। साथ ही आप सुन सकेंगे हिंदी वार्ता बाल अपराध और इससे जुड़े कानून। शाम 7 बजे होगा प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर आप सुन सकेंगे आज मुंडारी भाषा में कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। चर्चा का विषय होगा विश्व युवा दिवस एवं अफीम की खेती नहीं करेंगे, उन्नत कृषि अपनाएंगे। 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे कुछ फिल्मी गीत कार्यक्रम रजनीगंधा के अंतर्गत। 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रथ यात्रा।

रात्रि 10 बजे हम फिर लौटेंगे हिंदी नाटिका के साथ। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, कलाकार होंगे पंडित वीजी चोक। 11 बजे हिंदी में समाचार एवं 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 11:00

प्रस्तुत है कार्यक्रम सांस सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म बर्फी से, स्वर श्रेया घोषाल एवं निखिल पॉल जॉर्ज का।

बर्फी फिल्म से आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत निखिल पॉल जॉर्ज के स्वर में, शब्द रचना स्वानंद किरकिरे की एवं संगीत प्रीतम का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अनजाना अनजानी से।

विशाल शेखर का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे, राहत फतेह अली खां के स्वर में फिल्म अनजाना अनजानी से, संगीत विशाल शेखर का। आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म आजा नचले से।

राहत फतेह अली खां के स्वर पे आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म आजा नचले से। शब्द रचना जयदीप सानी की एवं संगीत सलीम सुलेमान का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांसर्ग में अगला गीत फिल्म क्रूक से।

निखिल डिसूजा के स्वर में आपने सुना ये प्यारा संगीत फिल्म क्रूक से। शब्द रचना कुमार की एवं संगीत प्रीतम का। और इसी गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम सांस सरगम अब यहीं संपन्न होता है। शाम के 5 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज झारखंड और ओडिशा के लिए 3,907 करोड़ रुपए की दो रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत झारखंड में राजखरसावां डांगुआ पोसी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। दुमका में आज विश्व युवा कौशल दिवस पर चार झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी द्वारा जागरूकता

कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष सुधीर कुमार मंडल और कर्नल अनिल यादव ने युवाओं से सरकारी कौशल योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का अपील की। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए देशभर में जारी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं। अभियान के झारखंड प्रभारी अभय आश्रय दास ने प्रेसवार्ता में बताया कि आगामी 27 जुलाई को देश के सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित मांग पत्र सौंपा जाएगा। राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन्नान मलिक को आज धनबाद के वासेपुर स्थित शमशेर नगर कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। ऊर्जा संरक्षण और जागरूकता के उद्देश्य से आज शाम 7:30 बजे से बोकारो में 3 मिनट का ब्लैकआउट रखा जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत पेट्रोल पंप और मेडिकल अस्पताल सहित आसपास के प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी गैर जरूरी बत्तियां बंद रखी जाएंगी। खूंटी पुलिस ने तजना नदी पुल के पास हुए दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज के इस सांध्यकालीन सभा में। आज के इस सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूँ मैं संगीता। आइए श्रोताओं, आज के सांध्यकालीन सभा की शुरुआत करते हैं और आप सभी श्रोताओं को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता को हमने आपके लिए सजाया है एक ही गायिका कविता कृष्णमूर्ति के स्वर से सजे चंद चुनिंदा नगमों से। संध्या के 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या के 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार और संध्या के 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या के 6:30 पर आप सुनेंगे हमारी बहनों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम मनोरमा। संध्या 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर आप आनंद लेंगे आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा का आनंद आप लेंगे रात्रि के 8:00। रात्रि के 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात्रि के 10:00 का प्रसारण समय रहेगा गजलों के कार्यक्रम महफिल का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग, इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि के 10:30 पर। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। यहीं से प्रसारित अंग्रेजी समाचारों को आप सुनेंगे रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि के 11:10 पर हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:06 हो चुके हैं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही गायिका कविता कृष्णमूर्ति के स्वर से सजे चंचुनिंदा नगमे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म खामोशी से।

ये गीत श्रोताओं आपने सुना फिल्म अग्नि साक्षी से। आवाज़ जैसा कि आप सभी को पता है गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति की थी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म नगीना से, आवाज़ गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति की।

फिल्म मिस्टर इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हमने आपको सुनवाया एक ही गायिका कविता कृष्णमूर्ति के स्वर से सजे चंचुलिंदा नगमे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, खेती गृहस्थी।

0: सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। धान की खेती और खरपतवार नियंत्रण, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धान भारत की प्रमुख खरीफ फसल है। धान की खेती के लिए चिकनी और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें पानी रोकने की क्षमता अधिक हो। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। इसे गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। किसान भाई बहनों, हमेशा अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार प्रमाणित किस्मों का चयन करें। कुछ लोकप्रिय किस्मों में यानी बासमती धान की किस्मों में पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 और टाइप 3 आ जाते हैं। सामान्य धान में स्वर्ण, सांबा पी आर 126 और हाइब्रिड किस्मों में कावेरी 448, पीएचबी 71, पंत संकर धान और 3 है। सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले। अंतिम जुताई से पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद या हरी खाद मिलाएं। मिट्टी परीक्षण के आधार पर यूरिया, डीएपी और पोटास का इस्तेमाल करें। 1 एकड़ खेत में रोपाई के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीज अगर उपचारित नहीं है तो जैविक विधि से बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारे फसलों में कोई रोग, कीट वगैरह ना हो और स्वस्थ फसल की प्राप्ति हो। नर्सरी में रोपाई के लगभग 25 से 30 दिनों बाद जब 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाए तो वे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां से आप पौधों को उखाड़कर मेन खेत में इसकी रोपाई कर दें। पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में उगाने से खरपतवारों की समस्या और जटिल हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि पूरे वर्ष भर एक ही खेत में धान लेने के बजाय धान की एक फसल के बाद उसमें दूसरी फसलें जैसे चना, मटर, गेहूं आदि लेने से खरपतवारों को कम किया जा सकता है। रोपाई किए गए धान में पानी का उचित प्रबंधन करके खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि धान की रोपाई के 2 से 3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी 1 से 2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी के स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवारों की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। तो अभी हमने आपको जानकारी दी धान की खेती और खरपतवार नियंत्रण।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दुनिया का सबसे पुराना तापमान

0: रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में। जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
1: इस संदेश के बाद जानकारी लेते माफ कीजिएगा इस संदेश के बाद मनोरंजन करते हैं होलोगी से मालंती हिस्सा और साथी के स्वरों में।

0: इस लोकगीत के बाद जानकारी लेते हैं हरी साग सब्जियों की खेती किस तरह से करनी चाहिए, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं देवेंद्र सोए, और इनसे बातें कर रहे हैं कमलेंदु महतो।
1: आज हम मिल रहे हैं एक प्रबुद्ध कृषक से जो हमारे बीच में हैं और काफ़ी बड़े क्षेत्रों में बागवानी किए हैं। साग पात और बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जो अक्सर शायद 12 महीने करते होंगे, इसीलिए खेती में भी इनका बहुत अच्छी तरह से बनावट है। तो हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है सर?
2: मेरा नाम देवेंद्र रसोई है।
1: अच्छा, तो देवेंद्र जी, देख रहे हैं आपके इस बागवानी में बहुत प्रकार के साग और सब्जियां भी लगे हुए हैं, तो आप ये खेती बाड़ी के क्षेत्र में लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं?
2: हाँ सर, ये तो हमको क्या बचपना से ही इसका बागवानी के लिए हमको बहुत इंटरेस्ट रहा।
1: हाँ,
2: तो लगभग हम स्कूल के समय में भी हम बागवानी करते थे।
1: अच्छा,
2: तो उस समय से ही अनुकूल थे, और अभी तो थोड़ा बहुत समय मिलता है और अभी समय के आधार से हमको बागवानी में बहुत शौक लगता है।
1: हाँ,
2: और इसमें थोड़ा सा घर के लिए भी अर्जन आ जाता है, शुद्ध
1: हाँ,
2: खाने के लिए
1: अच्छा
2: मिल जाता है।
1: मैंने अपना ताज़ा सब्जी भी हो जाता है, और थोड़ा बहुत अपना सुबह शाम जो थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा अगर वहाँ पर काम करते हैं, खटते हैं, तो अपना एक शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है नहीं?
2: हाँ, वो तो होता ही है। व्यायाम करने के जगह पर हम यहीं पर अपना खेत में ही
1: हाँ
2: व्यायाम कर लेते हैं।
1: अच्छा अच्छा हाँ, कुछ काम करने से अपना दोनों काम हो जाता है।
2: दोनों काम हो जाता है।
1: तो ये खेतीबाड़ी के क्षेत्र में जैसे कि आप लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं कि ऐसे ऋतु में साग जो है अलग अलग किस्मों के हैं, पालक और भाजी साग के अलग अलग, जैसे हरा वाले 2 किस्म के हैं, फिर लाल साग भी है, और कुछ लतरदार सब्जियां भी लगाएं। तो फिर साग सब्जियों के लिए क्यारी आप शुरुआत में कैसे करते हैं, मतलब जुताई उताई करके समतल करते हैं कि ऐसे खोद करके बनाते हैं?
2: हाँ, जहाँ जैसा भूमि है, नहीं तो कुछ हल्का भूमि में तो अपने खुदाई करवाते हैं।
1: हाँ,
2: खुदाई करके अपने भी करते हैं, और नहीं तो जहाँ अनुकूल यह हो जाता है तो कुछ लेबर लगा लेते हैं।
1: अच्छा अच्छा
2: तो बड़ा खेत में तो थोड़ा सा हम जुताई भी करवा लेते हैं। अभी तो ट्रैक्टर वगैरह भी है ना, लेवलिंग वाला।
1: हाँ, हाँ,
2: उसी से कर लेते हैं, उसके बाद आराम से उसमें लगा लेते हैं। बृहत में साग सब्जी अच्छी तरह से हो जाता है उसमें लगा देने से।
1: अच्छा, जुताई के माध्यम जैसे कि पहले लोग हल बैल से ही करते थे, आजकल बड़े पैमाने पर अगर करते हैं तो ट्रैक्टर, या फिर ट्रैक्टर में भी अलग अलग प्रकार के आ गए, जैसे कि रोटावेटर होता है, वो काफ़ी महीन मिट्टी को बना देता है, जो कि साग के लिए फिर अन्य सब्जी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो क्या वो रोटावेटर में करने से आपको क्यारी बनाने में क्या सुविधा होती है?
2: हाँ, बहुत बढ़िया, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है।
1: नहीं लगता है?
2: नहीं नहीं नहीं, उसमें आप जैसे भी कर दीजिए, उस क्यारी आधार से बना देता है।
1: हाँ,
2: मिट्टी भी भुरभुरा हो जाता है, और आड़ भी साइड साइड में निकल जाता है।
1: कुदाल चलाने से तुरंत बन जाता है।
2: अच्छा।
1: और सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? आपने कोई डीप बोरिंग वगैरह से करते हैं कि और भी कुछ ऐसा बाहर से कोई डैम वगैरह कुछ भी ऐसा बना हुआ है?
2: अभी डीप बोरिंग तो नहीं है, हमारे यहाँ तो कुआं है। कुआं, उसके बाद एक तो नाला जो है।
1: हाँ,
2: मतलब सालों भर हमारे यहाँ पानी उपलब्ध रहती है।
1: अच्छा,
2: सूखता
1: अच्छा।
2: नहीं है।
1: हाँ,
2: गर्मी के दिनों में भी वो नाला सूखता नहीं है, और हम उसमें चेक कर लेते हैं।
1: हाँ,
2: पानी को चेक कर लेते हैं, तो हमारा गर्मी के सीजन में भी वो पानी हमारे लिए अनुकूल हो जाता है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: हाँ,
1: तो आपके क्षेत्र में आपके अलावा और भी जो किसान भाई हैं, तो खेती बाड़ी अक्सर सीजन में करते हैं, फिर अन्य ऋतु में भी करते होंगे, तो गर्मी ऋतु में वे लोग भी करते हैं कि उन लोग के लिए कुछ समस्या हो जाती है?
2: नहीं, उन लोग के लिए कुछ समस्या हो जाती है। समस्या क्योंकि उस समय बैल बकरियों को छोड़ा जाता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: बैल बकरियों को छोड़ने के कारण उसका जो मान लो लगाया भी है तो
1: हाँ,
2: वो सब बैल बकरी नष्ट कर देता है।
1: कर देता है।
2: हाँ, मैं तो अपना अनुकूल बना लिए हैं।
1: हाँ,
2: बाउंड्री वगैरह
1: कर लिए।
2: हाँ, बाउंड्री बनाए हैं, तो उसी में हम सेफ है।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, इसीलिए गर्मी के दिनों में भी हम चास करते हैं।
1: हाँ, जैसे कि धान और गेहूँ, इसके अलावा जो दलहनी खेती करते हैं, इसके बाद भी आप जो हरी सब्जियाँ हैं, चाहे वो फल वाले सब्जी हो, ये सब भी हमेशा करते रहते हैं?
2: हाँ, वो सब भी करते रहते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: घर के लिए भी होता है, और थोड़ा सा जिस प्रकार से अभी व्यवसाय के रूप में भी हो जाता है।
1: अच्छा। तो अधिकतर किसान अधिक उत्पादन पाने के लिए बहुत सारे आजकल जो है रासायनिक खाद हो या फिर डीएपी खाद हुआ और रासायनिक कीट का भी व्यवहार करने लगे हैं। तो आपके ख्याल से ये ज़्यादा व्यवहार करना हमारे स्वास्थ्य के लिए या फिर पर्यावरण के लिए कितना लाभदायक या फिर हानिकारक लगता है?
2: नहीं, उसके लिए कृत्रिम वाला तो हम उसी के चलते ही ज्यादातर अपना कृषि में ध्यान दिए हैं।
1: अच्छा,
2: काहे कि शुद्ध अपना गोबर वाला खाद,
1: हाँ
2: उसका मिठास, और कृत्रिम वाला खाद का डीएपी हुआ, यूरिया
1: हाँ
2: हुआ, उसका उसमें
1: हाँ
2: अलग है,
1: बहुत अंतर है।
2: बहुत अंतर है।
1: सही।
2: और सेहत के लिए, हम अपने
1: हाँ
2: सेहत के लिए, इसलिए हम किसान भाइयों को भी बोलते हैं ज्यादातर इसमें ध्यान रखिए, उसमें मिट्टी भी खराब नहीं होता है।
1: हाँ सही बात है।
2: हाँ, मिट्टी भी खराब नहीं होता है गोबर खाद से, और उसका सब्जी का टेस्ट भी अलग हो
1: अलग
2: जाते
1: होता है,
2: हैं।
1: सही में
2: हाँ।
1: मैंने काफी टिकाऊ भी होता है, और मैंने उसका स्वाद में भी काफी अंतर आ जाता है। उसके साथ साथ हमारे जो पूर्वज थे पहले, ये भी पारंपरिक तौर पर मैंने देसी गोबर खाद से ही ज्यादा खेती करते थे ना,
2: हाँ, उसका ही उपयोग ज्यादातर करते
1: इसीलिए उन लोग का जो शारीरिक क्षमता या फिर काम करने का क्षमता भी अधिक था।
2: थे। हाँ, बहुत अधिक
1: हाँ,
2: है।
1: तो ये पर्यावरण की दृष्टि से तो काफी खराब है। तो जैविक खेती के लिए अभी सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है, तो फिर लोग धीरे धीरे इस पर कुछ अमल कर रहे हैं कि ध्यान दे रहे हैं इसमें, कुछ अपना जैविक खेती करनी चाहिए या फिर गोबर खाद का ज्यादा यूज करना चाहिए?
2: हाँ, हम अपने आसपास के जो भी भाई लोग हैं
1: हाँ
2: तो उन लोग को सुझाव देते हैं,
1: अच्छा।
2: सुझाव देते हैं जैविक खाद का ही प्रयोग कीजिए और उसमें उत्पादन बढ़ाइए।
1: हाँ
2: थोड़ा सा जल्दी नहीं होता है,
1: हाँ बात सही।
2: लेकिन धीरे धीरे वो मिट्टी पकड़ लेता है ना, उसका
1: हाँ
2: उत्पादन अलग ही हो जाता है। हाँ, तो
1: अच्छा।
2: ज्यादातर इसलिए हम भी प्रोत्साहन करते हैं जैविक खाद का ही प्रयोग कीजिए।
1: अच्छा, जो बीज आप लोग जो भी लगाते हैं, चाहे साग का हो या फिर कोई दलहन या फिर अनाज फसलों का हो, तो फिलहाल तो देसी बीज के अलावा उन्नत बीज हमारे बाजार में उपलब्ध है, तो क्या हाइब्रिड वाला जो उन्नत बीज, वही सब ही आप लोग भी अभी फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं क्या?
2: हाँ, हमको कुछ संस्था वाले लोग आते हैं मेरे यहाँ, है ना, हमारा खेती बाड़ी को देख करके कुछ बीजा जो है वही लोग उपलब्ध कराते हैं। वो लोग उपलब्ध कराते हैं, कुछ तो हाइब्रिड का भी रहता है।
1: रहता
2: अच्छा,
1: है।
2: हाँ, लेकिन हाइब्रिड में ये है, उत्पादन तो होगा लेकिन उसका टेस्ट नहीं होती
1: टेस्ट
2: है।
1: नहीं होता।
2: उत्पादन आप कर लेंगे
1: हाँ
2: लेकिन उसका स्वाद जो है हाइब्रिड में नहीं होता
1: ये
2: है।
1: बात तो सही है, चाहे वो
2: हाँ
1: फल वाले सब्जी हो या फिर वो अनाज या धान चावल जो भी हो, देसी चावल और वो जो उन्नत बीज वाले होते हैं, वो दोनों में काफी स्वाद में अंतर हो जाता है।
2: बहुत अंतर, बहुत अंतर है।
1: तो ऐसे कभी कभार जैसे कोई विशेषज्ञ या फिर प्रखंड स्तर से हो, जिला स्तर से हो, या फिर कोई विभाग वाले किसी कृषि के बारे में, चाहे वो केंचुआ खाद बनाने की विधि हो या फिर कृषि के कृष्ण गृह वाटिका के रूप में जानकारी देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो इस तरह का प्रशिक्षण में कभी कभार भाग लेते हैं कि ऐसा कुछ मौका नहीं मिलता?
2: हाँ, कुछ कुछ ज्यादा समय तो नहीं होता है, बीच बीच में हमको लोग बोल देते हैं तो हम उसमें पार्टिसिपेट हो जाते हैं। जैविक
1: अच्छा
2: खाद कैसे बनाया जाता है, क्या करते हैं, उसके लिए हम पार्टिसिपेट हो जाते हैं, जानकारी ले लेते हैं।
1: हाँ
2: और हमारा भी गाय की गाय बैल भी है मेरे यहाँ,
1: अच्छा अच्छा
2: तो मैं भी उसका कुछ अनुकूल बना लेते हैं, गड्ढा उड्ढा खोद करके उसमें
1: हाँ
2: उस आधार से बना लेते हैं।
1: अच्छा अच्छा
2: हाँ, और उसी का ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। देवेन जी, आगे हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कि सिंचाई के बारे में आजकल देखा जा रहा है कि जल स्तर धीरे धीरे नीचे होते जा रहा है और बारिश भी समय पर नहीं हो रही है, तो फिर हम सिंचाई की बातें करें, तो फिर सिंचाई में पहले जैसे लोग पूरे खेत में लबालब पानी भर देते थे, और ऐसे में कभी कभी फसल सड़ने की भी संभावना होती थी या फिर बेकार का पानी बर्बाद होता था। तो अभी सिंचाई पद्धति में कम पानी में कैसे सिंचाई किया जाए, इस पर आप किस विधि से आप लोग फिलहाल सिंचाई कर रहे हैं?
2: हाँ, इस विधि का तो बहुत अच्छा है। तो इसमें मेरा भाई, छोटा भाई है ना, तो कृषि विभाग से ही जुड़े हुए हैं, तो वो पाइपलाइन में काम करते हैं,
1: अच्छा।
2: तो उसके द्वारा कुछ पाइप सब देखिए, इसमें दो तीन तो प्रकार का है, एक
1: हाँ
2: तो टपक सिस्टम का भी
1: हाँ अच्छा
2: है ना, पाइप सब है,
1: हाँ बूंद बूंद
2: टप
1: गिरता
2: बूंद बूंद गिरता है, उसमें
1: है, अच्छा
2: पौधा जहाँ पर यह हुआ है ना वहीं पर
1: उसी के
2: आपका,
1: जड़ में गिरता है,
2: हाँ। और
1: अच्छा
2: एक तो है स्प्रिंगल, जो घूमते घूमने
1: हाँ
2: वाला है,
1: अच्छा। फवारा विधि
2: अब
1: जैसे
2: पवारा वाला विधि से, उसमें भी आप कम पानी से भी सिंचाई कर सकते हैं,
1: अच्छा
2: अच्छी
1: अच्छा
2: तरह से उसमें। नहीं तो आप पानी पाइप के छोड़ दीजिएगा तो पूरा लबालब भरना
1: भर
2: होता
1: जाएगा।
2: है।
1: हाँ
2: नहीं तो इसमें टपक सिस्टम जिस प्रकार मिर्चा हुआ, बैंगन हुआ, टमाटर, उस तो पौधा पौधा और टपक सिस्टम से आप कर सकते हैं।
1: हाँ
2: उसमें पानी का बर्बादी एकदम
1: एकदम
2: नहीं,
1: बिल्कुल।
2: बिल्कुल नहीं।
1: हाँ
2: उसमें जड़ तक, पौधा का जड़ तक पूरा पानी जो
1: हाँ
2: चल जाता है
1: जितनी आवश्यकता है उसको
2: और
1: मिल जाते
2: एकदम
1: हैं,
2: मिल जाता है।
1: सही नमी होनी चाहिए,
2: उसमें पौधा भी बहुत बढ़िया ग्रोथ करता
1: ग्रोथ
2: है।
1: करता है, सही बात है।
2: हाँ, और एक तो है हम जिस प्रकार साग सब है, साग सब के लिए तो हम स्प्रिंगल वाला है ना,
1: अच्छा अच्छा
2: तो सुविधा है,
1: सुविधा। हाँ
2: उसके द्वारा हमको मिला है सब कुछ।
1: मैंने कुछ ही समय चला देते हैं तो पूरे क्षेत्र
2: हाँ,
1: में बारिश जैसा एकदम फल
2: बारिश
1: मिल
2: जैसा
1: जाता
2: हो
1: है।
2: जाता है, जितना
1: अच्छा
2: भी
1: अच्छा
2: है वो बारिश जैसा हो जाता है,
1: पानी
2: तो
1: का भी बचत, समय का भी बचत।
2: समय का भी बचत हो जाता है।
1: अच्छा।
2: हाँ, 1-2 घंटा में हमारा हो जाता है, फिर अपना दूसरा ड्यूटी कर
1: हाँ
2: लेते हैं।
1: अच्छा। आगे हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि जो बहुत सारे किसान भाई हैं, दिन दिन देखा जाता है कि बहुत सारे युवा वर्ग भी खेती बाड़ी को अपना, जिनका खेत रहते हुए भी वे लोग भी आलसी होते हैं और नहीं करते हैं, और बाजार से काफी महंगे रूप में सब्जी वगैरह खरीदते हैं, कभी कभार तो सब्जी मिलता भी नहीं है बाजार में। तो क्या उन्हें भी आप संदेश के रूप में कुछ कहना चाहें कि अगर थोड़ा बहुत जमीन है तो थोड़ा सा करना भी चाहिए उन्हें भी?
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, अपना शरीर के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी,
1: हाँ
2: अपना जहाँ पर है। नहीं तो ये आलसी हो जाता है,
1: हाँ
2: आप थोड़ा बहुत जो चीज कर सकते हैं वो भी नहीं कीजिएगा।
1: हाँ सही बात है।
2: जहाँ तक सुविधा हो, जहाँ तक पानी का सुविधा है, तो आप थोड़ा बहुत तो क्यारी बनाइए और उसमें साग सब्जी कुछ तो उत्पादन कीजिए।
1: हाँ सही बात है।
2: उसमें बहुत सब सेव हो जाता है,
1: हाँ
2: बहुत सेव, परिवार का सही पोषण भी मिलेगा
1: मिलेगा।
2: आपको, पैसा का भी बचत हो
1: बस अभी
2: जाएगा।
1: बचत होगा, अपना शारीरिक व्यायाम
2: हाँ,
1: भी हो
2: व्यायाम
1: जाएगा।
2: भी हो जाएगा।
1: हाँ
2: इसलिए
1: शारीरिक।
2: जितना भी युवा वर्गों को मेरा संदेश है, और वो अपना ये बागवानी पर ध्यान देना ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ, बागवानी कम से कम सवेरे के लिए,
1: हाँ
2: सवेरे 1-2 घंटा, 1 घंटा ही,
1: अच्छा।
2: 1 घंटा या आधा घंटा
1: हाँ
2: बहुत काफी है उसके
1: हाँ
2: लिए,
1: दिन भर करने की
2: का
1: आवश्यकता नहीं।
2: आवश्यकता नहीं है।
1: अच्छा। इतना ही करने से उन्हें अपना पौष्टिक भोजन भी मिलेगा और सब्जी खरीदने का जरूरत भी नहीं, पैसों की बर्बादी भी नहीं, और अपना
2: नहीं,
1: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
2: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और बेरियत में करने के लिए तो उसका और जगह है तो कर
1: हाँ कर
2: सकता है,
1: सकते हैं, सही बात है।
2: और व्यावसायिक रूप में करना है तो अभी सब्जी का भी दाम बहुत ज्यादा ही
1: हाँ
2: है,
1: हाँ
2: इसलिए 1-2 जुवा वर्ग को देखे हैं उधर कुटपानी तरफ में,
1: हाँ
2: है ना, हम मिलते हैं
1: अच्छा।
2: तो उनसे बातचीत करने के क्रम में वो बोलते हैं कि दादा मैं तो इसी में ही, सर्विस करने का कोई दरकार नहीं है,
1: अच्छा
2: बोलते
1: अच्छा
2: हैं ना, मतलब वो साल में हम 2-3 लाख रुपया
1: अच्छा
2: सेव कर
1: अच्छा
2: लेता हूँ खा पी करके, बोलते हैं। तो
1: हाँ
2: उससे और क्या है,
1: क्या है।
2: देखिए
1: हाँ
2: सर्विस ही हर कोई
1: अपना
2: को
1: स्वतंत्र
2: मिल,
1: काम है,
2: हाँ
1: इसमें कोई
2: स्वतंत्र
1: समय
2: काम,
1: का पाबंदी भी नहीं।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं एकदम आप जिस प्रकार से बृहत में लगाएंगे तो आप अच्छी तरह से कमा लीजिएगा।
1: हाँ
2: अभी मार्केटिंग के लिए सुविधा भी हो गया, सब जगह रोड गई हुई है, बसें हैं, सब जगह आप गाड़ी से ले जा करके उचित दाम में बेच सकते हैं।
1: हाँ मैंने स्वरोजगार के लिए हमारा ये जो कृषि कार्य बहुत अच्छा माध्यम भी है और इसे करना भी चाहिए। तो आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आप हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
2: हाँ, धन्यवाद आपको भी।
3: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव, यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?
0: तो किसान भाई बहनों, इन सारी जानकारियों के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहर।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ के पास जमा करने की अपील की है, ताकि 5 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सके। 22 जुलाई को एएसटीडी सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। पाकुड़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने एसआईआर में लापरवाही बरतने पर बूथ संख्या 213 के बीएलओ सुपरवाइजर और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। निरीक्षण के दौरान कुछ मतदाताओं को गलत तरीके से अनुपस्थित और स्थानांतरित श्रेणी में दर्ज किए जाने का मामला सामने आया। धनबाद के मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पोस्टमास्टर राजीव कुमार ने बताया कि धमकी भरा मेल मिलने के तुरंत बाद एहतियातन पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। झारखंड आंदोलनकारी और झामुमो नेता प्रोफेसर कालीपत सोरेन ने सरायकेला खरसावां एसपी मनोज स्वर्गियारी से मुलाकात कर रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने राजनगर क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आग्रह किया। साहिबगंज में युद्धकालीन परिस्थितियों से बचाव के लिए जिला प्रशासन, एनसीसी और जैप 9 के जवानों ने संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। अपर समाहर्ता विजय कुमार ने बताया कि नागरिकों को जान माल की रक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए आज रात 8 बजे स्टेशन चौक पर एयर अटैक से बचाव की विशेष मॉक ड्रिल की जाएगी। झारखंड में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा और ऐतिहासिक रथ मेलों को लेकर राज्यभर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज पट खुलने के साथ ही अनुष्ठान शुरू हो गया है, जहां कल शाम भगवान का रथ मौसीवाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा।

ठीके अकड़ा इमेतिया ने निंतारगे अकड़ा बगुड़ियो तिया समय सेटरियाना तिसिंगे अकड़ा चिलिके बु अटकर केडा निंता निकुल सकम ओल कुलतिया डोगर दो नेलकमेना ओ अकड़ा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चैवासा पिन इरिल पीए पीए बारगुल मयत ते निकुल सकम बु ओल कुल जुइके तुंडुरे अलिंग राम सिंह चतर दिखिंगे तुमुल जीवन ते जोहार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायभाषा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। वक्त हो चला है हमारी बहनों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम मनोरमा का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मनोरमा।

सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है बहनों इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और बहनों, हम देख सकते हैं इन दिनों मौसम में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, कभी बारिश और कभी तेज़ धूप। तो ऐसे में वायरल बीमारियां तेज़ी से पनपने लगती हैं।

तो इसलिए शिक्षा सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज हम यहाँ विशेष रूप से जानकारी देने जा रहे हैं महिलाओं के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है विषय पर। बहनों, शिक्षा महिलाओं के लिए बहुत जरूरी क्योंकि यह उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। एक शिक्षित महिला न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है बल्कि अपने पूरे परिवार का बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य भी सुनिश्चित करती है, जिससे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। स्त्री शिक्षा या महिला शिक्षा, स्त्री और शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुषों की ही तरह शामिल करने से संबंधित है और दूसरे रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धति को संदर्भित करता है। भारत में मध्य और पुनर्जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरुष से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि स्त्री को भी उतना ही शिक्षित होना चाहिए जितना कि पुरुष को। यह तो सत्य है कि यदि माता शिक्षित ना होगी तो देश की संतानों का कल्याण नहीं हो सकता। शिक्षा सभी महिलाओं के विकास के लिए एक आधार के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम महिलाओं के जीवन में कभी कभी बहुत सी समस्याएं आती है और कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है जो पुरुषों से नहीं कह सकने के कारण महिलाएं कठिनाइयों का सामना करती रहती है। अगर महिलाएं शिक्षित हों तो वे अपने घरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में मदद करता है, आर्थिक विकास और एक राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मदद करता है और महिला शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण में मदद करता है। भले ही आज हम आधुनिक युग में जी रहे हों, फिर भी कहीं कहीं रूढ़िवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण के कारण लड़कियों को अक्सर स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसका एक कारण गरीबी भी देखा जा सकता है, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण भी माता पिता अपने सभी बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते और लड़कियों को भी अपने साथ मजदूरी पर ले जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह की घटनाएँ अभी भी हमारे समाज में होती है। यदि हम भारत में स्त्री शिक्षा की बात करें तो भारत में वैदिक काल से ही स्त्रियों के शिक्षा का व्यापक प्रचार था। ऋग्वेद में 22 वैदिक विदुषियों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने श्लोक और रचनाएं भी की हैं। इसी तरह हमें उपनिषदों में भी मैत्रीय एवं गार्गी जैसी विदुषियों का उल्लेख प्राप्त होता है। स्वतंत्रता के बाद सन 1947 से लेकर अब तक भारत सरकार स्कूलों में अधिक लड़कियों को पढ़ने का मौका देने के लिए और उनकी स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश में अनेक योजनाएं बनाए हैं, जैसे कि निःशुल्क पुस्तकें, दोपहर का भोजन आदि। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को बनाया गया। आयोग ने सिफारिश किया कि महिलाओं की शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लिया जाए। तब भारत सरकार ने तुरंत ही महिला साक्षरता के लिए साक्षर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के अंतर्गत महिलाओं की अशिक्षा दर को नीचे लाने की कोशिश की गई है। बुनियादी शिक्षा उनके लिए अनिवार्य है और अपने स्वयं के जीवन के जीवन और शरीर पर फैसला करने का अधिकार देने, बुनियादी स्वास्थ्य पोषण और परिवार नियोजन की समझ के साथ लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान हो रही है। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा गरीबी पर काबू पाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ परिवारों का काम कर रहे पुरुष दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं में विकलांग हो जाते हैं तो उस स्थिति में महिलाएं घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। पढ़ी लिखी महिला घर के साथ बच्चों की परवरिश भी अच्छे से करती है। इस दुनिया में विद्या के समान नेत्र नहीं है और माता के समान गुरु नहीं है, यह बात पूरी तरह से सच है। बच्चों के विकास पर प्रथम और सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का ही पड़ता है। माता ही अपने बच्चे को पाठ पढ़ाती है। बच्चों को यह प्रारंभिक ज्ञान पत्थर पर बनी अमिट लकीर के समान जीवन का स्थायी आधार बन जाता है। लेकिन आज के समय में इतने असामाजिक तत्व उभर आए हैं कि जिन्होंने माँ बहनों का रिश्ता ही खत्म कर दिया है। आज माँ बहनें असुरक्षित है। असुरक्षा के कारण ही महिलाओं के साथ अभद्र घटनाएं घटित होती है जिससे महिलाओं का जीवन नरक बन जाता है। वास्तव में महिलाओं की शिक्षा किसी भी पुरुष की शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। समाज की नई रूपरेखा तैयार करने में महिलाओं की शिक्षा पुरुषों से 100 गुना अधिक उपयोगी है। इसलिए स्त्री

0: के लिए सभी को प्रयासरत होना चाहिए, तभी अत्याचार जैसी घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। तो बहनों, अभी हम चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि महिलाओं के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है विषय पर। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के बाद बहनों, आइए अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनमा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नहर में ना बले नवा नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कागे हम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात होते हम बात हो जाए
6: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता तमसोए भरुपा ऐसना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में इरिया तपा में इरिया वाह बेटा निका
7: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितमाई कोड़ा मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के जिन दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गई तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आपी लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का अले आया नु तुम कहीं ना मिल आपी लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: बहनों, इस जरूरी संदेश के बाद आइए अब हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। महिलाएं खाली समय का सदुपयोग कैसे करें, और इस विषय में बातचीत कर रही हैं सूरजमणि गागरई। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक गृहिणी से जिनका नाम है सूरजमणि गागराई, और आज हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो खाली समय का सदुपयोग कैसे करती हैं। तो सूरजमणि जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जोहार।
9: जोहार।
0: तो सूरजमणि जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि खाली समय का सदुपयोग आप कैसे करती हैं।
9: जी हाँ बसंती जी, आपने अच्छा सवाल हमें पूछा है। वैसे तो हम महिलाओं को खाली समय बहुत ही कम मिलता है जी, क्योंकि दिन भर तो हम घर के कामों में ही उलझे रहते हैं। सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है, टिफिन बनाना, उन्हें तैयार करके भेजना, उसके जाने के बाद घर के काम शुरू हो जाते हैं, जैसे घर की सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना वगैरह। ये तो हमारे रोज के काम हैं। हाँ, लेकिन जब भी हमारे काम हो जाने के बाद थोड़ा समय मिलता है तो हम बागवानी करते हैं, क्योंकि हमें बागवानी करना काफ़ी पसंद है और प्रकृति से जुड़े रहना काफ़ी अच्छा लगता है। जी तो सूरजमणि जी, आप किन चीज़ों की बागवानी करते हैं? बागवानी हम सब्जियां, बागवानी में हम सब्जियां लगाते हैं और सजावटी फूल पौधे भी लगाते हैं। जब भी हमें समय मिलता है तो हम सब्जियों की खेती शुरू कर देते हैं, वो भी मौसमी सब्जियां, और लगाई गई सब्जियों की देखभाल करते हैं, जैसे कि पौधों के आसपास की खरपतवार की सफाई करते रहना, और खाद ज़रूरत हो तो खाद डाल देना, पानी देते रहना, ताकि हमारा पौधा जो है अच्छे से विकसित हो और हमें अच्छे फल मिले, इसके लिए तो देखभाल करना ज़रूरी हो जाता है। और जैसा कि हमने बताया, हम सजावटी फूल पौधे भी लगाते हैं, तो इनकी भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। इनकी भी हम देखभाल करते हैं, जैसे कि किसी किसी पौधे के पत्ते सूख रहे हैं तो उनको निकालते रहना, अगर किसी पौधे को पानी या खाद की ज़रूरत हो तो समय समय पर उसमें खाद या पानी डालते रहना। जी, गमलों के सजावटी पौधे और फूल लगाकर रखना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ये हमें पहले से ही अच्छा लगता है, इसलिए अभी भी हम करते ही रहते हैं। और उन गमलों से घर आंगन सजाना भी अच्छा लगता है, इससे क्या है कि हमारा घर आंगन जो है दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है।
10: जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें कही सूरजमणि जी।
9: जी हाँ, और हम गमलों की रंगाई पुताई भी समय समय पर करते रहते हैं, ताकि हमारा गमला जो है दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे, सुंदर लगे। और इसके अलावा हमें नए नए सजावटी पौधे लगाते रहना भी अच्छा लगता है, तो हम ये सब करते रहते हैं जब भी हमें समय मिलता है तो।
10: जी सूरजमणि जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने कि आप खाली समय का सदुपयोग इस तरह से बागवानी करके आप उस समय का आप सदुपयोग कर लेते हैं।
9: जी हाँ,
10: और इससे क्या है कि जैसा आपने कहा कि घर आंगन भी अच्छा लगता है दिखने में, और इससे हम अपने घरों को सजा के रखते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। और घर आंगन में जब हरे भरे जब पौधे दिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और जो माहौल भी जो है ना कि बहुत खुशनुमा
9: लगता है। और हमें लगता है कि घर आंगन में फूल पौधे लगे होते हैं, जब फूल मौसमी फूल खिले होते हैं तो हमको लगता है कि इससे दुनिया में हर व्यक्ति को अच्छा ही लगता है।
10: बिल्कुल,
9: हाँ, बस ये है कि कुछ लोगों को लगाना पसंद है और कुछ लोगों को बस निहारना पसंद है, मतलब वे लगाते नहीं है, लेकिन देख के उनको भी अच्छा लगता है।
10: बिल्कुल, दोनों ही स्थिति में जो फूल पौधे जो होते हैं अच्छे लगते हैं,
9: अच्छे लगते
10: लगाने है। वाले को तो अच्छे लगते ही हैं, साथ ही जो
9: आस पड़ोस
10: देखते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है।
9: बिल्कुल, उनको भी अच्छा लगता है।
10: और जब लोगों से हम जब तारीफ सुनते हैं तो उसमें तो और अच्छा लगता है।
9: और ये सब करते रहने की जो हमें मतलब इच्छा जो है और
10: बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और खाली समय का सदुपयोग तो हो ही जाता है, साथ ही हमारा घर आंगन भी सुंदर होते जाता है। बिल्कुल, तो सूरजमणि जी, आप तो बागवानी तो करते ही हैं, इसके अलावा और आपको क्या करना पसंद है?
9: देखिए, हमने शुरू में आपको बताया था कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना काफी अच्छा लगता है, और मेरे साथ साथ हमारे घर परिवार के लोगों को भी ये सब अच्छा लगता है। तो हम लोग खाली समय में या छुट्टियों के समय में बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेके ऐसे सुंदर सुंदर जगह जाते हैं, जहाँ प्रकृति को निहारना, देखना काफ़ी अच्छा लगता है। सुंदर सुंदर जगहों में जाते हैं और अपना समय वहाँ पर हम लोग
10: व्यतीत करते हैं। जी जी हाँ। और कुछ कुछ ऐसे ऐतिहासिक

0: एक जगह भी होती है जहाँ पे जाके हम अपने बच्चों को वहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। इनसे क्या होता है कि वो अच्छे से वहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं, उनके शिक्षा में या उनके पढ़ाई में भी ये काम आते हैं।
1: जी हाँ, आपने सही कहा कि सुंदर सुंदर जगहों के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक जगह भी होती है, जैसे कि कोई मंदिर हो, पुराने मंदिर हो, या तो पुराने मंदिरों को ऐसे तो अभी बहुत ही सबको डेवलप किया गया है, जहाँ लोग जाया जा सकते हैं, वहाँ पर घूम फिर सकते हैं और अपना समय दे सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इससे क्या है कि अपना मन भी खुश रहता है और बच्चों की शिक्षा में भी ये जो है काम आता है।
0: और सूरजमणि जी, कुछ जगह होते हैं राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए जो किले हैं,
1: राजमहल है,
0: बिल्कुल, और कुछ तो खंडर स्थिति में है और कुछ को तो अभी भी संभाल के रखा हुआ है। तो वैसे जगहों को भी जाने से जो है ना हमारे बच्चों के लिए बहुत ही काम आते हैं,
1: उनके शिक्षा में, उनकी पढ़ाई में, ये सब बहुत काम आते हैं।
0: जी हाँ, तो सूरजमणि जी आपने बहुत ही अच्छी बातें कही।
1: जी हाँ,
0: और सूरजमणि जी, इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बाकी बहनों को जब भी समय मिले तो ऐसा क्या कर सकती हैं कि उनका समय का सदुपयोग अच्छे से हो।
1: जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा ही सवाल है। अगर इस तरह से हमारी बहनों को समय मिलता हो तो उन समयों को अपनी इच्छा अनुसार सदुपयोग में लाना चाहिए। अगर किसी बहन को सिलाई कढ़ाई में उसमें उनको इच्छा हो तो वो भी खाली समय में सीख सकती हैं और सीखने के बाद उसको अपने जो आर्थिक सहयोग के लिए उसको अपना सकती हैं,
0: बिल्कुल,
1: सिलाई कढ़ाई करके। और इसके साथ साथ अगर जिनको बागवानी पसंद है तो बागवानी कर सकती हैं। और जिन महिलाओं या बहनों को पढ़ाई में इच्छा हो, पढ़ाई जिनका पसंदीदा चीज़ है, तो ये ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकती हैं, अपने साथ साथ दूसरे बच्चों को पढ़ा सकती हैं। इससे क्या होता है कि कुछ पैसे घर आएंगे तो उनका अपना जो आर्थिक सहयोग दे सकती हैं।
0: जी बिल्कुल, वो घर में आर्थिक सहयोग दे सकती हैं। बहुत सी बहनें जो है पढ़ना और पढ़ाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसमें वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, जैसा भी आपने कहा, कि दो पैसे भी कमा सकती हैं और घर में आर्थिक सहयोग दे सकती हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: तो पिंकी जी, इसके अलावा और ऐसा कुछ है जो महिलाओं को करना चाहिए जिनसे कि वे अपना आर्थिक स्थिति भी सुधार सकती हैं और साथ ही उनका जो समय है, उनका समय का भी सदुपयोग हो? ऐसा कुछ है और है, जैसा सिलाई कढ़ाई करके तो वो कर ही सकती है, इसके अलावा ऐसा और क्या है जो कि उन्हें करना चाहिए?
1: वैसे तो बहुत कुछ है करने को, बस उनका मन होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि या तो आप ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना, ये ब्यूटिशियन का कोर्स करके आप अपने घर पे भी इसे खोल सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और या तो आप मेहंदी लगाने की जो प्रशिक्षण होती है, या तो आप बिना प्रशिक्षण भी कर सकती हैं मेहंदी लगाना, क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे घरेलू महिलाएं मेहंदी लगाना पसंद करती
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आजकल जो है पर्व त्यौहार का सीजन चल रहा है, तो आप मेहंदी लगा करके भी कुछ पैसे कमा सकती हैं और ये शादी के सीजन में तो ये भरपूर कमाई होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। और इसके साथ साथ आप आजकल जो है छोटे छोटे कौशल प्रशिक्षण होता है, उसमें भी आप जा सकती हैं, जैसे कि मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सब जो बहुत छोटे छोटे खाली समय में काम करने वाले चीज़ सब है। अगर बहुत सारी महिलाओं को अगर फूल पौधे लगाना अगर पसंद नहीं है तो ये सब भी कर सकती हैं। और सब्जियां उगाना जो है और फूल पौधे से जो आप उससे भी अच्छा पैसा कमा सकती हैं। कुछ सब्जियां उगाने के बाद अगर घर में उस चीज़ को उपयोग करके अगर कुछ सब्जियां बच जाती हैं तो आप उन्हें आस पड़ोस में बेच सकती हैं। और फूल पौधे, आजकल बहुत से लोगों को फूल लगाना बहुत पसंद है, तो आप छोटे छोटे फूलों के जो है

0: फूलों को तैयार करके उन्हें बेच सकते हैं, जो किचन गार्डन जो बोलते हैं उस तरह से छोटे छोटे किचन गार्डन करके फूल भी लगा सकती हैं और सब्जियों भी लगा सकती हैं, उससे भी आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकती हैं।
1: जी बिल्कुल
0: जी हाँ।
1: तो सूरजमणि जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी।
2: बहनों, अभी आप भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रही थी कि महिलाएं खाली समय का सदुपयोग कैसे करें, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी सूरजमणि गागराई। उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का।

बहनों अभी आप आनंद ले रहे हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म के इस गीत से, जिसे स्वर दिया है कुमार शानू ने। तो बहनों इसी गीत के साथ ही आज का हमारा मनोरमा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारी बहनों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम मनोरमा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड के राजखरसवा टांगुआ पोसी चौथी रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी, रेल नेटवर्क होगा मजबूत। राज्यपाल ने बीआईटी मिश्रा के 7 दशकों के योगदान को सराहा, युवाओं को एआई और रोबोटिक्स से जोड़कर जॉब क्रिएटर बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की, लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई और कार्यों की जियो टैगिंग के दिए सख्त निर्देश। राज्य में एसआईआर अभियान तेज, सांसद संजय सेठ ने जागरूकता वाहन को किया रवाना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 29 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अपील की। और राज्य के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक धनबाद के वासेपुर में राजकीय सम्मान के साथ हुए सुपुर्द खाक, विभिन्न राजनेताओं और आम लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज झारखंड और ओडिशा के लिए 3,907 करोड़ रुपए की 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत झारखंड में राजखरसवा डांगुआ पोसी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे माल ढुलाई और रेल नेटवर्क सुदृढ़ होगा।
2: ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो पैराडीप वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स है, करीब 300 मिलियन टन्स की इसकी कैपेसिटी है। पैराडीप सर्व करता है, नॉर्थ में पूरा स्टील हब है, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, बौनपुर है, बोकारो है, इन स्टील हब्स को

0: पोर्ट से कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर का मूवमेंट, ये सारा का सारा पैरादीप से होता है।
1: इसके साथ ही कैबिनेट ने सेमिकॉन 2.0 मोबाइल फोन विनिर्माण योजना और यूरिया क्षेत्र के लिए NIPU 2026 नीति को भी स्वीकृति दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने BIT मिश्रा के स्थापना दिवस पर संस्थान के 7 दशकों के शैक्षणिक व तकनीकी योगदान की सराहना की। उन्होंने NEP 2020 के तहत युवाओं को AI और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों से जोड़कर जॉब क्रिएटर बनाने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पारदर्शिता के लिए सभी सड़कों, फ्लाईओवरों और पुलों की अनिवार्य जियो टैगिंग तथा सुव्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने का आदेश दिया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पलामू समाहरणालय में आयोजित समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने IDBI बैंक के CSR फंड से 10 दिव्यांगजनों को ट्राई स्कूटी बांटी। इस दौरान उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री ने राज्य के विकास के लिए बैंकों से CD रेशियो बढ़ाने और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के खर्च की पारदर्शी निगरानी करने की बात कही। आज देश में स्किल इंडिया मिशन की 11वीं वर्षगांठ और विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराजधानी दुमका में आज विश्व युवा कौशल दिवस पर 4 झारखंड गर्ल्स बटालियन NCC द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साझा भविष्य के लिए कौशल विषय पर आयोजित इस समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष सुधीर कुमार मंडल और कर्नल अनिल यादव ने युवाओं से सरकारी कौशल योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत आज एक जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर रांची के सांसद संजय सेठ ने नागरिकों से अपील की कि वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मतदाता विवरणों का समय पर सत्यापन और आवश्यक संशोधन अवश्य कराएं।
3: ऐसा पता चल रहा है मीडिया के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से, कि अभी प्रतिशत कम है, जिसका परिणाम है कि लोग के बीच जागरूकता की हो सकता कमी हो। तो इसके गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाकर लोगों को जागरूक करना कि भाई आप गणना फॉर्म जरूर भरें, और यह गणना फॉर्म है तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा। SIR 29 जुलाई को समाप्त हो रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जिसका गणना फॉर्म नहीं भरा हो।
1: इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फॉर्म BLO के पास जमा करने की अपील की है, ताकि 5 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सके। 22 जुलाई को ASDD सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए देश भर में जारी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं। अभियान के झारखंड

0: प्रभारी अभय आश्रय दास ने प्रेस वार्ता में बताया कि आगामी 27 जुलाई को देश के सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसके बाद दूसरे चरण में 15 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
1: इस अभियान का यही उद्देश्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष में गाय माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, पहला। दूसरा, सभी गौ माताएं जो आयु के आधार पर हत्या ना की जाए। तीसरा, गाय की रक्षा के लिए संविधान में संशोधन कर एक कठोर राज्य और केंद्र कानून बनाए।
0: खूंटी पुलिस ने तजना नदी पुल के पास हुए दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था।
2: जिस लड़की की हत्या हुई है, वह लड़की का अपने पति से काफी दिन से विवाद चल रहा था। इनका आपस में कोर्ट में एक मेंटेनेंस का केस भी चल रहा था और यह लड़की अपने 5 साल के बच्चे को, जो कि इसके पूर्व पति के साथ रह रहा था, उसको लेने के लिए उसके पास गई थी। उसी क्रम में इन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद घटना को इसके पति ने अंजाम दिया।
0: राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन्नान मलिक को आज धनबाद के वासेपुर स्थित शमशेर नगर कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। झारखंड में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा और ऐतिहासिक रथ मेलों को लेकर राज्य भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज पट खुलने के साथ ही अनुष्ठान शुरू हो गया है, जहां कल शाम भगवान का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में आज दोपहर से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच मौसम केंद्र रांची ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर राज्य के चतरा, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड के राजखरसावां डंगवा पोसी चौथी रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। रेल नेटवर्क होगा मजबूत। राज्यपाल ने बीआईटी मिश्रा के 7 दशकों के योगदान को सराहा। युवाओं को एआई और रोबोटिक्स से जोड़कर जॉब क्रिएटर बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई और कार्यों की जियो टैगिंग के दिए सख्त निर्देश। राज्य में SIR अभियान तेज। सांसद संजय सेठ ने जागरूकता वाहन को किया रवाना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 29 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अपील की। और राज्य के पूर्व मंत्री मन्नान मलिक धनबाद के वासेपुर में राजकीय सम्मान के साथ हुए सुपुर्द खाक। विभिन्न राजनेताओं और आम लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: खरीफ फसल की बुआई को लेकर कृषि विभाग की ओर से 51,500 हेक्टेयर में किसानी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 3,065 हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है, जो लक्ष्य का 6% है। साथ ही राज्य में मिलेट योजना के तहत गोड्डा में मड़ुआ फसल को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य से दोगुना खेती की गई है।
2: हमारे गोड्डा जिले में धान का टारगेट 51,500 हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है वित्तीय वर्ष 2026-27 में। विरुद्ध अभी तक हमारे गोड्डा जिले में 3,065 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो कुल टारगेट का लगभग 6% होता है। इसके साथ झारखंड में एक योजना चल रही है, झारखंड मिलेट मिशन योजना। ये योजना के तहत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें हमारे गोड्डा जिला का लक्ष्य 862 हेक्टेयर है, जिनके विरुद्ध लगभग 1800 हेक्टेयर एरिया कवर कर चुके हैं हम लोग, जो हमारा लक्ष्य लगभग दोगुना है।

0: ललमटिया थाना क्षेत्र के निमा कला गाँव जो ईसीएल प्रभावित गांव है, इस क्षेत्र का रहने वाला 22 वर्षीय देवगन मरांडी ने नेपाल के खिलाफ फाइटिंग कर आज गोड्डा जिले सहित राज्य का नाम रोशन किया है। दिल्ली में एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट की प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फाइटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया तथा नेपाल को 17 मिनट में पराजित कर राज्य का नाम गौरवान्वित किया है।
1: 3 मिनट का राउंड होता है, फर्स्ट राउंड हुआ, इसमें 17 सेकंड में नॉकआउट किए। सब फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली वाला का दिलासा था मैं कर लूंगा।
0: जिला मुख्यालय में गत दिनों राजद के 30वां स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक काटा और सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबों और दलितों की आवाज उन्होंने हमेशा बुलंद किया है।
2: पक्ष के लोग भी कहते हैं, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांतों को शायद वो लोग नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कोई बिकाऊ माल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल वो टिकाऊ माल है। अगर बिकाऊ माल रहता तो संजय यादव भी आरएसएस और बीजेपी के गोद में खेल, लड़ाई लड़ना पसंद किया, गोली खाना पसंद किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
0: आस्था का सबसे बड़ा केंद्र शहर के कनवारा गांव में गत दिनों नागवासुकी मेला के रूप में संपन्न हुआ। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर भगवान नाग देवता की पूजा अर्चना की तथा उन्हें डाली चढ़ाया। नागवासुकी मेला करीब 125 वर्षों से आयोजित होता रहा है। 15 दिनों तक चले पूजा के दौरान यहाँ के लोग नशा से पूरी तरह से मुक्त रहते हैं। गोड्डा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गत दिनों शहर के बीचों बीच स्थित बंगाल ज्वेलरी नामक आभूषण दुकान में 3 शातिर अपराधियों ने धनाधन गोली चलाकर करीब 50 लाख रुपए के आभूषण एवं नगद राशि लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद 2 दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही अपराधी देवघर जिले के बताए जाते हैं, जिसके पास से 38 ग्राम सोना एवं 45,000 रुपए पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त हथियार व बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है।
3: आसपास के जितने जिले हैं, जामताड़ा, देवघर, तुमका और माका, इसमें ये गैंग अभी तक नहीं पकड़ा गया है और ये सब जगह जितने भी ज्वेलरी लूट के केस हुए इसी ने, और जो मास्टरमाइंड है जो आपने देखा है, जो फुटेज आप लोगों ने भी देखा, वो वही है। हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे।
0: आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर।
4: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित जिले में आजकल। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:16 हो रहे हैं। वक्त है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

नमस्कार जोहार। आइए श्रोताओं, करते हैं आज के कार्यक्रम आपकी पसंद की शुरुआत और लेते हैं आपके द्वारा लिखे गए फरमाइशी खतों को। तो कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत हमें मिला है खरसावा गांव दलाई किला से, और हमें खत लिखा है लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरिजन, गीता सोए, सरिता सोए, सारिका सोए, हारिका सोए, तनुजा सोए, विमी सोए, मनीषा सोए, शीतल सोए और सिनेमाई सोए ने। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के अभिजीत गवांडकर राही, श्रीमती सरिता गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर और आकार हाईलाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली सैलेश गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर और कुमारी ध्वनि गवांडकर की फरमाइश भी हमें मिली है। बदलापुर मुंबई से हमें खत लिखा है सिद्धांत गवांडकर, प्रणीता गवांडकर और टुकटुक गवांडकर ने। ग्राम नवागांव मुढ़ई पार राजनंदगांव छत्तीसगढ़ के सोहन लाल साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, संतोष साहू, श्रीमती शांति साहू, तेजेश्वर, टाकेश्वर, कुशाल एवं तुलेश साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम बन बघेरा राजनंदगांव से ही हमें खत लिखा है योगेश शारवा, श्रीमती आशा शारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा ने। भाटापाड़ा से सोहन जोशी, हरविंदर चावला और पुणेन्द्र लहरे की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म मुझसे शादी करोगी का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं गायक कलाकार उदित नारायण और अलकाई याग्निक ने। बोल लिखे हैं समीर ने और धुन है अनु मलिक की। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं छोटा नेमड़ी चायबासा से बाबू राम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमार, मलोट कैंप पंजाब के सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, किशन, लखविंदर संधु, महावीर संधु और गुरुचरण ग्रोवर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है अलीका डबावली से बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। शास्त्री नगर बीड शहर के किशन सपकाल, आशा सपकाल, दुर्गाई सेलू से चंदो कुलकर्णी, हेमलता और परवणी से सी आर कुलकर्णी की फरमाइश भी हमें मिली है। फिल्म मुझसे शादी करोगी के इसी गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं बक्सर बिहार से सरफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और आसमानाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से सोनम और आदिबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। सुरेशवाड़ी औरंगाबाद से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। बोरखेड़ा विप्रमाल जिला उज्जैन से इसी गीत को सुनना चाहा विनोद मुणत, कुमारी नेहा जैन, दीपक मैक मुणत, चेतन नाहटा, परी मुणत ने। गांव हंडीरा से मानता राम सिंह कुंटिया की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। चनहटी बरेली से हमें खत लिखा है विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने। ग्राम धुरा बांधा भाटापाड़ा के प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, कुमारी संगीता, कुमारी सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। बिलराम गेट कासगंज के एम असलम सैफी, जुबनिसा बेगम, अक्रम सैफी, जाहिद सैफी और आवाद खां की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। अलगीडाट कोरबा छत्तीसगढ़ से लिखा है हमें कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं जोहित यादव, विपिन यादव, आयुष यादव, श्रीमती फूलजी यादव और यादव परिवार के सभी लोग। पुरानी भिलाई तीन चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौसाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, सहनबाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म मुझसे शादी करोगी से, आवाज़ें गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक की। तो श्रोताओं आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

चांदनी कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से, आवाज़ गायक कलाकार लता मंगेशकर की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बड़ा बाम्बो गांव सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेंद्र जी। ग्राम गेलिया लोहार से कोमल बेसरा, बसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और बंस बत्ता ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। मॉडल टाउन पानीपत से हमें इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा, आनिया, अनाया, नेहा सागर गुंबर, हिमांशु गुगलानी, इम्बू कुरैसी, सुधीर नूतन। कोटड़ा बहादुर जिला मंदसौर के नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पूलाल और वीके डांगी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। पटेल नगर मलोट पंजाब से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। न्यू कॉलोनी टूंगरी तसर फॉर्म रोड चायबासा के रश्मिता राउत, मधुस्मिता राउत, प्रकाश जायसवाल, रीना

जायसवाल और वैष्णवी कुमारी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। सद्भावना रेडियो श्रोता संघ पीएमसीटी बनारस यूपी के आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित सिंह, हर्षित और पुलकित की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। बड़का काना से हमें खत लिखा है अफजाल ताज और साहिल सुल्ताना ने। मुंबई से महेंद्र मोदी और राजा बाबू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। आमखोंडरा रेंगाखार से खत लिखने वाले श्रोता है राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम और चंद्रदीप दक्षप्रिया नेताम। ग्राम उघड़िया पड़ा बाम्बो के नायडू महतो, उषा महतो, प्रियो महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, राहुल बोदरा, अर्जुन बोदरा और रवि बोदरा ने भी इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हम तक भेजी है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से और हमें खत लिखने वाले श्रोता है नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। खरसवा पतिसाई के सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। सोनवा गांव पोड़ाहाट के मिथुन नायक, मुकेश नायक, राकेश नायक, मुखरू आचार्य और सुखराम नायक ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। सनी इनक्लैब मोहाली से अपनी फरमाइश हमें भेजी बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा ने। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका गजबीये, अनिष्का और तन्मय गजबीये की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म चांदनी से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का

फिल्म चांदनी के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म गोपी किशन से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार पूर्णिमा और कुमार सानू की और इस गीत को सुनना चाहा है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया ने। लुधियाना पंजाब से इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं परमजीत सोनम कौर और अमरजीत सोनम आदिबक सोनम कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद के वलीउल्ला फ़कीर डब्लूउल्ला फ़कीर परवीन आसमा फ़कीर की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। बुलंदशहर से हमें खत लिखा है बद्रू वली अंसारी फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत यशो और तासु ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर के शिवम शिवाजी सुरामणि हीरामणि मुंडरी सिद्धेश्वर मुंडरी पाड़ापुर शिवाजी डोबरो मुकेश हेमंती मुंडरी डोबरो मुंडरी साजन मुंडरी सिद्धेश्वर मुंडरी कुशल मुंडरी जानुम सिंह मुंडरी सिद्धी बोस सोना बाबू सोना और एफएम शिवा मुंडरी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। डबावली हरियाणा से हमें खत लिखा है जेके बाकोलिया श्रीमती सुनीता बाकोलिया संजय अनिल और मीनू बाकोलिया ने। दौलतबाद मुरादाबाद से जाफर हुसैन नाइमा बेगम कासिम अली नदीम अली और जुनैद अब्बासी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बबलेश पवार डैनी पवार और मनीष। ग्राम पोंडा काटर से नरसिंह महली सावन महली रॉकी महली कविता महली हर्षमणि महली पार्वती सोरेन सुहानी देवी संजय सोरेन पातोर बांकिरा डोली बांकिरा और रघुनाथ चरहट ने भी फिल्म गोपी किशन के इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है। ओल्ड लिस्नर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से हमें खत लिखा है शारदा गुप्ता रंका रानी मौसम गुप्ता रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता ने। एसबाग बिली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता रानी गुप्ता कुसुम गुप्ता पलक गुप्ता और पंखुड़ी गुप्ता की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता सोनाली गुप्ता सूर्यांशी गुप्ता कोमल गुप्ता मेनका गुप्ता माधवी साध्वी तन्मय राज और गुनगुन की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। कमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ के साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी मानस साहू और प्रतीक कुमार ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। लालपुर मारो से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कीर्ति कुमार ध्रुव सतीश विनय ध्रुव निम्मी पम्मी ध्रुव और रितेंद्र कुमार ध्रुव। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरंगी से खत लिखने वाले श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा और छाविंद्र कुमार वर्मा। बड़ी बाजार चायबासा के मौजम बिहारी समीमा खानम जिम्मी बिट्टू किरण रोशनी मुस्कान परी और नबीहा ने भी इसी गीत को सुनने के लिए हमें खत लिखा है। मझगांव से

फिल्म गोपी किशन के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत जो कि हमें लिखा है कुचाई ग्राम ईचा तो हाथु से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं गोलाराम लोवादा, लुद्री, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनि, बिंजना और लोवादा परिवार के सभी लोग। ग्राम लोसोदिकी से हमें खत लिखा है कोमल महतो पेमी और गोविंद जीतू साईमान ने। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म गर्व का ये गीत जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं 6267 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी सुपचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। पेपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हमें इसी गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर और योगिता दिवाकर। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्डा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। ग्राम जामठी वरुड़ अमरावती महाराष्ट्र से हमें खत लिखा है इस मुकेश दिनकर कासलेकर, विमल विशाखा कासलेकर ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। मोपका भाटापाड़ा से खत लिखा है भेविंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित और सुमित्रा साहू ने। ग्राम पैजनिया तहसील कौर जिला जालौन उत्तर प्रदेश के सतेंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और आराध्या चंसौलिया की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। रेलवे रोड गंजूरवरा के मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तिवरता डबरीपाड़ा छत्तीसगढ़ के महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र कुमार मरकाम, गजेंद्र प्रताप मरकाम, सुरेंद्र कुमार मरकाम, मोहन सिंह मरकाम और मनमोहन सिंह मरकाम की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजने वाले श्रोता हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और थनच आरू साहू। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने भी इसी गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजी है। ग्राम फ्रांसी से हमें खत लिखा है राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और हांसी शहर के राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष

होगी और बब्बू डब्बू ने भी इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजी है। नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसूल बिहार से हमें ख़त लिखा है अकरम हुसैन, इशरत अकरम, रुबीना, वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिया नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख ने। कोकिलवाड़ा मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल शेख, नुजर जहानान और कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। ग्राम अमलेश्वर के डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। चायबासा से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आर के सिन्हा, दीपक ठाकुर, प्रकाश कुमार गुप्ता, सुनील प्रजापति, सुशील मुंद्रा, रमेश दत्तानी, राजा राम गुप्ता, त्रिशानु रॉय, कैशर परवेज और दीपक ठाकुर। बिलासपुर देवरी खुर्द के संतोष तलरेजा, आरती अचना, सोनू तलरेजा, कुंवर सिंह, गुड्डू भाई और रामदास ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। मछली गोदाम कैंदामुड़ा रायगढ़ के पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह और ऋषभ सिंह की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत, खास खास और खास आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म गर्व से, आवाज़ें गायक कलाकार उदित नारायण और श्रेया घोषाल की।

0: फिल्म गर्व के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो तो बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर में बोले नुकन परिस्थिति बोले सब वापस को रुआ धरा बोले रुआ में आले परिवार से मतलब पूरे ये
4: मोर नाम मंगल राय को गाँव बारगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए
6: मितुल बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भूरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मेनापाम तपाम वहाँ बेटान
7: अंतम बुम्बई कोड़ा पटन कोड़ा पटन कितमई कोड़ा नीम उड़ी बागे सीआरपी को पुलिस को लड़ाई चलावना बुरू रम गई जय तेरे काका गुगो उनको काको मेल मे
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। श्रोताओं, यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत हमारे जरिए इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें खत अवश्य लिखें। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चायबासा। चायबासा का पिन कोड नंबर है श्रोताओं 833201। खत में आप अपने पसंद के गीत के साथ ही साथ श्रोताओं अपना पूरा नाम और पता अवश्य ही हमें साफ सुंदर अक्षरों में लिख भेजें। और एक बात श्रोताओं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये लिखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ श्रोताओं अब कार्यक्रम आपकी पसंद से विदा लेने का वक्त हो चला है, तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दे। नमस्कार।

FMK 101.7 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:01 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का हम इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए करते हैं आज के कार्यक्रम रजनीगंधा की शुरुआत और लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है हिरण छप्पर यमुनानगर हरियाणा से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और अर्जुन धीमान। रामभाटा संजय मैदान रोड रायगढ़ से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी, रानी दीपा लक्ष्मी, सुनीता लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी। सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश के योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। चाईबासा से हमें खत लिखा है सोनू शर्मा, ऋषिकेश और नंदू शर्मा ने। बेरेडी से अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। आदर्श

नगर मलोट से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से, और हमें खत लिखा है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव ने। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत अमरपुर पेंड्रा से, और खत लिखने वाले श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। पुणे से अपनी फरमाइश हमें भेजी है पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे ने। बड़ा बाम्बो गोपालपुर के संतोषी महतो और जय कुमार महतो ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म किनारा से, और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं ग्राम सौका मंगरलोट धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। चांडिल ग्राम हारूडी के तुलसीदास महतो, कल्पना मनोरमा, दीनबंधु महतो और मनमोहनी महतो की फरमाइश भी हमें इसी फिल्म के गीत के लिए प्राप्त हुई है। प्रयागराज से पीयूष प्रताप सिंह, के सिंह, स्नेहा सिंह, फट्टन सिंह और शिवनाथ सिंह ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। गांधीबाग अकोला से हमें खत लिखा है रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म किनारा से।

चोर मचाए शोर। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत इसी फिल्म से, आवाज़ गायक कलाकार किशोर कुमार की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया सोएब खान, मुस्तफ़ा खान, रऊफ भाई और साइद भाई। बठिंडा रोड डब्बावली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। गांव कैरो से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, समीर, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। मोहल्डिया सोनवा झारखंड से इसी गीत को सुनना चाह है नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, सनु, अनु, तनु, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो। बड़ा बाम्बो जोडीहा से मोइना महतो, डिम्पी महतो और राहुल महतो ने भी इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजी है। आरती टाउन गोदनी नागपुर महाराष्ट्र से कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है अल्ज़ियार अब्राहम, उज़ैनी अब्राहम, एलन अब्राहम, ग्लोरी अब्राहम, एलेक्स अब्राहम, जोसेफ रूफट, अविनाश छेद्रपाल, सिद्धार्थ गुंडा ने, हीरामन सेंडे और उनके साथियों ने। बोर्ड सेरा नैला के प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। छत्रपति संभाजी नगर से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। बड़ा निमड़ी चायवासा से हमें खत लिखा है तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार और सुमित कुमार ने। अमजोड़ा मालुका के सिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। गाँव चांदपुर पोटका से कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है संतोष कुमार भगत, श्रीमती बसंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, आयुष भगत, राजू बसंत कुमार भगत की। कॉलेज रोड घाटशिला से खत लिखा है सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद ने। मुसाबनी से कमल भगत, रूपाली भगत, सनी, सोनू और अर्णव राज ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। बड़विल ओडिशा से सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। सिमधर पार्क विरमगाम गुजरात के अजीत प्रमिला भावे, सनी भावसार, हेतल कृष्णा और जैमिन भावसार की फरमाइश भी हमें फिल्म चोर मचाए शोर के इस गीत के लिए ही प्राप्त हुई। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत इसी फिल्म से, आवाज़ गायक कलाकार किशोर कुमार की।

नमक हलाल कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाज़ का एक कलाकार आशा भोसले की और इस गीत को सुनना चाहा है वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चायबासा से भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार।

कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर ने मेन रोड सोनवा झारखंड से अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजने वाले श्रोता हैं गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पाणी प्रधान और नीक पाणी प्रधान। चितलवाड़ी अकोला से अपनी फरमाइश हम तक इसी गीत के लिए भेजी अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वे सिंगले, अधिरा इंगले और इंगले परिवार के सभी लोगों ने। लक्षणपुर से इसी गीत को सुनना चाहा जीवनलाल रजक, सरोजनी रजक और रामजी साहू ने। मडगांव बलौदा बाजार से खत लिखा है रामदुलार साहू और नीलिमा साहू ने। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान और सक्रांति चौहान की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार और दीपक श्याम कुमार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। चायबासा से इसी गीत को सुनना चाहा मोहम्मद समीम अख्तर, इकबाल भाई, लीलू खान और महमूद आलम ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा ने। तुरी टोला चायबासा से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अर्पिता कुमारी, सुमित ठाकुर, लाडो और भोला रजक ने। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब के विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, विरमापुरी, विकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी और आरएसपुरी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क साजापुर से हमें खत लिखा है मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि दीक्षित, शशिकांत, रिया रीत, स्वीटी सागर, अंशु रीतिका, नीरज रीचा, चित्रंजन उमेश, सरोज रेखा, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सभी लोगों ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यह आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार आशा भोसले के स्वर में फिल्म नमक हराल से।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यारा दुश्मन से, आवाज़ का एक कलाकार किशोर कुमार की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत, गुरशब्द। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा के अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश सोनी, टावर चौक गुमला से एसएम जावेद, सगुफ्ता अंजुम और जेनिस चौहरी। बागपत चौहल्दा से हमें खत लिखा है संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल ने। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर के प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। शेरपुर कलाम गाजीपुर से खत लिखने वाले श्रोता हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश हमें भेजी विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी ने। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं मज़र अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और सादिक साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश के आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद ने भी इसी गीत के सुनने के लिए हमें खत लिखा है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें भेजने वाले श्रोता हैं ग्राम हतनांग टोडांग टोला महली साई से बीरबल महली, सरस्वती महली, फुलवंती महली, शकुंतला महली, सुमांती महली और यशोदा महली।

जरूर बरूर महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे मीनाक्षी चरपे रजनी कानी रे और कार्तिक युवराज की फरमाइश भी हमें इस गीत के लिए मिली है। एकता कॉलोनी रोहतक से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं सीताराम कांगड़ा बबीता को बोध निखिल कांगड़ा अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा गांव के तथा सरायकेला के राधा कृष्णा गोप अमित गोप अंकित गोप अभिषेक गोप आशीष सुमित अनामिका सुनीता गीता रीता सुलेखा गोप आराध्या गोप माहिर गोप खुशी गोप और राहुल गोप की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। अनारकली बाजार जगराव से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष मल्होत्रा गाफिया और जयपाल यादव डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश हम तक भेजी देवशंकर तामोरिया अजय रोशनी पूजा और तुषार और प्रभा देवी तामोरिया ने इचलकरंजी महाराष्ट्र के बसंतजी हजारे प्रमोद हजारे महेश हजारे आदित्य हजारे और मितांशु हजारे ने भी फिल्म प्यारा दुश्मन के इसी गीत को सुनना चाहा। कुचाई बिद्री से हमें खत लिखा है केपी सोए सरिता दुर्गामती रेशमी राजकुमारी विशाल मुन्ना सोए और सनी सोए ने बस ग्राम सूराबेड़ा के बास सिंह सरदार धनी सरदार कमल सिंह सरदार सुखपति सरदार रमेश अंशु और बिरू सरदार ने भी इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश हमें भेजी। कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है यूनुस खत्री शफी खत्री इद्रिश खत्री नूर मोहम्मद खत्री कासिफ हासिम और इरफान मीना ने लालमाता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के हर्षिता रामेश्वर कान्हा सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल पागड़ी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा कुचाई तो डंगी दो से विजय महतो मुकेश महतो दिलीप महतो सूरजमणि महतो सुमन महतो और रविंद्र महतो ने तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म प्यारा दुश्मन से।

कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू भाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से हमें खत लिखा है अशरत तड़वी, आरिश अरसलान और यूनस तड़वी ने। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर के मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजबीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार की फरमाइश हमें फिल्म मिस्टर नटवरलाल के इस गीत के लिए मिली है, जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। और इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम बठेना पाटन से बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली, शिवम और चटौदा सारा गांव से सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और क्रिस वर्मा ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने। ग्राम बादुड़ी से अपनी फरमाई समय भेजने वाले श्रोता हैं नारायण कुदादा, हेमा कुदादा, कैलाश कुदादा, सुषमा, पप्पू, प्रीति कुदादा, विक्की और पुष्पा। पुरानी टोली छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है मालती नागदेव, कुमारी सोनाली नागदेव, मयंक नागदेव, अनिमेश नागदेव और अंसल नागदेव ने। कार्यक्रम का की अगली फरमाइश हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और ची डोंगरी पिपड़िया से दुर्गा राम साहू की फरमाइश भी हमें फिल्म मिस्टर नटवरलाल के इस गीत के लिए मिली। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक अंतराठाड़ी मधुबनी बिहार से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं सोविकांचा सज्जन, हेमलता सज्जन, मोहित मनोज सज्जन, लकी सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और एस के सज्जन। ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंजारी के

बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जैमिनी और जयंती की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। बठिंडा पंजाब से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी लोग। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र के सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर, बड़सिंगी बुलढाणा से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। बागपत यूपी से अपनी फरमाइश हमें भेजी है एहसान अली ने। फजिल का पंजाब के भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, सालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। और आज के कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी खत हमें लिखा है अमलटोला चायबासा से गौरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

श्रोताओं, फिल्म नटवर लाल के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। तो अब इस कार्यक्रम से हमें विदा दें, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए, 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत में ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक

0: जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Center clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise in West Asia as US reimposes naval blockade on Iran amid exchange of fresh strikes between the two countries. 3 Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England at Atlanta in the US tonight for a place in the final. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. He informed that investment worth 4 lakh crore rupees is expected under Semicon 2.0.
3: Semicon 2.0.
4: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
3: Us industry ko aur aage badhane ke liye bhi isme pravdhan.
2: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. He said the scheme is aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub.
3: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम,
4: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद एन टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स. द स्कीम प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक सोर्सिंग एज

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। ये सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया,
4: नमस्कार।
2: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है, इसे आप कैसे दूसरे समझौतों से अलग देखते हैं? और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
3: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेग्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है, वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के दौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्रैजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन है उनको इंक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए, और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है, वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा, जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पेटिटिव होती हैं तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो

0: है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी, और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट्रिटी है जो हमारा लक्ष्य है, एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा, तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है। इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
1: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कॉम्पोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान होगी। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है?
2: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या दलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो आंकड़े हैं वो जरा समझने चाहिए। यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ है प्रोसेस फूड्स के ऊपर वो घट के जीरो हो रही है। मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है उसमें जीरो हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है उसमें 18% था उसमें जीरो हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स वो बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें 18% है जीरो हो जाएगा। लेदर एंड फुटवेयर में 16% था उसमें जीरो हो जाएगा। और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था उसमें भी जीरो हो जाएगा। और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था उसमें भी जीरो हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में, जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा हमारा शेयर सिर्फ 6% है, वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी। उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इंपोर्ट में 1% है, वो भी बढ़ जा सकता है। ऑटोमोटिव में देखेंगे तो उसमें भी 1% से कम है। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है। इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है। ऐसे सारे चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, इन सारे

0: क्षेत्रों में जो काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जॉब इंटेंसिव है, इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है, और यूको जैसे मैंने कहा ये सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा आयात करता है, पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त। तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारी वस्तुएं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर है, जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की, उसमें काफी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं, उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूं कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने का डर है, उसके साथ साथ जो हमारी जो एमएसएमई सेक्टर हैं ये सारे सेक्टर्स में, और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं। इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहां पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है। उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स कटते हैं, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज जो देखते हुए मैं समझता हूँ कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है, बिजनेस की जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें काफी इजाफा होगा।
1: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफडीए के करते हैं तो कई सारी मादक पदार्थें हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाएं और दोनों देश इससे लाभ भी उठाएं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है, क्योंकि यूके का मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं। एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव है तो और ज्यादा कंपेटिटिव बनेगी, हम भी एक कंपटीशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा, जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है। एक कोटा के थ्रू जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़े। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारे इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो पीएलआई है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे एफटीए करने के काबिल बने हैं। आप देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई एफटीए साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने एफटीए शुरू किए, मॉरिशियस से शुरू होकर अभी हम आज यूके इंप्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेसेस हैं जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
0: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, तो पहली बात ये है। और दूसरा

0: दूसरी बात यह है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की,
1: जी
0: उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है। उसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरल कृत की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ओरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे। अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है, उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो FTAs जो हैं और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो को जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूं ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इंपोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
2: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी। दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% यूके है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारी आईटी सर्विसेज हैं या फिर हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं या फिर हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर हमारी जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी। उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और या वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि एफटीए आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर एफटीए की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड, दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द एफटीए। अभी एफटीए के बाद आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने एफटीए को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ, तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कंपीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं। जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं ये समझता हूँ कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में, उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
0: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था, उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर ली हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है वहां पे, जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था, उसमें काफी एक धक्का पहुंचा था। तो मेरा मानना यह है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं, वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है उसमें एक काफी एक धक्का मिला है उसको, और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, यू को मिला के मैं कह रहा हूँ, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ हम लिंक्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमने इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है उसके अंडर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबीएम की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है, सो इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम लगेगी, सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी और वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो 15-20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा। पर मैं समझता हूं कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेज जो अनदर 50% है, दोनों की प्रोविजंस की गई हैं। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको ला सकें, पर हम यही आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा, सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है, रफ्तार जो है वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
2: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही है, और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही है, और खास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही हैं। तो अब ज्यादातर जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे उनका और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमई के हित हैं उस मद्देनजर उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज्यादा इंक्रीज हो, और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज्यादा, उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारा इंप्लीमेंट हो गया है, तो उनके जब प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, और उनको और ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की और उनके और ज्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नजरिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
0: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो जरूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारे चीजों में, सब चीजों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में वो अब जीरो में आ चुकी है। नाउ जीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियां जो हैं उसमें ज्यादातर एमएसएमई हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती है, उनको नौकरी मिलती है, उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि एक जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विद सीटा के साथ जो हुआ है, उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी जो पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है। और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं, बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये हर जगह मैं समझता हूँ कि जो नौकरी की जो अवसर होती हैं वो उनकी वृद्धि जरूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5 से 10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्रैजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हरेक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं, और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है इनको सपोर्ट करेगा। अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई की सपोर्ट के साथ उनका जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इंप्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे। दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस। जब उनका इकोनॉमी जॉब स्किल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी, और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे, और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
0: ये समझौता जरूर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में। इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारी जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा, हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा।
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है। ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है, जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपका, डॉक्टर भट्टाचार्य चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया, थैंक यू,
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और एस.पी. शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम को, जो कि प्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है गजलों के कार्यक्रम महफिल का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं आज के कार्यक्रम महफिल की शुरुआत, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये पहली गज़ल फनकार कैसर आजाद बदायूं के स्वर में।

आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं गजलों के कार्यक्रम महफिल का। आज इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही फनकार कैशर आजाद बदायूं को। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

रोज का, ये रोज रोज का अंदाज बेरुखी साकी, छलक न जाए कहीं सब्ते गम के पैमाने, ये काली काली घटा और ये फरीद का दिन, गले मिलेंगे सुराही से आज पैमाने।

बरसात का महीना न जाम है न मीना, चलने लगा है सीना, मुश्किल हुआ है जीना। ये सुन के खसीना आई उतर के दीना, बोली वो बकरीना, पी लो जिसे है पीना। हाथों में लेके प्याले सबको लगी पिलाने, उठकर लगा मैं जाने, बोली अरे दीवाने तुझको।

फिर भी कायल हूँ मैं कशिका क्यों, तुम्हारे वास्ते गुनाह सही मैं पीऊँ तो सवाब बनती है, सौ गमों का निचोड़ करने के बाद एक कतरा शराब बनती है। कौन कहता है, कौन कहता है मुझे ठेस का एहसास नहीं, जिंदगी एक उदासी है जो तुम पास नहीं, मांग कर मैं ना पीऊँ ये मेरी खुददारी है, इसका ये मतलब तो नहीं।

श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी रात्रि के 10:30 बजा रही है और साथ ही साथ कर रही है ये इशारा कि वक्त है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों के रंग। करते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग की शुरुआत फिल्म राजा और रंग के इस गीत के साथ। आवाज़ है गायक कलाकार लता मंगेशकर की।

सिलसिला कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं इसी फिल्म से। आवाजें हैं गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चाईबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक बार फिर से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म आंधी से।

फिल्म मेरे अपने से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं युसुदास के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म आलाप से।

गायक कलाकार यीशुदास के स्वर में गाए हुए इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल

0: Kajal in 65, Muskan in 75, and Priyanka in plus 80 kilogram won silver medals. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः आपकी सेवा में होंगे उपस्थित। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। शुभरात्रि। जय हिंद।